मीडियम वेव 462.96 मीटर पर, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56:34 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा। सभी श्रोताओं को नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी इंदौर है, 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी 2 दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर

रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मिट्टी की खुशबू में बसता हर भारतवासी का अभिमान, वीरों के बलिदानों से महका मेरा प्यारा हिंदुस्तान। सीमा पर जो डटे हुए हैं उनसे रोशन हर अरमान, उनके साहस को नमन है, उनसे सुरक्षित देश महान।

भक्ति का अर्थ केवल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरना भी है। जब मन अहंकार से भर जाता है, तब ईश्वर दूर लगने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मन विनम्र होता है, हर दिशा में उनका आशीर्वाद दिखाई देने लगता है।

सच्ची भक्ति वो नहीं जो केवल आरती के समय जागे, बल्कि वो है जो हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखे। सुख मिले तो धन्यवाद, दुख मिले तो धैर्य, यही भक्ति का सबसे सुंदर स्वरूप है।

ईश्वर को हमारे शब्दों से अधिक हमारे कर्म प्रिय हैं। इसलिए यदि हमारी वाणी में मधुरता, व्यवहार में करुणा और हृदय में सेवा का भाव है, तो समझिए हमारी हर सांस एक प्रार्थना बन चुकी है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन, आलेख एनी हैडफील्ड का, वाचन संजीव मालवीय का।
1: स्वतंत्रता, ये शब्द सुनते ही मन में अनेक चित्र उभर आते हैं। कहीं खुले आकाश में उड़ता पक्षी, कहीं बिना भय के बोले गए विचार, तो कहीं अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने की क्षमता। पर क्या स्वतंत्रता केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति का नाम है, या ये उससे कहीं गहरी, शांत और सजग अवस्था है, जहां मन, विचार और कर्म एक दूसरे से ईमानदारी से जुड़े हो। स्वतंत्रता पर ये चिंतन हमें बाहरी दुनिया से भीतर की ओर ले जाता है, जहां सच्ची आजादी का अनुभव संभव होता है। इतिहास में स्वतंत्रता को अक्सर राजनीतिक या सामाजिक संदर्भों में समझा गया है। पराधीनता से मुक्ति, अधिकारों की प्राप्ति और समानता की स्थापना, ये सभी स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण आयाम हैं। किसी राष्ट्र का स्वतंत्र होना उसके नागरिकों को गरिमा, अवसर और सुरक्षा का भाव देता है। लेकिन क्या एक स्वतंत्र राष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र होता है? यदि मन भय, लोभ, क्रोध या असुरक्षा से बंधा हो, तो बाहरी स्वतंत्रता भी अधूरी प्रतीत होती है। सजग चिंतन हमें ये देखने का अवसर देता है कि स्वतंत्रता केवल कुछ करने की आजादी नहीं, बल्कि कुछ न करने की क्षमता भी है। हर इच्छा का पीछा करना स्वतंत्रता नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं को समझना, परखना और विवेकपूर्ण चुनना ही वास्तविक आजादी है। जब हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं, तब हम परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। पर जब हम सजग होकर उत्तर देते हैं, तब हम अपने भीतर की स्वतंत्रता को जीते हैं। मन की स्वतंत्रता का अर्थ है अपने विचारों के प्रति जागरूक होना। विचार आते हैं, जाते हैं, पर कहीं खो जाए ये आवश्यक नहीं। जब हम ये पहचान लेते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूं, तब एक गहरी मुक्ति का अनुभव होता है। ये मुक्ति हमें तुलना, ईर्ष्या और आत्म आलोचना से मुक्त करती है। सचेतना हमें सिखाती है कि वर्तमान क्षण में रहकर बिना निर्णय किए अपने अनुभवों को देखना ही स्वतंत्रता का अभ्यास है। स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू जिम्मेदारी भी है। आज के समय में तकनीक और सूचनाओं की भरमार ने हमें कई सुविधाएं दी हैं, पर साथ ही नई तरह की गुलामियां भी। निरंतर तुलना, त्वरित संतुष्टि और बाहरी मान्यताओं की चाह, ये सब मन को बांध लेते हैं। सजग चिंतन हमें ये पूछने के लिए प्रेरित करता है, क्या मैं अपने समय, ध्यान और ऊर्जा का स्वामी हूं, या मैं आदतों के इशारों पर चल रहा हूं? अपने ध्यान को जहां चाहे वहां रखने की क्षमता, ये भी स्वतंत्रता का एक सूक्ष्म पर शक्तिशाली रूप है। स्वतंत्रता का संबंध सत्य से भी है। जब हम स्वयं के प्रति ईमानदार होते हैं, अपनी कमजोरियों, सीमाओं और इच्छाओं को स्वीकार करते हैं, तब एक गहरी शांति जन्म लेती है। ये शांति हमें बाहरी अनुमोदन से स्वतंत्र करती है। सजगता हमें यह साहस देती है कि हम अपनी आवाज को सुने, भले ही वो लोकप्रिय न हो, और दूसरों की आवाज को भी सम्मान दे, भले ही हम उनसे सहमत न हो। अंततः स्वतंत्रता कोई स्थिर व्यवस्था नहीं, बल्कि एक सतत अभ्यास है। हर दिन, हर क्षण हम चुनते हैं, भय से या प्रेम से, आदत से या जागरूकता से, प्रतिक्रिया से या उत्तरदायित्व से। यही छोटे छोटे चुनाव हमारी स्वतंत्रता को आकार देते हैं।

0: जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होकर करुणा और विवेक के साथ जीते हैं, तब स्वतंत्रता केवल विचार नहीं रहती, वो जीवन की धड़कन बन जाती है। इस सजग चिंतन का सार यही है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। बाहरी परिस्थितियां बदल सकती है, पर भीतर की जागरूकता हमें हर स्थिति में मुक्त रहने की क्षमता देती है। स्वतंत्रता तब पूर्ण होती है जब हम स्वयं के साथ और संसार के साथ, दोनों के साथ संतुलन में जीते हैं। यही स्वतंत्रता का शांत, गहरा और टिकाऊ अर्थ है।
1: आकाशवाणी दौर से अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इसमें जानकारी दे रही हैं डॉक्टर अनुराधा शर्मा। विषय है आवश्यकता से अधिक उर्वरकों के उपयोग के नुकसान। सभी किसान भाई बहनों का डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों ने आज अपन बात करांगा आवश्यकता से अधिक उर्वरक नको उपयोग कसो नुकसानदायक छे इना विषय पर। अपन देखी रहा कि फसल नमा संतुलित न मृदा परीक्षण का बाद उर्वरक नको प्रबंधन इना समय बहुत आवश्यक हुई गई, क्योंकि हमारा किसान भाई बहन काई करी रहा है कि आवश्यकता से अधिक उर्वरक नको प्रयोग करी रहा है। ओका सिकाई रहा है कि उत्पादन बढ़ना की बजाय मिट्टी खराब हुई रही, फसल खराब हुई रही, पर्यावरण को नुकसान हुई रोज न साथ में किसान की आर्थिक स्थिति पर भी को प्रतिकूल प्रभाव पड़ी रोज। क्योंकि सबसे पहली बार जब हमारा किसान भाई अपनी फसल न उर्वरक नको उपयोग करज, उन समय पौधा बहुत छोटा छोटा रज, कोमल रज न कमजोर रज। यदि ऐसी स्थिति में ज्यादा उर्वरक नको प्रयोग हुई गो तो उनकी वृद्धि पर ओको विपरीत असर पड़ी सके, पौधा कमजोर रही जाए, ओका में कभी कभी लॉगिंग हुई जाए कि ओका से काई हो कि फसल पड़ी जाए, नीचे गिरी जाए, फूल न फल बढ़ना की स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ी सके, दाना फल न सब्जी न की गुणवत्ता भी घटी जाए अधिक उर्वरक न का प्रयोग से। न ओकासी भी ज्यादा बड़ी बात ये है कि हमारा किसान भाई बहन नाइट्रोजन न फॉस्फोरस न पोटाश को उपयोग तो बहुत अधिक मात्रा में करी रहा, तो ऐसी स्थिति में काई हो कि पोषक तत्व न को असंतुलन हुई जाए, क्योंकि पौधा न का सूक्ष्म पोषक तत्व न की भी आवश्यकता रहा, जैसा जिंक छे, आयरन छे, बोरान छे। यदि किसान भाई इनको उपयोग नहीं करता है तो इनकी कमी का कारण भी बहुत सारी समस्या न फसल न उत्पन्न हुई जाए। न एक साथ अधिक मात्रा में उर्वरक न का उपयोग से कीट न रोग न को प्रकोप भी बढ़ी जाए। मिट्टी पर पड़ने वाला विपरीत प्रभाव न की बात करा तो मिट्टी को पीएच न लवणता प्रभावित हुई सके। एक साथ साथ मिट्टी में जो लाभकारी सूक्ष्म जीव छे उनकी संख्या बहुत कम हुई जाए, ज्यादा उर्वरक न का प्रयोग करने से। न एक साथ साथ उना सूक्ष्म जीव न की गतिविधि भी कम हुई जाए, आवश्यकता से अधिक उर्वरक उपयोग का कारण मिट्टी की संरचना प्रभावित हुई रही, जैविक गुणवत्ता में भी गिरावट आई रही। न दीर्घ काल पर अपन देखा कि बहुत लंबा समय तक यदि अपन न उर्वरक न को ज्यादा उपयोग करियो तो मिट्टी की उर्वरता बिल्कुल कम हुई। किसान भाई बहन इना समय काई करी रहा है कि नाइट्रोजन का उर्वरक न को बहुत अधिक उपयोग करी रहा, तो काशी अधिक अतिरिक्त नाइट्रोजन जी छे वो वर्षा का साथ, सिंचाई का साथ वही न नीचे चली जाए, न भूजल का भी प्रदूषित करी रही, न एका साथ साथ हमारा खेत का आसपास जी जलाशय छे वो भी प्रदूषित हुई राज। नाइट्रेट का रिसाव जेखा अपन कवा नाइट्रेट लीचिंग का कारण पेयजल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई सके। जलाशय में बहुत अधिक मात्रा में ई जी उर्वरक छे पहुंची राज, तो इनकी ज्यादा मात्रा का कारण जलाशय में रहने वाला शैवाल जिनका अपन एलगी भी कवा उनकी वृद्धि बहुत अधिक मात्रा में हुई जाए, जेका से कि जलीय जीव जी छे उनका ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ने लगी जाए। नाइट्रोजन उर्वरक नको अत्यधिक उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड नाम की जी गैस निकल वो ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन बढ़ाई दे, नौका सिकाई हो कि जलवायु परिवर्तन में योगदान हुई रोज, पूरा वातावरण को जी तापमान छे वो बढ़ी रोज। एक साथ साथ किसान न की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हुई रही, उर्वरक न पर अनावश्यक खर्च बढ़ी रोज, लागत बढ़ी रही, शुद्ध लाभ उनको कम हुई रोज। अधिक उर्वरक देने का कारण उत्पादन तो बहुत अधिक नहीं मिलता है, पर आर्थिक नुकसान उनका बहुत मात्रा में उठानो पड़ी रोज। तो संतुलित उर्वरक प्रबंधन किना तरीका से करा एक बारा में बात करा। सबसे पहली बात उर्वरक न को उपयोग मृदा परीक्षण का आधार पर करा, जितनी आवश्यकता है उत्तोज कर। उर्वरक न का उपयोग का समय, सही मात्रा, सही समय न सही विधि, इन सब चीज न को ध्यान रखना बहुत आवश्यक छे। यदि हमारा किसान भाई बहन कृत्रिम रासायनिक उर्वरक न का स्थान पर जैव उर्वरक न साथ में जैविक खाद का साथ जितनी आवश्यकता है उत्तोज कृत्रिम रासायन उर्वरक उपयोग करेगा तो ये खेत का रहना बहुत अच्छा रहेगा।
2: नाइट्रोजन का उर्वरक देता समय हमारा किसान भाई बहन का ये भी ध्यान रखना की आवश्यकता छे कि विभाजित मात्रा में नाइट्रोजन को उपयोग करा कि पहला बार कम देणु दूसरी बार कम देणु उना हिसाब से दे। तो ये सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात छे कि फसल न संतुलित न मृदा परीक्षण पर आधारित उर्वरक प्रबंधन इना समय सबसे ज्यादा आवश्यक छे। तो आज हमारो किसान भाई बहन सी एतुज कहनु छे।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी जानकारी दे रही थी डॉक्टर अनुराधा शर्मा। विषय था आवश्यकता से अधिक उर्वरकों के उपयोग के नुकसान। आकाशवाणी इंदौर से अब सुनिए श्री रामचरितमानस कान का आज का प्रसंग।

भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं, धर्म शास्त्रों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। हर एक अवतार जिस कारण होता है, वो कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हेतु अनेक हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं जान सकता। शिवजी ने पार्वती को श्रीहरि के दो द्वारपालों जय और विजय की कथा सुनाई, जो सनकादि ब्राह्मण के शाप के कारण हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्ययाक्ष के रूप में मनुष्य योनि में पैदा हुए थे। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ तथा हिरण्ययाक्ष का वध प्रभु ने वराह का शरीर धारण करके किया, किंतु स्वयं प्रभु के द्वारा मारे जाने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मण का शाप 3 जन्मों के लिए था। कालांतर में यही दोनों रावण तथा कुंभकर्ण नामक महाबली राक्षस हुए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब कार्यक्रम विवरण में जानकारी लीजिए आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे आपका पत्र कार्यक्रम। प्रस्तुति राजेश की रहेगी। सुबह 8:30 फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा। लोक संगीत में सुबह 9:00 आप सुनेंगे हरि सिंह पटेल और साथियों को। सुगम संगीत में सुबह 9:15 आपको सुनवाएंगे रक्षा श्रीवास्तव के गाए गीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 आज आप सुनेंगे सुधाकर देवले का गायन, राग होगा मियां की तोड़ी।

जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण किया जाएगा सुबह 10 बजे। इसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 10:05 पर आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। दिन में 11 बजे से कार्यक्रमों का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से होगा। इसमें 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। फिल्म संगीत दिन में 12 बजे। 12:30 बजे कार्यक्रम होगा संग्रहालय से। महिला कार्यक्रम दिन में 1 बजे। लोक संगीत 1:30 बजे और 1:45 पर सुगम संगीत। दिन में 2:30 बजे प्रसारित किया जाएगा चित्रपट संगीत।

हमारी शाम की सभा आरंभ होगी संध्या 5 बजे कार्यक्रम युववाणी के साथ। इसमें आज का आकर्षण रहेगा क्रम एक ही फिल्म से। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे बरसात फिल्म के गीत। 5:45 पर आनंद आप ले सकते हैं फिल्म संगीत का। शाम 6 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित किया जाएगा। सुबह 6:30 बजे शाम 6:30 बजे सुगम संगीत में आज कलाकार होंगी अंजलि मराठे। 6:45 पर लोक संगीत में आज की कलाकार रहेंगे बलराम मालवीय और साथी।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 7:20 पर। इसमें आज आप सुनेंगे अर्चना मुकाती का कविता पाठ, साथ ही घरेलू व्यंजन और घरेलू नुस्खे के बारे में जानकारी दी जाएगी। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा रात 8:00 से हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया आप सुन सकते हैं रात 8:15। रात 9:15 चित्रगीत का प्रसारण किया जाएगा। रात 9:30 कार्यक्रम चर्चा का विषय है, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। आज रात 10:00 आप सुनेंगे रूपक परिधि का एकांत, प्रस्तुति प्रभु जोशी की रहेगी।

समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: एयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। भारत इंडोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढ़ाह्वानं कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य संसदं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गं अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी द्वयोः देशयोः जनानां लाभाय यूपीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इत्येतान् शिक्षां नवानवेषणं च समेत्य आंकिकीय सार्वजनिक अवसंरचनायां सहयोगस्य वर्धनाय अपि बलं प्रदत्तवान्। तत्पूर्वं प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्तां कृतवान्। उभय नेतृभ्याम् परस्पर हितस्य क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं ज्ञापनपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतम्। श्रीमोदी वर्याय एकस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन इंडोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारं बिन्तांग आदिपूर्णा इति प्रदत्ता। शिलातैल प्राकृतिक वातेन्धन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् यदि अन्ताराष्ट्रिय स्तरे अशोधित तैलस्य मूल्यानि स्थिरानि उतवा न्यूनानि भवन्ति तर्हि आन्तरिक पेट्रोल डीजल इत्येतयोः मूल्यानि सकारात्मक दिशि प्रवर्धन्ते इति अपेक्षा अस्ति। मंत्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् उपभोक्तृभ्यः दृक्पथः अनुकूलः एव अस्ति यतः वैश्विक तैल वातेन्धनापूर्तिः निरन्तरं विस्तृता अस्ति इति। नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य विकसित भारत शिखर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीपुरी अवदत् यत् भारतेन अद्यतनीयेषु दशकेषु वैश्विकोर्जा व्यवधानानां कूटनीतिक संवादस्य समायोजित नीतिगत हस्तक्षेपस्य देशीयोत्पादन वर्धनस्य आयातस्य विविधीकरणस्य च संयोजन माध्यमेन सफलतया समाधानम् अकरोत् इति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर अवदत् यत् भारत बहरीन सहभागित्वं निरन्तरं गहनं भवति। डॉ जयशंकर ह्यः बहरीन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायाः समापनम् अकरोत्। यात्रावधौ डॉ जयशंकर बहरीन देशस्य राज्ञा हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। असौ उप प्रधानमन्त्रिणा शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा इत्यनेन सह अपि मेलनं कृतवान्। एतासु सभासु विदेशमंत्री राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चेत्येतयोः पक्षतः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्। प्रधानमंत्री कार्यालयेन विविध क्षेत्रेषु एल नीनो इत्यस्य संभाव्य प्रभावानां सज्जतोपायानां च समीक्षार्थं प्रधानमंत्री कार्यालये उच्चस्तरीय समीक्षा सभा आयोजिता। प्रधानमन्त्रिणः प्रधान सचिवस्य डॉ पीके मिश्र वर्यस्य अध्यक्षतायां सेवातीर्थे ह्यः इयं सभा आयोजिता। अस्यां सभायां पञ्चदशतोप्यधिकानां मन्त्रालयानां सचिवाः वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। फुटबॉल क्रीडायां स्विट्जरलैण्डदेशः वैंकूवर नगरे पेनल्टी शूटआउट इत्येतस्यां

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देश समृद्ध होंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास के मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने संबंध समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर की बहरीन यात्रा कल संपन्न हो गई। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहजादे तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन अवैध धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में दोनों टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की।

0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: आयोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।
1: मीटिंग वेव 462.96 मीटर पर, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: महात्मा गांधी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है, जिसके बिना हमारा जीवन, हमारी नैतिकता और हमारे मूल्य शून्य है।
1: सबको सन्मति दे भगवान।
0: आइए चलें उस राह जो राह दिखाई बापू ने।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में करेंगे भूमि पूजन। प्रदेश में मॉनसूनी बारिश का सिलसिला जारी, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए दोनों देशों के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और समुद्री संबंधों को रेखांकित किया। श्री मोदी ने द्विपक्षीय साझेदारी के लिए गंगा महाकाम विजन प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस विजन के पांच प्रमुख स्तंभ सभ्यतागत जुड़ाव, साझा विकास, सुरक्षा, समुद्री समृद्धि और ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इंडोनेशिया तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दोनों का अनुभव वैश्विक स्तर पर प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने इंडोनेशिया के एमास 2045 विजन और भारत के विकसित भारत 2047 संकल्प को एक दूसरे का पूरक बताया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट लॉन्च, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत की और ब्रिक्स में इंडोनेशिया की सदस्यता का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर ग्लोबल साउथ और भारत प्रशांत क्षेत्र को एक नई दिशा देंगे। श्री मोदी ने कहा,
1: आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं। भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।
0: देश में सहकारी संघवाद को मजबूत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की गरिमामय उपस्थिति में दशकों पुराने नर्मदा जल विवाद का कल सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया। नई दिल्ली में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये। ये समझौता सरदार सरोवर परियोजना की निर्माण लागत साझा करने से जुड़े लंबित भुगतानों का वन टाइम सेटलमेंट करता है। गृहमंत्री श्री शाह ने कहा, इसे जल सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण राज्यों में आपसी समझ पड़ी है, जिससे राष्ट्रीय नुकसान को रोका जा सका है। इससे पहले अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल रक्षा, रेल और कृषि मंत्रियों से भी मुलाकात कर राज्य के विकास पर चर्चा की।

0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी लियोगोंग इंडिया के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की प्रमुख निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी की भारतीय इकाई द्वारा 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इस नए संयंत्र में 272 करोड़ रूपये का निवेश किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में यहां प्रतिवर्ष 6500 निर्माण उपकरणों का उत्पादन होगा, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आपको बता दें कि लियोगोंग वर्ष 2008 से पीथमपुर में कार्यरत है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह विस्तार मध्यप्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक निवेश और विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर एसआई और सूबेदार के पदों पर भर्ती का इंतजार खत्म हो गया है। विभाग द्वारा कुल 500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें से योग्यता के आधार पर 436 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चुन लिया गया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में संजय परमार ने टॉप कर पहला स्थान हासिल किया है। इस बड़ी कामयाबी और भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने पर डीजीपी कैलाश मकवाणा ने खुशी जताई है। प्रदेश में मानसूनी बारिश का सिलसिला चल रहा है। कई जगहों पर खूब पानी बरस रहा है तो कुछ स्थानों में पानी की कमी बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, जबलपुर और सागर सहित अधिकांश संभागों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। झाबुआ जिले में मानसून की सक्रियता से बारिश का दौर जारी है, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। उधर मंडा जिले में लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए कलेक्टर राहुल धोटे ने नर्मदा घाटों और शहर के जलभराव वाले इलाकों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा जिले में कलेक्ट्रेट परिसर में 24 घंटे सक्रिय रहने वाला जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वहीं गुना जिले में 1 जून से कल तक कुल 232.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। आज पड़वानी, धार, गुनासागर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ सहित कुछ जिलों में अति भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। कल रात नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हरा दिया। बता दें कि शनिवार को मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। दोनों टीमों के बीच पहला टी20 मैच बारिश की वजह से बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। सीरीज के आखिरी 2 मैच ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। इसके बाद भारत 3 मैचों की वनडे सीरीज में इंग्लैंड का सामना करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले में आधुनिक सुविधाओं से लैस सांची के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। खंडवा जिले में सेफ क्लिक 2.2 अभियान के तहत मैराथन और साइबर रन का आयोजन कर नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और सुरक्षा ऐप के प्रति जागरूक किया गया। आगर मालवा जिले में आगामी सिंहस्थ महापर्व को देखते हुए कलेक्टर ने उद्यानिकी विभाग को अधिक से अधिक किसानों को फूलों की खेती के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। डिंडौरी जिले में युवाओं और नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए आज एक दिवसीय तेजस कार्यशाला का आयोजन कर स्टार्टअप इकोसिस्टम और फंडिंग पर मार्गदर्शन दिया गया। इंदौर जिले में आयोजित रोजगार मेले में 12 प्रतिष्ठित निजी कंपनियों द्वारा 300 युवाओं को विभिन्न पदों पर नौकरी

के लिए चयनित कर रोजगार दिया गया। मंडला जिले में एमएसएमई उद्यमियों की क्षमता बढ़ाने के लिए दो दिवसीय कम्पोजिट वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी योजना और डिजिटल कॉमर्स पर लाइव सेवाएं मिलेंगी। भोपाल जिले में नगर निगम ने जिला प्रशासन के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध अतिक्रमण हटाए और 5 जर्जर मकानों को जमींदोज किया। सिंगरौली जिले में बलिया नाला में कोयला युक्त दूषित पानी बहाने पर कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खदान प्रबंधन पर 63 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया। गुना जिले में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द खरीदी के लिए 4 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां नोडल अधिकारियों की निगरानी में पारदर्शी व्यवस्था रहेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपका पत्र।

0: कार्यक्रम आपका पत्र सुन रहे सभी श्रोताओं को महिमा
1: और राजेश पाठक का
0: नमस्कार।
1: महिमा जी, क्या बात है, बारिश की फुहार।
0: बिल्कुल,
1: यानी हम कहें कि बारिश
0: बहुत
1: की
0: अच्छी शुरुआत
1: घड़ी लग गई है।
0: जी सर।
1: और बारिश की फुहार जो है मन को खुश कर देती है। इसमें प्रसिद्ध कवि नागार्जुन जी ने फुहारों पर उनकी एक रचना है, बारिश की फुहार जब आती है लाती है ढेर सारी मुस्कान, उदासी दूर हो जाती है, पुलकित करती मन और खुशियां जगा देती है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर पंक्तियां सर। और देखिए, जिस तरह बारिश की शुरुआत हुई है बहुत अच्छी, उसी तरह हमारे पत्रों की भी काफी अच्छी
1: बिल्कुल,
0: शुरुआत
1: बिल्कुल
0: हुई है।
1: और फुहार यानी पानी की बहुत छोटी और हल्की बूंदें या फुहारें चेहरे को छूती है तो बहुत ठंडक देती है और बहुत मन को आह्लादित कर देती है। और हम पत्र पढ़ने के पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 8 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय वीडियो गेम दिवस भी है आज के दिन, और हैनली महोत्सव भी ये मनाया जाता है। तो देखिए, आज का दिन भी खास है और आपने कहा फुहारों के बीच पत्रों की बरसात भी हो रही है और मेल भी आ रही है,
0: बहुत सारे लगातार।
1: एक बार आप पुनः बता दीजिए मेल एड्रेस क्या है, जो हमारे अभी तक श्रोता मेल नहीं भेजे हैं वो मेल भेज सकते हैं इस लाइव पत्रोत्तर कार्यक्रम।
0: बिल्कुल, हमारे बहुत सारे श्रोता हमको लगातार मेल कर रहे हैं और हम आपको बता देते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है APKAPATRAINDORE आपका पत्र इंदौर @gmail.com।
1: और जो मेल नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9993290063, एक बार पुनः सुन लें 9993290063। अब हम सिलसिला शुरू करते हैं।
0: बिल्कुल, आरंभ
1: तो
0: करते हैं।
1: पहला मेल,
0: जी हाँ, पहला मेल हमें भेजा है सूरज ढाकसे ने।
1: जी, क्या लिखते हैं?
0: जसवाड़ी से लिखते हैं कि हमें आकाशवाणी कार्यक्रम इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं और आकाशवाणी इंदौर से प्रातःकाल वंदना कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: साथ ही महिला सभा कार्यक्रम में भी एक से बढ़कर एक जानकारियां दी जाती हैं, वो हमें बहुत ही लाभदायक लगती हैं।
1: वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण बहुत

0: जरूरी है
1: जी। और सर इन्होंने आगे लिखा है कि 6 जुलाई का गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लगा और कार्यक्रम में हरियाली महोत्सव प्रकृति का हरित संवाद विषय पर कार्यक्रम में आमंत्रित मेहमानों से शिखा जी की बातचीत बहुत रोचक थी। एक अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत बधाई।
0: आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपने सुना और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हरियाली महोत्सव, हरियाली सप्ताह जो चल रहा है, इसका भी आनंद लेंगे। एक पेड़ माँ के नाम पेड़ अवश्य लगाएं ताकि पर्यावरण हमारा स्वच्छ रहे, हाँ। सुंदर रहे।
1: बहुत और बहुत ये अगला पत्र सर हमारे पास आया है कवर कॉलोनी,
0: पोस्टकार्ड आया
1: है, हाँ पोस्टकार्ड आया है कवर कॉलोनी बड़वा से। नाम नहीं लिखा है इन्होंने अपना
0: जी।
1: लिखते हैं कि प्रति सोमवार को गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम जो प्रसारित किया जाता है बहुत अच्छा होता है। इसमें
0: श्रीमाली जी का तो नहीं है?
1: नहीं, इसमें नाम नहीं है सर किसी का।
0: खैर जिनका होंगे समझ जाएंगे, ये पोस्टकार्ड है जी।
1: और लोकप्रिय कार्यक्रम आपका पत्र भी शुरू हो गया है, हमें बहुत पसंद आ रहा है और आकाशवाणी इंदौर के लगभग सभी कार्यक्रम हमको बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला
1: अगला मेल हमें आया है
0: जी
1: हुकुम चंद कटारिया जी का।
0: क्या लिखते हैं?
1: ये लिखते हैं कि 1 जुलाई को आपका पत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शालिनी जी और राजेश पाठक जी ने 28 श्रोताओं के पत्रों का समावेश किया था। जिन श्रोताओं ने मुझे कविता पाठ के माध्यम से धन्यवाद दिया है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सांध्यकालीन सभा के अंतर्गत विविध भारती में चॉइस टाइम कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा, एक से बढ़कर एक गीतों का समावेश हुआ उसमें। 3 जुलाई को से 28 अगस्त का अमरनाथ यात्रा के विषय में पहलगांव और बालटाल मार्ग के विषय में जानकारी बहुत अच्छी लगी। साथ ही जल भराव के कारण होने वाले रोगों के विषय में मलेरिया डेंगू विषय से डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा जी से हमें जानकारी प्राप्त हुई, बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। सुनहरे पल कार्यक्रम 4 जुलाई को तृप्ति लटपटे ने पेश किया, बरसात के सुहाने मौसम को ध्यान में रखकर बहुत अच्छे गीत उन्होंने बजाए, उन्हें धन्यवाद। पूजा ठाकुर की प्रस्तुति चॉइस टाइम में बेहद अच्छी लगी। 5 जुलाई को योग निरोग कार्यक्रम के अंतर्गत अभिलाषा गांव शिंदे जी से महिलाएं योग करके किस तरह से स्वस्थ रह सकती हैं इसमें जानकारी दी गई, वो भी बहुत अच्छी थी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे पास सर 7 जुलाई को और इन्होंने लिखा है कि सुबह सुबह सुनहरे पल कार्यक्रम राहुल तिवारी ने प्रस्तुत किया, वो भी बहुत अच्छा लगा, सुंदर गीत थे इसमें। MH हॉटलाइन कार्यक्रम के लिए भी धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा कार्यक्रम सुना और एक एक कार्यक्रम को आपने सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद। भेरूलाल बाख्तरिया धाकड़ जी उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से लिखते हैं, व्हाट्सएप किए हैं। इन्होंने लिखा है, चुपके से गुलाब दिया था किसी ने मुझे, कमबख्त खुशबू ने तहलका मचा दी। और आगे हम दोनों का उन्होंने नमस्कार करते हुए लिखा है कि आपका पत्र की शुरुआत राजेश जी बड़े ही सहराना अंदाज में करते हैं, बरसात का मौसम और आकाशवाणी के कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले दिनों इंदौर परिक्रमा में बाबा बर्फानी अमरनाथ की यात्रा के संबंध में जानकारी सुनी, बहुत अच्छी लगी। और जय बाबा बर्फानी, भूखे को भोजन प्यासे को पानी, कल गुड मॉर्निंग इंदौर में प्रकृति प्रेमी भाई बहनों से बातचीत, उनके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के संबंध में जानकारी जो प्रसारित की गई, बहुत अच्छी लगी। और 4 जुलाई को आकाशवाणी इंदौर और विविध भारती का संध्याकालीन प्रसारण मोबाइल ऐप पर सुनाई नहीं दिया। ये शिकायत बराबर आ रही है इस बारिश के मौसम में जो है नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम होने
1: हो जाती
0: के कारण
1: जी।
0: इस प्रकार की समस्याएं आ रही है।
1: फिर भी हमारे तो श्रोताओं का बहुत सारा जुड़ाव हमारे
0: इन्होंने
1: साथ, ये
0: बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ बाख्तरिया जी ने लिखा है। तो इनको मैं कहता हूं, ताउम्र महकती है याद की खुशबू, गुलाब के संदर्भ में, तुम ही ने दिल के गुलस्ता में प्यार बोया है, कभी जो छू के गुजरती है ठंडी ठंडी हवा, ये पंखुड़िया में तेरी ही साजिशों का मजा है, कांटों से डरना कैसा ए दोस्त मेरे, हर एक फूल के हिस्से में दर्द भी आया है,
1: बहुत
0: और इस गुलाब का खिलता ये चमन अपना, मोहब्बत का ये सफर बहुत सुहाना है। और हम अब मेल का क्या सफर है, हमारे श्रोताओं का
1: आगे बढ़ाते अगला हैं और अगला मेल देखते हैं। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू
0: जी।
1: और ये सभी लिखते हैं कि आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसमें हम फिल्म संगीत के कार्यक्रमों को ज़्यादा पसंद करते हैं। और उन्होंने एक गीत की फरमाइश भी लिख कर भेजी है, लेकिन सर ये प्रोग्राम चूँकि हमारा आपका पत्र कार्यक्रम है तो इसे हम फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और आगे लिखते हैं कार्यक्रम पेश करने वाले राजेश पाठक जी और महिमा मैडम जी को आपको नमस्कार करते हैं। लिखने वाले हैं हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोरखे, नंदा बोरखे, हनुमान बोरखे। आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं और ख़ासकर मनभावन, आपकी पसंद चॉइस टाइम MH हॉटलाइन, ये सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। और आगे लिखा है मनभावन कार्यक्रम पहले की सभा में चालू किया जाए। तो आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है। और अगला फिक्स पॉइंट चार्ट में क्या हाँ तक गुंजाइश होती है हम विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जैसा कि कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से देश और विदेश सभी जगह भी सुना जा रहा है, और हमारे बीच इंजीनियर गौरव पालीवाल US अमेरिका और दीपिका पालीवाल US अमेरिका और अरुण पालीवाल एवं मास्टर सामवेद सिडनी ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने मेल किया है। हमारे पास मेल नहीं, ये व्हाट्सएप किया है इन्होंने और लिखा है आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम हम सिडनी में भी आनंद ले रहे हैं, अमेरिका में भी ले रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया से भरपूर आनंद ले रहे हैं और सुन रहे हैं और सभी दोस्तों के साथ सुन रहे हैं। सभी कार्यक्रम रोचक और ज्ञानप्रद लगता है। इस पत्र से हम सभी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करते हैं। एक विशेष बात, हम यहाँ के परिचितों को भी आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनने के लिए प्रेरित करते हैं और अब US अमेरिका में हमारी बेटी और दामाद भी रेडियो ऐप के माध्यम से जुड़ गए हैं और वे लोग आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के कई लोग दूसरे देश में रहते हैं, काम करने के लिए गए हैं, यहाँ की बातें जब अपनी जमी की बातें जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और अपनापन महसूस होता है। आपने हमें लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से इन्होंने जो वसुधैव कुटुंबकम का जो इन्होंने चरितार्थ किया है, काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो बेहद खुशी होती है कि इतनी दूर दूर से श्रोता हमें याद करते हैं, बड़ी गर्माहट के साथ हमारे पास पत्र भेजते हैं और उन्हें हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेते हैं ये अगला ईमेल जो हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे ने
0: जी।
1: लिखते हैं कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बेहद अच्छे लगते हैं। 7 जुलाई को महिला सभा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना पर जो जानकारी दी गई थी वो बहुत लाभदायक लगी और मेरी श्रृंखला उड़ान के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता इंदुबाला चौहान से की गई बातचीत बहुत अच्छी लगी। इत्र परफ्यूम से सवारे रूप लावण्य विषय पर जानकारी दी गई वो भी बहुत अच्छी लगी।
0: और इन्होंने मेल भी किया है दुर्गेश नागनपुरे जी ने
1: जी।
0: तो हम अपने श्रोताओं के एक चीज और बतला दें कि आप जो या तो मेल भेजें या व्हाट्सएप करें तो इससे क्या हुआ है कि दूसरे श्रोताओं को भी जो है पढ़ने में जो है उनको अच्छा लगेगा, उनको भी शामिल किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मेल
1: अब आप जिनका नाम ले रहे थे प्रवीण शिमाली जी का जी। मेल है हमारे पास और ये तो सिलसिलेवार हमारे पूरे कार्यक्रमों की समीक्षा लिखकर भेजते हैं।
0: क्या लिखे हैं, पढ़ें।
1: 2 जुलाई को साहित्यिकी के अंतर्गत डॉक्टर सुनीता जैन की कहानी बचपन की पिंक फ्रॉक बहुत अच्छी लगी। 3 जुलाई को इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम सुना जो स्थानीय गतिविधियों पर केंद्रित था, बहुत ही रोचक था। 8:30 बजे कवि गोष्ठी, सभी कविवरों की रचनाएं मन को भा गईं। 4 जुलाई को खेती गृहस्थी में उन्हेल के कृषक भाई भैरूलाल जी की बातचीत बहुत पसंद आई। 5 जुलाई को योग निरोग कार्यक्रम में हमें स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानकारी दी गई, बहुत अच्छी थी। 6 जुलाई को गुड मॉर्निंग इंदौर हरियाली

0: महोत्सव प्रकृति का हरित संवाद विषय पर बहुत अच्छा कार्यक्रम था और अनूठी प्रस्तुति के लिए शिखा जी को बहुत धन्यवाद। 7 जुलाई को विविधा के अंतर्गत जल संकट पर आधारित सामयिक कविताएं और कहानी बहुत पसंद आई। इसी दिन का चॉइस टाइम कार्यक्रम सुना जो मौसम के अनुरूप था और दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम की भी इन्होंने प्रशंसा लिखी है। साथ ही इंदौर परिक्रमा, चित्रपट संगीत आदि कार्यक्रम बहुत हमें पसंद आते हैं। बड़ी मेहनत से हमारे श्रोता जो अनाउंसर साथी हैं वो हम तक पहुंचाते हैं, उनके लिए धन्यवाद भेजा है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए काफ़ी सुधी और काफ़ी पुराने श्रोता हैं। आज इन्होंने कुछ नर्मदा जी के बारे में नहीं लिखा, बारिश के मौसम में क्या स्थिति है।
0: बारिश के बारे में तो इन्होंने कुछ लिखा नहीं है ऐसा विषय।
1: खैर अगर सुन रहे हैं तो बिल्कुल लिखिए क्या स्थिति है,
0: क्योंकि इंदौर से जरूर लिखते हैं ये।
1: खंडवा जाने वाले लोग को मन में ये रहता है कि कहीं पानी ऊपर तो नहीं हो गया, कहीं यातायात बंद तो नहीं हो गया। जी क्या लिखे
0: आखिर में, 3 छोटी-छोटी पंक्तियां कि जल है तो कल है, पर्यावरण है तो हम है, बेटी है तो कल है और स्वच्छता ही सेवा है। ये
1: बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी जी, तनुजा जोशी जी हमें व्हाट्सएप किए हैं, लिखे हैं दिनांक 5 जुलाई रविवार को कल के सितारे बच्चे हमारे कार्यक्रम जिनका संयोजन डॉक्टर प्रीति छड़ीदार द्वारा किया गया था, बहुत ही रोचकता से प्रस्तुत किया गया। दीप लक्ष्मी त्रिपाठी द्वारा सिया खुराना, प्रियांशी भाटा, ईरा तिलवंकर एवं कनिष्का मंडलोई की हंसी मजाक से भरपूर चर्चा बहुत सुंदर लगी। और 6 जुलाई को गुड मॉर्निंग कार्यक्रम जो गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम था बहुत अच्छा लगा। और आगे इन्होंने लिखे हैं कि उद्घोषका शिखा साहू जी एवं एनसीसी ब्रिगेडियर जो हैं श्री संजीव कुमार जी के साथ हरियाली महोत्सव पर प्रकृति का हरित संवाद कार्यक्रम के तहत पर्यावरण विषय पर संवाद जन उपयोगी लगा। और शिखा जी लिखे हैं गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम में सब श्री हैप्पी गादिया और डॉक्टर राम रक्षेश और ब्लूनी मेहता के साथ चर्चा भी बहुत उपयोगी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भैरूलाल बख्तरिया जी आगे बढ़ाते हुए लिखा है हर एक पल गुलाब हो जाता है, लम्हा लम्हा किताब हो जाता है, मेरी नज़रों को जो पढ़ा होता सारा पानी प्रसाद हो जाता है। क्या बारिश के मौसम में
0: बहुत
1: इन्होंने
0: अच्छी पंक्तियां लिखी
1: वाक्यों के साथ।
0: बिल्कुल
1: हम तो देखिए इनका शामिल हो चुका था लेकिन ऐसा इन्होंने लिखा कि मजबूर हो गए कि एक बार और पढ़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल,
0: और अगला मेल हमारे पास आया है अनिल बामनिया जी का।
1: जी
0: ये लिखते हैं कि आपका पत्र कार्यक्रम पेश करने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 1 जुलाई का कार्यक्रम आपका पत्र बेहद पसंद आया और कार्यक्रम के शुरू में जो कविता पर आधारित शब्दों का चयन किया गया था और विभिन्न प्रकार की जानकारी भी दी गई, हम श्रोताओं को उसे सुनकर ज्ञान में वृद्धि हुई और इसी प्रकार से हमारे श्रोताओं का मनोरंजन जरूर करते रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ इसी चीज को परमिला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम और समस्त बामनिया परिवार लिखे हैं कि 1 जुलाई 2026 को आपके केंद्र से आपका कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया गया था राजेश पाठक जी द्वारा, कार्यक्रम के शुरू में कविता पर आधारित शब्दों का जो चयन किया गया और विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई उससे सुनकर हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई और बड़ा ही अच्छा लगा। और ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी जी ने विनोद राठौर से युवाओं को लेकर बड़ी अच्छी चर्चा की, काफ़ी अच्छा लगा। उन्हें स्वयं का रोजगार को लेकर बातचीत की जो जानकारी दी गई काफी अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद। और
0: अगला मेल है हमारे पास सुदर्शन शाह का।
1: क्या लिखते हैं?
0: ये लिखते हैं कि 3 जुलाई को स्थानीय गतिविधियों पर कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा सुना, काफी ज्ञानवर्धक और रोचक था। 8:30 बजे कवि गोष्ठी भी सुनी और दिनांक 4 को खेती गृहस्थी में उन्हेल जिला उज्जैन के कृषक भैरूलाल जी की वार्ता काफी पसंद आई इन्हें। और कार्यक्रम युववाणी 3 तारीख का इनको बहुत पसंद आया। और साथ ही लिखते हैं कि समस्त महानुभावों के विचार सुनने को मिले हरियाली महोत्सव के बारे में हरित संवाद। वाकई में आज हम सभी को इस विषय की तरफ वाकई में ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि हरियाली के बिना जीवन संभव नहीं है। कार्यक्रम की अनूठी प्रस्तुति के लिए शिखा जी को बहुत धन्यवाद और

0: नुमाइशी गीतों के कार्यक्रम को भी इन्होंने काफी पसंद किया है।
1: जी, हरियाली है तो खुशहाली है। हनुमान सिंदे ऋषिकेश सिंदे ग्राम सीटे जिला सांगली महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। 6 जुलाई को प्रसारित गुड मॉर्निंग इंदौर प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा। पर्यावरण संबंधी जो जानकारी थी काफ़ी अच्छी लगी। पेड़ लगाकर उनकी रक्षा करना और उनको बढ़ाना सभी का कर्तव्य है। पर्यावरण में काम करने वाले पर्यावरण हितैषी की बातचीत बहुत अच्छी लगी। शिखा जी की प्रस्तुति जो थी काफ़ी प्रभावी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है हमारे कार्यक्रमों को सराहा। और चौखड़ा धाम कॉलोनी सनावत जिला खरगोन कृष्ण पाल सिंह चौहान तारा देवी चौहान नवोदित चौहान वैभव पाल सिंह चौहान ध्रुवी एवं प्रद्युम्न सिंह चौहान हमें व्हाट्सएप किए हैं और लिखे हैं, झूठी बात फैलाने के लिए इंसान रखने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन सच्ची बात को साबित करने के लिए वकील रखना पड़ता। क्या बात है,
0: इन्होंने
1: बहुत ही सुंदर और बिल्कुल सार्थक बात इन्होंने लिखी है।
0: बिल्कुल।
1: और आगे इन्होंने लिखा है, 1 जुलाई को आपके पत्र कार्यक्रम काफी अच्छा लगा, आपसे विनती है पत्र पूरा पढ़ा जाए। कभी कभी मजबूरी में कंजूसी करना पड़ता है।
0: हाँ, लगातार
1: दूसरे को भी शामिल करना पड़ता
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल। और काफी ईमेल भी विस्तृत विस्तृत समीक्षा,
1: तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि बिल्कुल सार्थक शब्दों में और बिल्कुल छोटे में आप लिखें ताकि दूसरे श्रोताओं को भी मौका मिल सके।
0: हनुमत शिंदे रूपी ऋषिकेश सिंदे लिखते हैं सांगली से, 6 तारीख को गुड मॉर्निंग कार्यक्रम अच्छा लगा, पर्यावरण रक्षण सभी का सहभागी होना इसमें हम सभी का कर्तव्य है और पर्यावरण में काम करने वाले पर्यावरण हितैषी की बातचीत हमें बहुत अच्छी लगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी चौहान जी की बातें हमने पूरी नहीं की थी, आपने बिल्कुल इनको कट करते हुए आगे, तो आगे इन्होंने चौहान जी कृष्णपाल सिंह चौहान जी लिखते हैं, 3 जुलाई को साप्ताहिक कार्यक्रम इंदौर का परिक्रमा अच्छा लगा और 6 जुलाई को हरियाली महोत्सव श्रावण मास के पहले सुंदर गानों की झड़ी लगा दी गई प्रस्तुतकर्ता ने। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो प्रस्तुतकर्ता होते हैं आपको मनोरंजन के लिए सूचना शिक्षा और मनोरंजन के लिए कई कार्यक्रम पेश करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रमों को सराहा। और अगला
0: मेल हमारे पास आया है धर्मपुरी जिलाधार से, शेख फहीम मोहम्मद है, मोहम्मद तस्लीम शेख है, मुजफ्फर अयान है, फैजान है, सुमेरा कशिश साइमा हसनैन और खुशी, ये सभी लिखते हैं कि दिनांक 7 जुलाई को FM विविध भारती से प्रसारित सांध्यकालीन प्रोग्राम चॉइस टाइम सुना, बहुत अच्छा लगा। इस प्रोग्राम में मौसम के अनुरूप बारिश के गीतों को सुनकर आनंद आ गया। माजिदा जी ने बेहद खूबसूरत प्रस्तुति दी, बहुत खूबसूरत शायरी सुनाई। कार्यक्रम में घने काले बादलों और रिमझिम बारिश की झड़ी के बीच माजिदा खान की दिलकश और उम्दा पेशकश सुमधुर गीतों की झड़ी ने चॉइस टाइम कार्यक्रम को अविस्मरणीय बना दिया।
1: क्या बात है। और इसी कार्यक्रम को प्रशंसा करते हुए हमारे पास और लिखे हैं, BR राजश्री, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज, श्रद्धा, सोमानी नगर इंदौर से, ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा लगा। और इन्होंने लिखा है, राजेश जी, मनीषा जी, रूपाली जी, अमृता, सालनी जी, महिमा जी, सभी को प्यार भरा नमस्कार इन्होंने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। महिमा जी, हमारे पास व्हाट्सएप संदेश लगातार आ रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और जेटापुर खरगोन से रचना राजेश खेड़े, तनुज अनुपमा हनी खेड़े युग, ये लिखे हैं, आकाशवाणी के प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने तथा इंदौर आकाशवाणी की स्थापना के 71 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी परिवार तथा श्रोता बहनों एवं बंधुओं को ढेर सारे शुभकामनाएं देते हुए लिखे हैं कि बहुत हर्ष हो रहा है कि सनावत में 71वें स्थापना दिवस मनाया गया और उसमें भी साक्षी रही हूँ। क्या बात है। और विगत 25 वर्षों में आकाशवाणी परिवार का हिस्सा रही हूँ, ये आकाशवाणी के प्रति मेरा स्नेह समर्पण अनवरत जारी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और मुझे भक्ति संगीत, चिंतन, रामचरित मानस पाठ, सुनहरे पल, युवानी बहुत पसंद आते हैं। और 6 जुलाई को खेती गृहस्थी कार्यक्रम में मशरूम की खेती के बारे में जो जानकारी दी गई बहुत अच्छी लगी। और

0: उन्होंने एक निवेदन किया है कि उमंग कार्यक्रम में जो मोबाइल नंबर और ईमेल इतनी जल्दी बोलते हैं कि लिख नहीं पाते हैं, तो बिल्कुल मोबाइल नंबर हम उनको आराम से बोलने के लिए बोल देंगे। और फिलहाल हमारे पास अभी तक जो व्हाट्सएप नहीं भेजे हैं एक बार पुनः व्हाट्सएप सुन लें, 9993290063। आप लाइव प्रोग्राम में पत्रोत्तर में आप अभी भी
1: हमें मेल कर सकते हैं और हम
0: और मेल एक बार फिर आप मेल आईडी बता दें
1: जी। हमारा मेल आईडी है APKA आपका PATRA पत्र INDORE indore@gmail.com।
0: जी हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, लेकुड़ा आंजना उन्हेल जिला उज्जैन से लखन बैरागी जी लिखते हैं, आज सुबह रामचरितमानस और चिंतन और मिट्टी परीक्षण और जितनी आवश्यकता हो उतनी ही रासायनिक खाद का प्रयोग, खेती गृहस्थी कार्यक्रम में सफ़ेद मूसली की जानकारी दी गई काफ़ी अच्छी लगी। और देखिए सफ़ेद मूसली की खेती भी हमारे किसान भाई कर रहे हैं और इन्होंने जो बाक्तरिया जी के जो छोटे बालक हैं भोला जी, उन्होंने कृषि में स्नातक की है और उन्होंने सफ़ेद मूसली की खेती इस बार शुरू की है। और देखिए एक जब युवा करता है जो इस क्षेत्र में ज्ञान लेकर, तो एक नई ऊर्जा के साथ करता है और बिल्कुल कृषि में नवाचार हमारे वैज्ञानिक बनाते हैं और हमारे किसान भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला
1: मेल हमें भेजा है महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश ममताबाई वर्मा ने। ये लिखते हैं, आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं, 6 जुलाई का आकाशवाणी मराठी कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा,
0: बहुत बहुत
1: और इस कार्यक्रम में निसर्ग नाद वन महोत्सव विशेष रूप से पसंद आया, आकाशवाणी इंदौर की पूरी टीम को बधाई।
0: आपको भी बधाई। और देखिये जैसा श्री माली जी को हमने निवेदन किया था कि नर्मदा जी का क्या जलस्तर है, तो इन्होंने लाइव में इन्होंने अभी लिखा है, नर्मदा जी का प्रातः दर्शन भी किया है और नर्मदा जी का जलस्तर जो है अभी ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि अभी आप बिल्कुल जा सकते हैं, इन्होंने भेजा है। तो देखिए

0: तो देखिए इस तरह जो अभी त्वरित इन्होंने फोटो
1: शेयर
0: किया और तुरंत इन्होंने
1: बड़ा अच्छा लगता है,
0: तो बड़ा अच्छा लगता है और लोगों को ये भी लगता है कि हमारे जो श्रोतागण जो जा रहे हैं इंदौर से जा रहे हैं, खंडवा जा रहे हैं, एक मन में डर लगती है कि कहीं नर्मदा जलस्तर कहीं बस पे उतरना तो पड़ेगा। तो बहुत बहुत आपने समसामयिक जानकारी से हमें अवगत कराया, अपने स्रोतों को भी जानकारी उन्होंने दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रवीण श्रीमाली जी की सक्रियता को हम सलाम करते हैं कि लगातार जुड़े रहते हैं और हम तक जानकारियां पहुंचाते रहते हैं।
0: हमारे बीच
1: अच्छी
0: एक
1: समीक्षा
0: और व्हाट्सएप संदेश खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से आया, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोराना जी और अदलपुर गोगावा से लिखने वाले हैं संजय बामनिया, माया, काना और कृष्णा। लिखते हैं दोनों को प्यार भरा नमस्कार। और आगे इन्होंने लिखा है, आपका पत्र इस कार्यक्रम में हम व्हाट्सएप कर रहे हैं, जरूर शामिल करिएगा। शामिल बिल्कुल हो गया और काफ़ी अच्छा उमदा आपका कार्यक्रम लग रहा है, हम सुन रहे हैं और प्रस्तुतकर्ताओं की वाचक की आवाज़ और शैली बहुत ही अच्छी है, सुनने में अच्छा लगता है। आपके यहाँ के सारे प्रोग्राम बहुत अच्छा और प्रेरणावर्धक हैं। और आगे इन्होंने लिखा है, खास करके सुनहरे पत्र बहुत दिलचस्प लग रहा है आपके प्रोग्राम में, हम ईमेल का जवाब बहुत ही भावपूर्ण और दिलचस्प से जो ईमेल करते हैं उसका जवाब ये सुनते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो हमारे श्रोता लगातार हमसे जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आपका पत्र। और देखिए अगला ईमेल हमें भेजा है नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन ने। ये लिखते हैं छत्तीसगढ़ से कि आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम हमें बेहद पसंद है, इसमें चॉइस टाइम कार्यक्रम अच्छा लगता है, मनभावन कार्यक्रम, MH हॉटलाइन प्रोग्राम अच्छा लगता है और किसी भी गीत में हमारा एक गीत शामिल कर दें तो हम इन्हें बता दें कि बहुत सारे श्रोता हमें आपका पत्र कार्यक्रम में गीत की फरमाइश भेजते हैं, तो हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप हमारे फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में अपने गीत की फरमाइश भेजें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद और बिल्कुल आप फरमाइश भेजें, हम शामिल करेंगे। अगला मेल
1: बाबू नागपुरे का है। यह अगला मेल सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा लिखते हैं कि हमें आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मेहनत से इन कार्यक्रमों को तैयार किया जाता है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए महिमा जी, इस समय जो है साइबर फ्रॉड जो है काफ़ी चल रहा है,
1: बिल्कुल,
0: और इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। अलीराजपुर से एक शिक्षक हैं संगीता भवसार जी, इन्होंने बिल्कुल किस प्रकार लोगों को प्रेरित करते हैं कुछ एक अपना एक छोटा सा संदेश इन्होंने दिया है।

0: तो देखिए कितनी अच्छी संदेश दे रही है, इन्होंने माइक से रोड पर ये संदेश दे रही है, साथ में हमारे पुलिस भाई भी खड़े हैं। साइबर फ्रॉड से बचना चाहिए और एक एक करके मेहनत से पैसा कमाते हैं तो ठगी का शिकार बिल्कुल नहीं हो। डिजिटल का जमाना है, सावधानी बरतें।
1: और लगातार हमारे यहाँ से कार्यक्रम भी प्रसारित होता रहता है इस बारे में कि आप साइबर फ्रॉड से बचे रहें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और अगला मेल,
1: अगला मेल हमें आया है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का।
0: ये भी मेरठ कैंट से क्या लिखते हैं?
1: लिखते हैं कार्यक्रम, इंदौर के सभी कार्यक्रम हमें बेहद पसंद हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पसंद कार्यक्रम है सुनहरे पल, और जितने भी फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम होते हैं हम उन्हें बेहद रोचकता के साथ सुनते हैं।
0: बहुत,
1: और इन्होंने
0: बहुत
1: गाने की फरमाइश भी, बहुत सारे गाने हमको फरमाइश के लिए भेज दिए इस
0: तो
1: कार्यक्रम में।
0: फरमाइशी कार्यक्रम में शामिल कर दीजिए। और इनकी शिकायत हम समझते हैं दूर हो गई
1: जी।
0: और अगला मेल ये किनका है?
1: अगला मेल हमें आया है राजेंद्र शुक्ल का।
0: जी, क्या लिखते हैं?
1: इन्होंने हमारे लोकगीतों के कार्यक्रमों को काफी पसंद किया है, और ये लिखते हैं कि मुझे हीरा सिंह बोरलिया के लोकगीत बहुत अच्छे लगते हैं, आप इन्हें प्रसारित किया करें, ऐसा लिखते हैं।
0: बिल्कुल, तो आप इनका सुझाव नोट कर लें। देखिए सिलसिला काफ़ी, हमारे पास कुछ पोस्टकार्ड भी आए हैं, ये हम पढ़ रहे हैं
1: जी।
0: ये पुलिस चौकी गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता जी, पूजा बिक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, कुमारी देवका चौधरी और गणेश जी, कार्तिक और संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, ये इन्होंने ये भी लिखा है कि आपकी पसंद कार्यक्रम जो आपके यहाँ से प्रसारित किया जाता है, और इसके साथ जो विविध भारती का कार्यक्रम हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं, रोचक पूर्वक हम लोग सुनते हैं, और जब उसमें हम अपना नाम सुनते हैं तो हमारा जो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस कारण हम आपकी पसंद कार्यक्रम जो है हम पसंद करते हैं।
1: हाँ।
0: गाने हम विविध भारती में भी सुनते हैं लेकिन उसमें हमारा नाम शामिल नहीं होता है, तो
1: कई श्रोताओं
0: की भावनाओं को हम समझ रहे हैं।
1: और कई श्रोताओं की अक्सर शिकायत होती है कि हमारा नाम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं करते हैं। तो देखिए बहुत सारे खत होते हैं हमारे पास, अब हम किन किन एक

0: जुलाई को इस वर्ष खंडवा में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा और श्री दादाजी धोने वाले की नगरी खंडवा इस समय पूर्ण रूप से सेवा भाव लिए होती है। संपूर्ण देश से नागरिक और श्रद्धालु यहाँ पर पधारते हैं। वास्तव में जब मैं खंडवा में था तो हम लोग भी आकाशवाणी खंडवा के सामने स्टॉल लगाते थे और लोगों को जो सेवा करने का जो मज़ा आता था वो उसका अलग ही नज़ारा है। लाखों जो श्रद्धालु आते हैं धोनी वाले दादा का दर्शन करने के लिए आते हैं और उस दिन तो इतने स्टॉल लगते हैं कि लोग खा नहीं पाते हैं। तो देखिए वास्तव में ये और इस तरह का पूरे देश में एक अनूठा कार्यक्रम होता है। तो वास्तव में सेवा भावना और जन सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है और सारी समर्पण भाव से लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास एक और पोस्टकार्ड है, प्रकाश सेन जी का है। सुनीता सेन जी, रवि सेन, कृष्णा सेन, डग्गू सेन, पंचशील कॉलोनी, मूसाखेड़ी, इंदौर से ये लिख रहे हैं। ये इन्होंने लिखा है कि राजेश जी, अमृता जी, वंदना जी, रूपाली जी और विजया जैन जी, सभी का कार्यक्रम हमने सुना, बहुत अच्छा लगता है। और माजिदा खान जी की जो अभी कार्यक्रम इन्होंने प्रस्तुत किया, दिल को छू लिया, हरियाली कार्यक्रम हमें काफ़ी अच्छा लगे।
1: इसी तरह का एक मेल हमारे पास भी है, प्रवीण रानपुरा। ये लिखते हैं कि पूजा पायल, जगदीश जौहरी, क्या आपके यहाँ के सभी फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हम बेहद पसंद करते हैं और बड़ी रोचकता के साथ सुनते हैं इन कार्यक्रमों को, और सभी के लिए इन्होंने धन्यवाद भेजा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अगला मेल, और एक बार पुनः मेल आईडी बता दें, अभी भी समय है, जो हमारे श्रोतागण नहीं भेजे हैं वो भेज सकते हैं। एक बार और बता दें,
1: हमारा ईमेल आईडी है आपका पत्र indore@gmail.com। इसे आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, APKA आपका PATRA पत्र INDORE indore@gmail.com। और लगातार आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने हुए हैं, बेहद खुशी की बात है कि श्रोता बड़े गर्मजोशी के साथ अपने प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते हैं। तो कार्यक्रम का समय देखिए समाप्ति की ओर है,
0: लेकिन अभी है, अभी समय है। और जब बारिश का माहौल चल रहा हो तो ऐसी में धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारम्बार, आओ मिलकर कसम खाएं, अपनी धरती हरित बनाएं। धरती पर हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो, पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है, पेड़ पौधों को पानी दें, जीवन की यही निशानी दें। आओ पेड़ लगाएं हम, पेड़ लगाकर जग महकाकर, जीवन खुशी बनाएं हम, आओ पेड़ लगाओ हम।
1: तो देखिए खूबसूरत संदेश भरी पंक्तियां हैं,
0: संदेश भरे पंक्तियां हैं और इस संदेश पर अमल करने की जरूरत है।
1: बिल्कुल
0: इस समय, बिल्कुल आप
1: इस समय जो अभी इसके पहले हमने गर्मी का मौसम देखा, लगातार तेज गर्मी बढ़ रही है और पेड़ लगाना हम सभी की आवश्यकता बन गया,
0: ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे।
1: बिल्कुल।
0: सदाबहार रेडियो श्रोता संघ है, जिला बुरहानपुर, ग्राम मोहस से लिखने वाले हैं मुशर्रफ खां तरबी, जरीना तरबी, मुबारक तरबी, प्रवेश तरबी, बिटिया रोजमिन तरबी, तैमूर तरबी। इन्होंने लिखा है कि आपका कार्यक्रम जो चॉइस टाइम होता है काफ़ी अच्छा लगता है और हम जो है सपरिवार सुनते हैं और आपके सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। और ख़ास करके इन्होंने जो है हरियाली कार्यक्रम जो अभी विगत 1 जुलाई से हमारा हरियाली पर केंद्रित कई कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं और इसमें बच्चे भी आनंद ले रहे हैं और सभी लोग आनंद ले रहे हैं, सभी लोग प्रेरित हो रहे हैं। इसके अलावा और कुछ मेल है या पत्र है?
1: और बस सर, ये
0: काफी
1: सारे
0: हैं।
1: इशारा कर रही है कि अब समय
0: तो
1: का
0: दो लाइन बोलते हुए,
1: बिल्कुल,
0: आओ बच्चों पेड़ लगाएं, हरियाली सब ओर फैलाएं, पेड़ हरा सोना कहलाते, वायु को ये स्वच्छ बनाते, एक एक सब पेड़ लगाओ, मीठे मीठे फल भी खाओ।
1: और इसी के साथ आज के कार्यक्रम से
0: घड़ी की सुई इशारा कर रही है, हम लेते हैं विदा।
1: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम

0: आपका पत्र। थोड़ी ही देर में समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
4: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और सर उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। दास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित

0: जंबानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया।

0: गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 एसपी हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में तीन व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
2: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार। गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी। 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की, केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं स्वीकार करें महिमा का नमस्कार। बारिश की फुहारें, मिट्टी की सौंधी खुशबू और हरियाली से सजा प्रकृति का मनमोहक रूप। बारिश का मौसम अपने आप में ढेर सारी खुशियां लेकर आता है और इस तरह का मौसम अभी लगातार चल रहा है। लगातार बारिश हो रही है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो जहां प्रकृति अपने चरम पर होती है उसका रूप बहुत सुंदर होता है बारिश में। उससे मन हमारा बेहद खुश और आनंदित हो जाता है, पर थोड़ी सी लापरवाही कई स्वास्थ्य समस्याओं और दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है। तो आज के इस कार्यक्रम में बारिश के मौसम में किन किन बातों का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत से।

श्रोताओं, बारिश के मौसम में मच्छरों का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए घर के आसपास कहीं भी गड्ढों में पानी जमा ना होने दें। मच्छरदानी का विशेष उपयोग करें और आवश्यकता होने पर मच्छर भगाने वाले सारे उपाय अपनाएं। इससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से आप बच सकते हैं। इसके अलावा एक ज़रूरी बात कि बारिश के मौसम में छोटे छोटे कीट पतंगे भी बहुत निकलते हैं, जो हमारे शरीर पर अगर चल जाएं तो एलर्जी का कारण बनते हैं। तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स का विशेष इस्तेमाल करें और अपने आप को बचाएं। सुनिए फिलहाल कार्यक्रम में अगला गीत।

आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। बात कर रहे हैं हम बारिश के मौसम में कैसी सावधानी हमको रखना चाहिए। तो श्रोताओं, बारिश का मौसम ऐसा होता है कि इसमें हमको गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन बहुत करता है और तेल से बनी चीज़ें कई बार खाने में आती हैं, लेकिन हमें अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस मौसम में हमें थोड़ा संभल कर खाना चाहिए। हमेशा उबला और साफ पानी पिएं। बाहर खुले में मिलने वाले कटे हुए फल, बासी भोजन, अस्वस्थ खान पान से बहुत हद तक बचिए। ताज़ा घर का बना और पौष्टिक भोजन ही स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होता है, तो क्यों ना घर में सादा सिंपल भोजन बनाएं और उसी को लें। और सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सो योर प्लेस और माइन।
3: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
2: कॉन्डम? लेकिन हम तो
3: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
2: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
4: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
6: प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।
7: आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं बारिश के गीत, और हम बात कर रहे हैं बारिश के मौसम में सावधानियां क्या रखनी चाहिए। श्रोताओं, मौसम ही इतना खूबसूरत होता है कि बाहर जाने का मन करता है, बारिश में भीगने का मन करता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने काम की जगह से निकल कर आते हैं तब भी हम बारिश में भीग जाते हैं। और बच्चों का तो पूछिए ही मत, बच्चों को तो बारिश में भीग भीग कर नहाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सावधानी ये है कि भीग जाने पर आप गीले कपड़ों को अधिक देर तक ना पहने, घर पहुंचते ही सूखे कपड़े पहन लें और शरीर को अच्छी तरीके से पोंछ लें। यदि लंबे समय तक बुखार है, खांसी है या अन्य कोई तकलीफ है तो स्वयं दवा लेने की बजाय चिकित्सक की सलाह जरूर लें। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं मगर काम की हैं, इन्हें अवश्य ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए।

श्रोताओं, बात सड़क सुरक्षा की कि बारिश के दिनों में सड़कों में जगह जगह फिसलन हो जाती है, जगह जगह पानी के गड्ढे भर जाते हैं, तो वाहन चलाते समय गति को नियंत्रित रखें, हेलमेट और सीट बेल्ट का विशेष उपयोग करें और जल भराव वाली सड़कों पर सावधानी से चलें। जहां पानी की गहराई का अंदाज़ा ना हो वहां भी जाने से बचें। कई बार ऐसा होता है कि मन करता है हम दूर दराज में पिकनिक मनाने चले जाएं, लेकिन वहां भी बहते हुए पानी से बचकर रहिए और ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें और सेल्फी लेने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों या बिजली के खंभों के पास भी खड़े ना हों। यदि संभव हो तो किसी भी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। घर की सुरक्षा

तो श्रोताओं, बारिश के इस मौसम का आनंद जिम्मेदारी के साथ लीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ महिमा को कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी इंदौर से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, और लीजिए अब पेश है लोक संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं हरि सिंह पटेल और साथियों के गाए मालवी लोकगीत।

आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत। आज के कलाकार हैं हरि सिंह पटेल और साथी। आइए इनसे सुनते हैं ये मालवी लोकगीत।

इस मालवी गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब पेश है सुगम संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं रक्षा श्रीवास्तव की गाई गजलें। सबसे पहले सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का ये कलाम।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुगम संगीत में आज आप सुन रहे हैं रक्षा श्रीवास्तव की गाई गजलें। आइए आप सुनते हैं मिर्जा गालिब का ये कलाम।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे रक्षा श्रीवास्तव की गाई गजलें। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुधाकर देवले का गायन। राग है मियाँ की तोड़ी। संगतकार तबले पर अश्रुत पांचाल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुधाकर देवले का गायन, राग था मियां की तोड़ी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मेरी वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: है जिले की चिट्ठी कुछ ही देर में।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी, आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। दमोह जिले के लिए बीता महीना विकास, संस्कृति, कृषि और जन स्वास्थ्य गतिविधियों पर आधारित समसामयिक रूप से समृद्ध रहा। पिछले दिनों हुई वर्षा के बाद गर्मी के तपन और तेज धूप से अब जिले वासियों को राहत मिली है। बारिश की बूंदों और रिमझिम बारिश ने नदियां, बांध, कुओं में न केवल जल भर दिया है बल्कि चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आने लगी है। पर्यटक प्रकृति की सुंदरता को देखने और लुत्फ उठाने सिंग्रामपुर, सिलापरी, मटककुंड, भदभदा और राजनगर जलाशय सहित जिले की प्रसिद्ध लघु वृहद सिंचाई परियोजनाओं की तरफ रुख कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ राजेश कपसे ने आगामी समय में जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। जिले में सोयाबीन की बोनी के लिए 10 से 12 जुलाई तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है।

0: जिन खेतों में पानी भर गया है वहां से जल निकासी कर दें ताकि खेत जल्दी तैयार हो सके। जिले में खरीफ सीजन की बोनी शुरू हो चुकी है। कृषि विभाग ने इस साल जिले में 3,950 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोनी की है जो पिछले वर्ष से लगभग 1,000 हेक्टेयर से अधिक है। इसमें धान 80,500 हेक्टेयर, मक्का 40,000 हेक्टेयर, उड़द 60,000 हेक्टेयर और सोयाबीन 1.25 लाख हेक्टेयर में बोई जानी है। खरीफ सीजन के बीच किसानों को राहत देते हुए जिले में 2600 मीट्रिक टन डीएपी की खेप पहुंच गई है। जिले में आई एफको की डीएपी खेप में से 2000 एमटी विपणन संघ, 1200 मीट्रिक टन सहकारी समितियां और 800 एमटी मार्कफेड गोदाम में भेजे गए हैं। वर्तमान में समितियों में 1200 मीट्रिक टन पहुंच चुका है। इसके अलावा 1000 मेट्रिक टन डीएपी मिलने की संभावना है। वहीं 100 एमटी डीएपी पहले से स्टॉक में है। कुल मिलाकर समितियों के पास करीब 2300 मेट्रिक टन डीएपी उपलब्ध होगा। वहीं जिले में करीब 2000 मेट्रिक टन यूरिया की भी स्टॉक मौजूद है। दमोह जिले में साइबर अपराधों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले दिनों सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद राहुल सिंह लोधी, विधायक दमोह जयंत कुमार मलैया ने भी भाग लिया। मैराथन के माध्यम से ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, साइबर फ्रॉड और सोशल मीडिया से जुड़े खतरों के प्रति आमजन को जागरूक करते हुए सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जिले के 256 श्रद्धालु पिछले दिनों हरिद्वार, ऋषिकेश की तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए। इस दौरान दमोह रेलवे स्टेशन पर प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास, धर्म राज्य मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, पशुपालन और डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी और दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया ने तीर्थयात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी श्रद्धालुओं को मंगलमय तथा सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं दी। कुछ दिनों पहले दमोह नगर के प्रसिद्ध बेलाताल जलाशय में जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 का समापन हुआ, जिसमें राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया और दमोह विधायक जयंत मलैया ने भाग लिया। इसी दौरान मंत्री ने जल संरक्षण और संवर्धन की आमजन को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जल संरक्षण जन जन का अभियान बन गया है। आपको बता दें कि सिंचाई परियोजनाओं से न केवल दमोह की तस्वीर बदली है बल्कि किसानों की आय भी बढ़ी है। प्रदेश भर में 3.62 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य पूरे हुए हैं। 10,514 करोड़ रुपए की लागत से जल संरचनाओं के संरक्षण को नई गति मिली है। दमोह नगर टर्फ हॉकी स्टेडियम में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल और विधायक जयंत मलैया सहित गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। राज्य मंत्री पटेल ने सभी नागरिकों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने की अपील की है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल से प्रसारित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के लाइव संबोधन को भी उपस्थित जनों द्वारा देखा और सुना गया। जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जिला अस्पताल में बच्चों को दवाई पिलाकर की। जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई गई। अभियान के दौरान लक्ष्य पूर्ति के लिए 1339 बूथ बनाए गए थे। दमोह जिले के हटा की धरती पर जन्मे तबला वादक रामेंद्र सिंह सोलंकी का चयन प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार के लिए किया गया है। रामेंद्र सिंह हटा स्थित डाइट में शिक्षक रहे अजय सिंह सोलंकी के सुपुत्र हैं। इन्होंने न केवल अपने देश में बल्कि विदेश में भी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और दक्षिण कोरिया में तबला वादन की प्रस्तुतियां दी हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया गया।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है सजीव फोन इन प्रोग्राम एमएच हॉटलाइन।
3: हेलो एमएच हॉटलाइन।

बारिश की रिमझिम फुहारें, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और ठंडी हवाओं का मन भावन स्पर्श। इसी के साथ आज का एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं महिमा। तो श्रोताओं, कैसे हैं आप? फोन करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए 227104। और देखते हैं पहला फोन कॉल किसका आया है।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार मैडम।
0: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम बालोदा लखा, तहसील बरनगर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से।
0: उज्जैन से बोल रहे हैं? नाम बताएं अपना।
1: बालोदा लखा, जिला उज्जैन से।
0: नाम बताइए अपना।
1: कन्हैयालाल प्रजापति।
0: कन्हैयालाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आज इस कार्यक्रम में?
1: दम दम भीगा भीगा मौसम, भीगा भीगा ये बरसात से
0: हो। मौसम तो वाकई भीगा भीगा है और चारों तरफ बहुत अच्छी बारिश हो रही है। इंदौर में भी काफी अच्छी बारिश है, उज्जैन में भी है। और बताएं बारिश में कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली छा गई।
0: हाँ जी, और क्या सावधानियां रखते हैं बारिश के दिनों में?
1: बारिश के दिनों में सावधानी रखने का पड़ती है, क्योंकि अच्छे मतलब कपड़े रेन कोट वगैरह पहन के जाइए और सर्दी जुकाम नहीं हो।
0: हाँ,
1: ये सावधानी रखना चाहिए।
0: हाँ, सर्दी बुखार का ज्यादा इस समय प्रभाव रहता है मौसम को देखते हुए। हाँ, तो थोड़ा सा सचेत रहें, समय समय पर अपने चिकित्सक को भी दिखाते रहें और अपना ख्याल विशेष तौर पर रखें बारिश के दिनों में। तो चलिए, आपको भिजवाते हैं आपकी पसंद का गीत उज्जैन में, डम डम डिगा डिगा। हाँ लीजिए।
1: एक तो राजू अग्रवाल
0: जी
1: और दुराना से हैदर था।
0: हाँ हाँ,
1: और गेंदालाल और भी सभी श्रोता।
0: चलिए, आपके सभी दोस्तों के लिए
1: बहुत धन्यवाद।
0: हाँ, ये वाला धन्यवाद आपको।

0: हेलो,
1: नमस्कार
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं महिमा जी विवेक व्यास बोल रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू से।
0: महू से व्यास जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है इस कार्यक्रम में। और बताएं कैसे हैं आप?

0: बढ़िया है।
1: हाँ,
0: आनंद ले रहे हैं,
1: आनंद ले रहे हैं बारिश का और बारिश के गीतों का। देखिए पहला गीत भी बहुत अच्छा था हमारे एक श्रोता का, भीगे भीगे मौसम में। हाँ, भीगा भीगा गीत हमने आप तक पहुंचाया। आज आप कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में?
0: आज मुझे आप सुनाते हैं, फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के और गाना है चारे चारे बदरा बलम की द्वार वो ऐसी बुद्धू की समझे ना प्यार, ये वाला।
1: वाह भाई, लता मंगेशकर की आवाज में बहुत प्यारा गीत चुना है आपने इस कार्यक्रम में।
0: जी जी जी, हाँ। अभी तो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी
1: आवाज है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। और अभी आप क्या कर रहे हैं इस वक्त?
0: बस महिमा जी, अब चाय पी के आप जाने की तैयारी है।
1: तैयारी है और गाने के साथ सुनने की तैयारी है गाने को भी।
0: तो आपको यहाँ रेडियो में सुनना है, फिर वहाँ जाके मोबाइल ऐप पर सुनेंगे।
1: अरे वाह, बहुत अच्छा, जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ।
0: मैं तो हमेशा जुड़ा रहता हूँ आपके साथ।
1: हाँ, तो हमें बेहद खुशी होती है ना। देखिए बहुत सारे हमारे पुराने श्रोता ऐसे हैं जो हमें लगातार फोन कॉल्स करते रहते हैं, हमारे कार्यक्रमों को पसंद करते हैं, तो हमारी भी जिज्ञासा रहती है कि हम उनसे कुछ और बातें पूछें। तो आप ये बताइए कि आपको गायकों में सबसे ज्यादा पसंद कौन है?
0: देखिए रफी साहब, लता जी है, आचार्य जी है और मुकेश जी है। देखिए ये जो मैंने जितने भी नाम लिए ना, किशोर कुमार, इनको यदि आप अलग कर दें तो फिर फिल्म में इंडस्ट्री में कोई ऐसा है ही नहीं, बिना इनके गाना मतलब अपन संगीत की कल्पना ही नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सारे हमारे संगीत साधक ऐसे हैं कि जिनको हम जब भी सुनते हैं एक अलग ही दुनिया में हम चले जाते हैं।
0: तो मोबाइल प्रोग्राम सुनता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, बहुत से कोशिश भी करते हैं फोन करने की।
1: अच्छा,
0: बेचारों का फोन नहीं लगता, वो मेरे से पूछते हैं तुम क्या करते हो, मैंने कहा कुछ नहीं, सच्ची लगते
1: हैं। हाँ, सच्चे मन से फोन लगाते हैं तो लग जाता है।
0: हाँ, मेरे साथ आपके प्रोग्राम सुनते हैं, कई तो अपनी फरमाइश भी मुझे बताते हैं।
1: हाँ हाँ, चलिए व्यास जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपको महू में भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन प्रोग्राम MH हॉटलाइन और लगातार श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं। देखते हैं अगला फोन कॉल किसका है। हेलो MH हॉटलाइन।
1: हाँ दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं
1: आप? केनी में श्रोता भागचंद साहू जी, राजेंद्र नगर गंजवासोदा जिला विदिशा।
0: विदिशा से भागचंद साहू जी बोल रहे हैं?
1: हाँ राजेंद्र नगर गंजवासोदा।
0: गंजवासोदा से, ओके ओके, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे हमारे इस कार्यक्रम में आज?
1: दीदी आज हमें सुनवा देना, फिल्म का नाम है ची।
0: थोड़ा सा रेडियो सेट से दूर होके बात करिए, ये आपकी आवाज बहुत गूंज रही है यहाँ पर।
1: हाँ,
0: थोड़ा सा दूर हो जाइए, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: फिल्म का नाम है जीत।
0: जीत फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल, धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी।
0: अच्छा, ये गीत क्यों पसंद करते हैं आप?
1: बिल्कुल दीदी जी, हमने पिक्चर देखी ना, बहुत अच्छी है।
0: अच्छा तो भाई और बताएं गंज बासोदा का क्या हाल है बारिश का?
1: हाँ बारिश तो दीदी डेली हो रही है, बरसात चल रही है, कहीं भी गिरा था पानी।
0: हाँ
1: आज खुला हुआ है अभी मौसम।
0: अच्छा अच्छा, हाँ तो अभी तो लगभग सभी जगह बहुत बारिश हो रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सभी क्षेत्रों में।
0: हाँ सभी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, तो आप
1: पानीपुरी सेंटर का ठेला लगाते हैं।
0: वाह, तो बारिश में तो बहुत ज्यादा आपके पास लोग आ रहे होंगे पानी पूरी के लिए।
1: बिल्कुल दीदी, बहुत बहुत लोग आते हैं,
0: क्योंकि यही तो मौसम है चाट पकोड़े खाने का।
1: बिल्कुल बिल्कुल, गरम गरम मंगोड़ी मिल जाए, भजिए मिल
0: जाए, भजिए मिल जाए और ऊपर से बूंदों की बारिश हो रही है लगातार, तो क्या मजा आ जाए।
1: बिल्कुल ऐसे में दीदी, अगर बरसात के मौसम में चाय और मिल जाए।
0: हाँ चाय, बिल्कुल यही मैं बोलने वाली थी कि पकौड़ों के साथ चाय बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: फिर तो हाँ बहुत मजा आ जाता है। तो चलिए चाय पीते हुए आप सुनिए गंज बासोदा में ये प्यारा सा गीत आपकी पसंद का।
1: नमस्ते,
0: नमस्ते।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम
1: जी। नमस्ते मैम, मेहमान जी को नमस्कार।
0: नमस्कार, बताइए कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं अरविंद अग्रवाल।
0: कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? श्रीनगर जिला महोबा।
0: महोबा से अरविंद जी, बहुत बहुत जी। स्वागत है इस कार्यक्रम में। बताएं आज का कौन सा गीत है आपकी पसंद का?
1: आज दग द फायर का सुना दीजिए आप।
0: दग द फायर फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगे?
1: दिल दीवाना ना जाने कब।
0: कुमार सानू की आवाज में
1: जी, दुएट आवाज में साथ।
0: हाँ कुमार, हेलो।
1: हाँ
0: कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में है ये गीत, है ना? तो आप तक पहुँचाएंगे महोबा में। बताइए क्या चल रहा है वहाँ पर?
1: बस दुकानदारी कर रहे हैं, बैठे हैं, पन्नी बेच रहे हैं।
0: अच्छा, बारिश हुई वहाँ पर?
1: हाँ थोड़ी बहुत तो हुई है, एक दो बार।
0: तो और बारिश में कैसा ख्याल रखते हैं अपना, अपने परिवार का आप?
1: हल्का खाना खाते हैं, रात ज्यादा रात को नहीं खाते। कीड़े मकोड़ों से बचाव करते हैं थोड़ी सी। मच्छर ज्यादा बढ़ जाएंगे अब।
0: हाँ बारिश में तो ये है कि छोटे छोटे कीट पतंगे बहुत निकलते हैं, बच्चों का विशेष ख्याल रखना चाहिए इस मौसम में। और खाने में क्या, खाने में थोड़ा सा बरतते हैं कि नहीं सावधानी?
1: जी
0: तो
1: खाना खाते हैं थोड़ा हल्का।
0: हाँ हल्का और सुपाच्य, क्योंकि पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है इस मौसम में। हाँ तो थोड़ा संभल कर खाना खाना चाहिए। तो चलिए अरविंद जी, बातचीत बहुत अच्छी लगी आपसे करके। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं सचिव फोन इन प्रोग्राम MH हॉटलाइन। लेते हैं अगला फोन कॉल। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ, मैं राजाराम नगर देवास से राजू अग्रवाल बोल रही हूँ।
0: देवास से राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बताएं आज की फरमाइश।
1: आज पसंद है दीदी ये महबूबा पिक्चर का गीत सुनवा दीजिए।
0: हाँ, थोड़ा सा आप अलग हट के बात करिए आपकी।
1: हाँ,
0: महबूबा फिल्म का गीत कौन सा वाला?
1: ये लता जी की आवाज में चलोरी। आज
0: अच्छा, लता जी की आवाज में चलोरी। चलोरी, ओके ओके। हाँ हाँ, बेहद खूबसूरत गीत है लता जी की आवाज में ये।
1: और श्रोताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि मौसम के बारे में ज्यादा फालतू बातें नहीं करें। और
0: देखिए, फालतू बातें तो नहीं होती हैं, मौसम से जुड़ी हुई बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो उनकी कुछ जिज्ञासा होती है या मौसम का आनंद लेते हैं तो वो बात करते हैं हमसे।
1: इसका बार बार लगाना है, रोज फोन जिससे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि बार बार रोज फोन में लगाएं जिससे दूसरों को मौका
0: मिले। हाँ, सभी को मौका मिलता है। हम भी ऐसे श्रोताओं को का फोन कॉल कम ही उठाते हैं जो हमें लगातार फोन कॉल करते हैं। तो हम चाहते हैं खुद अपनी तरफ से
1: फोन।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के फोन कॉल हम अलग अलग जगह से लें और उन्हें शामिल करें। तो चलिए राजू जी, आपको आपकी पसंद का गीत भेज रहे हैं देवास में, सुनिए।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन। हेलो
1: हेलो, नमस्कार दीदी जान।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं बता दूं कि हिंदुस्तानी कलाकार ग्राम कल्पा जिला सतना से चार मोहम्मद खान, ईडन गार्डन, अशोक वाटिका, मजनू दीवाना।
0: ओहो हो, मजनू दीवाना से हम पहचान गए आपको।
1: बहुत लंबा पता है।
0: हाँ, इतना लंबा आपका नाम है और आप अपनी जगह के नाम के साथ पूरा अपना परिचय देते हैं। चलिए, बहुत खूब बताएं चांद मोहम्मद साहब, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: अब थोड़ी सी और बात हो जाए, गाना भले कम बजा देना।
0: अच्छा अच्छा, तो पहले गाना तो बताइए, आप कौन सा गीत सुनेंगे?
1: गाना मन की आंखें।
0: मन की आंखें फिल्म का गीत सुनेंगे।
1: धर्मेंद्र की फिल्म है, रफी साहब की आवाज में है और गीत के बोल है, दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह वो कहीं पर नहीं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा गीत लिखा था ये साहिर लुधियानवी ने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया ये गीत है और आवाज मोहम्मद रफी साहब की है।
1: अरे दीदी यार, जब ये गीत बजता है समझ लो इसको एकांत में कहीं बाग बगीचे में सुनो तो मजा आ जाती है, बाहर आ जाती है।
0: बिल्कुल, कुछ गीत हमारे ऐसे हैं पुराने गीत जिनको आप कभी भी सुनेंगे तो बड़ा सुकून देते हैं।
1: और हमें तो दीदी जान सभी कोई गीतों में कंपटीशन करे तो हार ही के जाएगा, जीत नहीं सकता, ये भाभी जान आ गए बिल्कुल।
0: अच्छा अच्छा, कुछ पुराने गायकों के नाम लीजिए आप पहले।
1: अरे रफी साहब हो गए, मुकेश हो गए, किशोर, लता जी, आशा जी और हेम लता, जसपाल सिंह हो गए, अब क्या मैं किसके किसके नाम बता दूं। और ये भी बता दूं कि कैसे गायक ने कब से शुरुआत की थी, और ये बता दूं मोहम्मद अजीज ने भी गजब के गाने गाए थे।
0: जी तो चलिए, बहुत अच्छे आपकी नॉलेज है, कई सारे आपने गायकों के नाम लिए और इतना बेहद ही खूबसूरत गीत भी आपने चुना है आज इस कार्यक्रम में सुनने के लिए। तो
1: भाभी जान से थोड़ी सी बात कर लूं?
0: जी जी, जल्दी करवाइए। हाँ हाँ,
2: बुलाइए। दीदी जान,
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: अरे बहुत अच्छे दीदी जान, और आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया।
2: आपसे दीदी जान बात हो गई थी, बहुत मोटे हो गए।
0: हाँ, आपका फोन कॉल लग गया और आपकी इतनी अच्छी बातें होती हैं कि हमारे श्रोता सभी सुन के गदगद हो रहे होंगे। और बताएं क्या शौक रखती हैं आप?
1: ये दाल बना रही थी।

0: हाँ हाँ
1: पेड़ में चढ़ गया तो एक दिन तो कुत्ता रख दिया तो हमने पेड़ में चढ़ गए।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा।
1: था
0: तो आप दोनों मिलके हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं MH हॉटलाइन जिसका नाम है। चलिए आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया फोन करने के लिए।

0: और अब देखते हैं कार्यक्रम में अगला फोन कॉल किस श्रोता का है। हेलो, एमएच हॉटलाइन पे नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: अनोखे सिंह।
0: अनोखे सिंह जी कहाँ से?
1: बाग जिला धार।
0: धार से बोल रहे हैं?
1: हाँ हाँ।
0: कब से सुन रहे हैं आप हमारा कार्यक्रम?
1: अब इसका तो हम क्या बताएंगे।
0: अभी एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम कब से लगाया, कितनी देर पहले लगाया?
1: हम तो 10 बजे से सुन रहे हैं।
0: अच्छा, 10 बजे से सुन रहे हैं। चलिए अपनी पसंद बताइए, कौन सी पसंद है आज आपकी?
1: अपनी पसंद है क्रांति।
0: क्रांति फिल्म का?
1: हाँ।
0: बोल बताएं गाने के?
1: क्रांति।
0: क्रांति, अच्छा टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते हैं आप?
1: हाँ हाँ
0: जी।
1: हाँ।
0: तो अनोखे सिंह जी क्या करते हैं आप धार में?
1: करता था, अभी वर्तमान में तो कुछ नहीं करता हूँ। तो
0: अच्छा, तो अभी फ्री हैं, रिटायरमेंट वाली लाइफ जी रहे हैं क्या?
1: अब हम तो मजदूर लोग हैं, रिटायरमेंट तो हो ही नहीं सकते।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं इंदौर आकाशवाणी के?
1: हमको सुबह बच्चों का अच्छा कार्यक्रम लगता है, भजन का जो 9 बजे रहता है, 1 बजे रहता है, शाम को रहता है। युगवाणी बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा,

0: और खेती गृहस्थी लगता है, सुबह वो भजन के अच्छे लगते हैं।
1: तो बेहद खुशी हुई, आप काफी सारे कार्यक्रम हमारे यहाँ से सुनते हैं, आप युवाणी को पसंद करते हैं, खेती गृहस्थी कार्यक्रम को पसंद करते हैं, फरमाइशी कार्यक्रमों को भी पसंद करते हैं।
0: हाँ। सर जी जो फरमाइश करते हैं ना,
1: हाँ हाँ,
0: ये बहुत मेहनत करते हैं सर जी, लिखते लेटर आपको डालते, हम तो क्या आगे फोन उठा के लगा दिया सर जी, हमारी इसमें इतनी कोई मेहनत नहीं है।
1: नहीं नहीं सही बात है, देखिए हमारे पास बहुत सारे श्रोताओं के अलग अलग कोने से, देश के हर कोने से हमारे पास पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन सभी श्रोताओं को खुश रखें और उनको कार्यक्रमों में शामिल करें, क्योंकि श्रोता ही हैं जो हमसे जुड़ाव रखते हैं, उन्हीं की वजह से हमारा आकाशवाणी है परिवार, तो हमें बेहद खुशी होती।
0: परिवार कहते हो तो हम क्या सदस्य नहीं बन सकते?
1: बिल्कुल सदस्य हैं आप, ये जो हमारे जितने भी श्रोता हैं।
0: डांट फटकार लगाते हो कि 3 महीने बाद?
1: नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखिए सदस्यों में भी आपसी प्रेम होना चाहिए और उनकी भी इतनी सोच होनी चाहिए कि हमारे सभी श्रोताओं का फोन कॉल लगे, है ना?
0: हमारी आवाज सुनते ही फोन डिस्कनेक्ट कर।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है,
0: होता है
1: तकनीकी खराबी के कारण, शायद ऐसा कभी हो सकता है
0: सर जी, ये आप अपना पक्ष रख देते हो कि आवाज नहीं आ रही तकनीकी खराबी, ये तो फॉर्मेलिटी निभाते सर, यहाँ पे के अनाउंसर आते हैं आप अकेले?
1: देखिए अनोखे सिंह जी बात ऐसी है कि बहुत सारे श्रोता हमारे अभी भी लाइन पे, आप देखिए लगातार हमारे पास फोन कॉल आ रहे हैं, तो अभी एक फोन कॉल उठाया कि दूसरा अपनी जगह चली जाए, तो हमको भी एक एक करके हम किसी का फोन कॉल ले सकते हैं ना, और फिर ऐसा होता है कि जिसका आज लगा है, हम यही गुजारिश करते हैं कि भाई नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोताओं की शिकायत ही ये होती है। नहीं नहीं नहीं नहीं आप बिल्कुल नाराज मत होइए, सबको हम मौका देते हैं इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं, और फोन करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। सुनिए अपनी पसंद का गीत।

0: आकाशवाणी इंदौर से इस वक्त आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन प्रोग्राम एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में अगले श्रोता कौन है देखते हैं। हेलो
1: हेलो गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं श्रीपाल गोयल दिल्ली से।
0: श्रीपाल गोयल दिल्ली से बोल रहे हैं जी। हाँ, स्वागत है इस कार्यक्रम में, बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: मैम फिल्म चलिया से है, एक राहों में खड़े हैं दिल साथ।
0: फिर से बोलिए एक बार, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, बताइए।
1: मैम फिल्म चलिया से है।
0: चलिया फिल्म का गीत
1: जी।
0: तेरी राहों में
1: खड़े दिल सांते।
0: अच्छा, हाँ लता जी की आवाज का ये बेहद खूबसूरत गीत है। बताइए दिल्ली का मौसम कैसा है अभी वहाँ?
1: मैम कल तो सारे बारिश हो रही थी, आज धूप निकली है तो उमस हो रही है।
0: उमस हो रही है, यही तो बस मौसम की खराबी है कि थोड़ी सी बारिश होती है और फिर उमस बढ़ जाती है धूप निकलने के बाद। हाँ, तेज गर्मी का सामना करना पड़ता है। बाकी कई इलाकों में तो बेहद, हाँ कई इलाकों में तो बहुत अच्छी बारिश हुई है। और यहाँ इंदौर का हाल भी बहुत बढ़िया है, खूब ठंडा हो रहा है इंदौर, बारिश हो रही है लगातार। चलिए, आपकी दिल्ली में भी बहुत जोरदार बारिश हो, आप सभी ठंड का महसूस करें, ठंड को खुशनुमा माहौल बने। इसी के साथ सुनवाते हैं कार्यक्रम में आपकी पसंद का ये गीत।

0: एमएच कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में लेते हैं अगला फोन कॉल। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: हाँ, मैं रानू बात कर रही हूँ देवास से।
0: रानू जी नमस्कार, बताइए
1: नमस्कार।
0: कौन सा गीत
1: मुझे
0: सुनेंगी आज
1: गाना
0: हमारे?
1: सुनना है, मूवी का नाम है कौन है जो सपनों में आया,
0: कौन
1: और
0: है जो सपनों में आया?
1: इसी का टाइटल सॉन्ग सुनना है। मेरी बहन से बात कर लीजिए। और
0: अच्छा, टाइटल सॉन्ग सुनेंगी इसका।
2: हेलो जी,
0: हेलो,
1: कैसे
0: नमस्कार, कौन बोल रही
1: मैं
0: हैं? अपना नाम बताएं।
2: नंदिनी तिवारी बोल रही हूँ।
0: नंदिनी तिवारी,

0: ये था MH Hotline प्रोग्राम का आखिरी गीत। आज जिन श्रोताओं ने हमें फ़ोन किए उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से फ़ोन करते रहिए हमें। प्रोग्राम का नाम है MH Hotline। इस प्रोग्राम से महिमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: हेलो MH Hotline।

0: आकाशवाणी इंदौर से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने। आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया है श्वेता सिंगर ने।
2: चारों तरफ छा गई है काली घटाएं, बरखा की बूंद बरस रही है। ऐसा लगता है बड़ी दूर से हमसे मिलने आई हैं ये। हम भीग रहे हैं और चारों तरफ हमारी वसुंधरा भी भीग रही है। सब कुछ हरा और संपूर्ण सा लग रहा है और इस मौसम का नाम ही तो है बरखा बहार। तो चलिए इस मौसम में हम भी स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में, जिसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 2660902 पर। बाहर के श्रोता साथी 0755 लगाकर हमसे बात कर सकते हैं। तो इंतजार है हमें आपके फोन। हेलो।
3: हेलो
2: जी, नमस्कार।
3: नमस्कार भाई,
2: आपका नाम बताएं।
3: मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ, ग्राम सनोतिया गुना।
2: मांगीलाल चंदेल जी, तो स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में, है ना। आप अपने एक बार फिर से जगह का नाम बताएं।
3: बहन जी, आपका शुभ नाम।
2: जी, मेरा नाम श्वेता है, मैं आपकी रेडियो मित्र हूँ। आपकी जगह का नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप।
3: ग्राम सनोतिया
2: जी,
3: जिला गुना।
2: जी जी,
3: मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ।
2: जी जी जी, तो बताएं क्या हालचाल है आपके, मतलब
3: आपकी दुआ और भगवान की कृपा से हालचाल बढ़िया है
2: जी।
3: और मैं इस वर्ष से यही कामना करता हूँ कि आप

0: बढ़िया हूँ
1: जी बिल्कुल। तो मौसम का क्या हाल चाल है?
0: मौसम बढ़िया है, रोज बारिश हो रही है वैसे।
1: अच्छा लग रहा है ना?
0: अच्छा लग रहा, बिल्कुल सुहावना ठंडा मौसम है।
1: जी जी जी,
0: और बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ये मौसम बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है बारिश के मौसम।
1: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है ना।
0: तो आसमान में काले काले बादल होते हैं, ठंडी फुहार देते हैं, हवा चलती है ठंडी ठंडी, तो बहुत बढ़िया सुहावना लगता है।
1: बिल्कुल है ना। और इस सुहाने मौसम में हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आज आपका फोन लगा है, फोन करे गीत सुने में, है ना? तो कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: फिल्म का नाम रहेगा प्यासा सावन।
1: जी प्यासा सावन जी।
0: हाँ। गाने के बोल रहेंगे, मेघ हरे मेघा मत परदेश जा रहे।
1: हाँ बिल्कुल, परदेश हम यही चाहेंगे कि वो ना जाए, खूब अच्छी बारिश हो, है ना? बिल्कुल। तो आपने फोन किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार, मित्रों को याद कर सकते हैं?
1: बिल्कुल, नाम बताएं।
0: नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं,
1: जी
0: गुलशन पाल जी हैं मनकारी से,
1: जी
0: और दिनकर सिंह जी हैं चित्रकूट राम से, बेटा सिंह यादव जी हैं,
1: जी
0: दास बाबा जी हैं,
1: जी
0: सिंह राजपूत जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं,
1: जी
0: इन सभी को बहन जी ये गाना दे दीजिए।
1: बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका। हाँ जी
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: मैं ग्राम गौर जामार जिला सागर मध्य प्रदेश से कटारे बात कर रहा हूँ।
0: जी तो बताएं कैसे हैं आप?
1: जी मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी अच्छी हूँ। आपका फोन लगा है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: आज गाने तो मुझे दो तीन याद आ रहा है, लेकिन फिल्म है जंगबाज
0: जी,
1: और गाना इसी में गंगा जैसा मन तेरा, और मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाया है। आप सविता जी बोल रही हैं?
0: जी बिल्कुल।
1: आवाज तो लगी रही थी
0: जी। और एक और पिक्चर का नाम बता दीजिए, एक और फिल्म आपकी जो पसंद के गीत है एक और बता दीजिए।
1: तो दूसरी मूवी रहेगी भ्रष्टाचार, और इसी में एक गाना है सुरेश वाटिकर और अनुराधा पोटवाल ने गाया है
0: जी,
1: तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करती।
0: बिल्कुल। तो क्या करते हैं आप बताएं?
1: वैसे हम किसान हैं, खेती किसानी का काम है, बाकी फिर घर में बहुत सारे काम होते हैं वो करते हैं, और इसके अलावा रेडियो सुनते हैं, और अलग अलग शौक है उनको भी पूरा करते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, आप तो सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं खेती किसानी, है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: हाँ, और इसके अलावा और कौन कौन से शौक हैं आपके रेडियो सुनने के अलावा?
1: तो रेडियो के अलावा ऐसा कोई चीज ही नहीं जिसमें मेरा शौक ना हो। स्पोर्ट में मेरा काफी इंटरेस्ट है, क्रिकेट वगैरह है।
0: अच्छा।
1: और इसके अलावा शेरो शायरी का शौक है, गाना सुनने।
0: अच्छा,
1: का
0: अच्छा,
1: बहुत
0: अच्छा,
1: शौक
0: अच्छा।
1: है।
0: जी जी जी जी
1: शेरो शायरी करता हूँ, दूसरों को फॉलो करता हूँ, इसके अलावा बहुत सारे शौक है मेरे।
0: बहुत अच्छी बात है, है ना? देखिए आपने फोन किया, हमसे अच्छी बातें शेयर करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते।
0: आपका नाम बताएं।
1: मैं कृष्ण पाल परमार, 6 महीना सोनकी तहसील देवा जिले।
0: हाँ जी, नाम बताएं एक बार फिर से।
1: कृष्ण पाल परमार, 6 महीना, गांव का नाम।
0: अच्छा जी, तो बताएं कैसे हैं आप।
1: बढ़िया है दीदी,
0: हाँ, आपका फोन लगा
1: गाना
0: है।
1: सुनना था।
0: हाँ जी बिल्कुल, तो क्या हालचाल है आपके यहाँ, मौसम का।
1: बस बढ़िया, पानी गिर गया था अभी 2 दिन से, बारिश थोड़ी
0: अच्छा
1: रुकी है।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: मौसम अच्छा हो गया।
1: मौसम अच्छा है मैम, बिल्कुल। पर उमस तो है अभी, क्या पानी
0: हाँ
1: गिरा, पानी पर्याप्त तो हुआ नहीं है, तो उमस तो है।
0: चलिए,
1: गाना
0: कौन सी फिल्म।
1: सुनना था,
0: हाँ बताएं, कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
1: सेनाई पिक्चर का था मैम,
0: हाँ जी,
1: सेनाई,
0: शहनाई जी।
1: ना झटको जुल्फ से पानी, ये
0: हाँ
1: मोती फूट जाएंगे।
0: बिल्कुल, और एक और मूवी बता दीजिए आप जिनका गीत सुनना चाहेंगे।
1: एक सुना दीजिए, सिंदूर पिक्चर का, पतझड़ सावन बसंत बहार,
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो
1: दोनों
0: देखिए।
1: में
0: हाँ
1: जो मिल जाए, ये
0: हाँ
1: दादाजी का
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, हाँ आपने
1: दोनों गाने पुराने हैं, अच्छे गाने हैं।
0: बहुत अच्छे गाने हैं, तो आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: ठीक है दीदी, नमस्ते।

0: जी नमस्कार।
1: हेलो
0: हेलो। हाँ
1: जी,
0: जी
1: नमस्ते।
0: नमस्ते। बताएं, नाम बताएं आपका।
1: रानू गुप्ता।
0: हाँ जी रानू गुप्ता, स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में, है ना।
1: जी,
0: कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
1: मूवी का नाम है चोरी चोरी चुपके चुपके, और उसी में एक सॉन्ग है, देखने वालों ने क्या क्या देखा नहीं होगा।
0: बिल्कुल। चुपके चुपके है फिल्म का नाम, चोरी
1: चोरी
0: चोरी।
1: चोरी चुपके चुपके।
0: जी
1: ठीक
0: चलिए, आपने फोन किया, हमसे बातें करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: है, धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते मैम।
0: हाँ
1: मैं
0: जी
1: वंदना उपाध्याय बोल रही हूँ, बरेला से। मैं
0: हाँ जी, नाम बताएं।
1: बरेला से बोल रही हूँ, जबलपुर बरेला से वंदना उपाध्याय।
0: वंदना उपाध्याय जी। जी
1: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है, आप सुनाइए, आप कैसी हैं?
0: मैं भी
1: बहुत देरी
0: अच्छी।
1: ट्राई कर रही हूँ, आप लगा मेरा फोन
0: अच्छा, तो क्या हाल चाल है
1: आपका
0: आपके?
1: फोन
0: क्या हाल चाल है?
1: है, बढ़िया है। आप
0: बढ़िया।
1: दीदी कौन बोल रहे हैं?
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
1: अच्छा, हाँ बहुत अच्छा बोलती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलती है ना।
0: आप क्या करती
1: मैं
0: हैं? क्या क्या करती हैं आप?
1: वो सर्विस करती हूँ बैंक में,
0: अच्छा, जी
1: अभी
0: सर्विस।
1: कॉलकीपर है।
0: अच्छा
1: महाराष्ट्र में है मेरा जॉब, तो मैं
0: अच्छा
1: जबलपुर में हूँ, तो अभी फिलहाल नहीं जा रही हूँ।
0: हाँ,
1: हाँ, मेरी मम्मी नहीं रही थी तब से, मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो
0: अच्छा,
1: हाँ इस वजह से।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ,
0: तो चलिए, ये बात भी बहुत अच्छी है कि आप नौकरी भी करती हैं, साथ साथ रेडियो भी
1: मेरे
0: सुनती हैं।
1: मेरे हस्बैंड भी करते हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं
0: अच्छा,
1: हाई स्कूल में,
0: जी
1: और मैं जब इसमें बैंक में हूँ।
0: बिल्कुल। तो
1: हाँ
0: कौन सी
1: हाँ
0: फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी?
1: अब मेरे फोन लग गया, मेरे को खुशी का ठिकाना नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है। चलिए, बारिश के ऊपर कोई सा भी गाना, बादल यूं
0: जी
1: गरजता
0: जी ये
1: है।
0: बेताब फिल्म का गाना है ना?
1: जी जी जी
0: बादल यूं गरजता,
1: हाँ,
0: बहुत प्यारा सा
1: आप
0: गाना
1: इतने
0: है।
1: अच्छे से बोलती हूँ आपका, है
0: नहीं
1: ना।
0: नहीं आप बहुत
1: और
0: अच्छा
1: आपसे ही
0: बोलते
1: पूछ
0: हैं।
1: रही हूँ, इसमें क्या है दीदी,
0: हाँ
1: आवाज बहुत दबी आती है, लेकिन रेडियो में जो सुनते हैं ना,
0: जी
1: तो
0: जी
1: बहुत क्लियर आती है आवाज।
0: जी, और
1: हाँ
0: आपकी भी आवाज हमें बहुत अच्छी लग रही है। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा
1: मुझे
0: लगा।
1: भी बहुत अच्छा लगा, मुझे सब लोगों से बात
0: जी जी
1: करके।
0: जी जी बिल्कुल, है ना? तो
1: जी
0: चलिए,
1: जी
0: आपसे
1: जी
0: बात
1: जी
0: करके हमें अच्छा लगा। सुनते हैं
1: हाँ
0: आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी न,
1: आकाशवाणी।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
0: आपका नाम बताएं
1: मेरा नाम सागर सिंह है।
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन सी जगह से?
1: बसई नवाब धौलपुर,
0: जबलपुर से जी। तो
1: बसई नवाब धौलपुर।
0: जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम। फोन करें गीत सुने में। कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: दामने मिल जाएगी।
0: दामिनी जी।
1: हाँ, दामिनी सावन पे जो

0: उन्होंने मुझे को जुलाया, मैं पर
1: अच्छा
0: किसी तरह वापस से आया।
1: अच्छा अच्छा ये कौन? अच्छा ठीक है, क्या करते
0: दामिनी
1: हैं
0: फिल्म
1: आप?
0: का है,
1: हाँ जी
0: दामिनी पिक्चर का है,
1: जी जी जी बिल्कुल, क्या करते हैं आप?
0: मैं राजमिस्त्री हूँ। बिल्कुल
1: अच्छा, काम करके साथ साथ आप रेडियो भी सुनते हैं
0: सुनते हैं।
1: जी, और हमें खुशी इस बात की कि हमारे प्रोग्राम आप सुनते हैं, है ना? कार्यक्रम में फोन
0: मैं
1: किया।
0: 90 से सुन रहा हूँ
1: जी जी
0: प्रोग्राम,
1: जी
0: पुराना
1: जी जी जी बिल्कुल, इसी बात की तो हमें खुशी।
0: पुराना
1: हाँ
0: श्रोता हूँ मैं बहुत।
1: जी, तो कार्यक्रम में आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
1: हसीन मुलाकात हो और रिमझिम बरसात हो
0: जी,
1: और फिर उसमें कहीं मध्य प्रदेश आकाशवाणी में बात हो,
0: बिल्कुल
1: सौगात ही सौगात हो, सौगात ही सौगात हो। नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार, हम जानते हैं, शायद आपका नाम बताएं।
1: जी बता दीजिए बहन जी।
0: मैं कुछ भूल जा रही हूँ, माफी चाहूंगी, आपका नाम बताएं।
1: जी जी जी बिल्कुल
0: जी, नाम बताएं आपका।
1: जी बिल्कुल बताइए,
0: आप बताएं, मैं भूल जा रही हूँ, है ना।
1: अच्छा मैं बता रहा हूँ, मैं चित्रकूट दिनकर सिंह रूबरू हो रहा हूँ।
0: जी जी जी,
1: भूम से आपको सत सत बार राम राम पहुँचा रहा हूँ।
0: जी नमस्कार, तो कैसे हैं आप?
1: जी जी जी, आपका भी नाम जानना चाहूंगा, काफी दिनों के बाद मेरा फोन लगा है।
0: मैं आपकी रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ, है ना। कैसे हैं आप?
1: बहुत मस्त है, और रिमझिम बरसात हो रही, उसी में तो मैं जो है ये शायरी कर रहा हूँ। तीन लोग बैठे, राजू और बब्बू वर्मा
0: जी जी,
1: और खेत में जंगल में बैठे, नर्सरी की धान की नर्सरी तैयार हो रही है, और बढ़िया।
0: अच्छा,
1: बरसात कर रही है।
0: अच्छा हाँ हाँ हाँ बिल्कुल, तो अभी धान की मतलब चावल की मौसम के लिए चावल बुआई कर रहे हैं आप?
1: जी जी जी जी, धान की जो है बेल तैयार हो रही है, खेत।
0: अच्छा,
1: तैयारी चल रही है, और
0: हाँ,
1: 4 से 6 दिन के बाद जो है बेल लगने लगेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये मौसम बहुत उपयुक्त है, और हम तो यही कामना करेंगे कि भरपूर बारिश हो, है ना, फसल के लिए।
1: जी जी जी, और आपसे ये भी बता दूं कि आपसे पहली, मेरे अंदाजे पहली बार बात हो रही है।
0: जी नहीं, हमने आपसे बहुत सारी बातें करी, बस मैं आपका नाम भूल गई थी, है ना। जी तो कौन,
1: कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहती थी कि मैं आपका नाम जानती हूँ, बताऊँ क्या, तो आपको भूल गया।
0: जी तो चलिए, जी
1: और हम, हाँ, और रक्षा जी रही, कविता
0: जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: मुझे फिल्म जो है सनम बेवफा का गीत सुना दीजिए।
0: जी,
1: चूड़ी मजा न देगी तेरे बगैर, साजन सावन मजा न देगा।
0: बिल्कुल, तो देखिए आपने फोन किया हमें।
1: प्रेम दासवाला जी है, फूलचंद है, और
0: जी जी
1: पेटक सिंह जी है,
0: बिल्कुल
1: अमित तिवारी जी है, और पूजा तिवारी, इनके साथ ये गीत सुनूंगा।
0: अच्छा लगा हमें जानकर, आपके सभी मित्र ये गीत सुनना चाहते हैं, आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धैर्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये देश को सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। उन्होंने एक पोस्ट में संस्कृत का प्रेरक कथन साझा करते हुए कहा कि धैर्य किसी राष्ट्र को निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी व्यापारिक नेताओं की सभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक पोस्ट में कहा है कि स्वच्छ मध्य प्रदेश हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने और स्वच्छ, सुंदर तथा स्वस्थ मध्य प्रदेश के निर्माण में सहभागी बनने की अपील की। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी कर श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी अभिनव आर्य ने गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न शिक्षकों पर कार्रवाई कर तत्काल प्रभाव से 47 शिक्षकों को उनकी मूल पदस्थापना वाली शाखाओं से कार्यमुक्त कर दिया है। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के बड़वानी, धार, गुना, सागर, विदिशा, रायसेन सहित कुछ जिलों में अति भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये चिट्ठी आई है जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा बेलई जिला सागर से लक्ष्मण रैकवार की, साथ ही श्रीमती विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरथ रैकवार, हल्ले लल्लू, ऋषि रैकवार, कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली की, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनके परिवार के सदस्य, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक की यह चिट्ठी है। दीवाना फिल्म का गीत सुनना पसंद किया है, कुमार सानू का गाया हुआ। नदीम श्रवण ने धुन बनाई है, समीर ने गीत लिखा है।

कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाए उसके पहले एक सूचना आपको दे देते हैं। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत

जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक या कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानूनन व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा भी है कि वे केवल प्रामाणिक एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। सूचना समाप्त हुई। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में ये अगला पत्र हमें मिला है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंद कुमार वर्मा का। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित पसंद और भेजते हैं। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की। सुनना चाहा है अभिमान फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मनहर उदास का गाया। मजरू के बोल हैं, एस टी बर्मन की धुन है।

अगले गीत के लिए फरमाइश आई है बनिया पारा छत्तीसगढ़ धमतरी से रामचंद्र माखीजा का, फिर श्रीमती सविता बेबी स्वाति माखीजा, पूजा छुटकी शरद और पूरा माखीजा परिवार। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुजतबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। चंबल की कसम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया। खयाम के संगीत निर्देशन में साहिल रुध्यानवी ने लिखा है।

और कार्यक्रम में ये अगला गीत नसीब फिल्म का कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर और साथियों ने इसे गाए हैं। आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन, सुनना पसंद किया है। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जुंदले और आरती जुंदले। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परू मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर। मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद आरिश अरसलान और यूनुस तड़वी। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना मुबारक, परवेज बिटिया, रोजमीन, तैमूर और समस्त तड़वी परिवार। महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारणी, सूरज ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर।

0: फिल्म नसीब के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, अब समय है एक अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा,
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: बदलो बदलो, आदत बदलो।
6: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
5: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
8: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
9: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
10: क्या
9: अब आकाशवाणी

0: सुंदर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: और सुनेंगे कैसे?
0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।
1: गोपाल तिवारी बड़े शरीफ इंसान हैं, मगर इतने भी नहीं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ये कुछ ना समझते हो। अब देखिए, पता नहीं इन्होंने कहां क्या देख लिया, सीधे चले आए कुछ सुनाने।
2: फैक्ट्री से एक सज्जन जब चले, वो बड़े मूडी आदमी थे साहब, फैक्ट्री से जैसे ही चले तो उन्होंने देखा कि एक दूध वाला भी चला जा रहा है, वो भी साइकिल में और वो भी साइकिल में। साइकिल में ये चले जा रहे हैं, दूध वाले की कुछ पता नहीं जल्दी जाना होगा या जो भी, तो उसने दूध वाले ने थोड़ी साइकिल की स्पीड बढ़ाई और इनसे आगे निकला। जैसे ही इनसे आगे, अच्छा हमसे आगे, मेरी साइकिल की स्पीड बढ़ाई, हम आगे, कभी वो आगे, कभी ये आगे, कभी वो आगे। फैक्ट्री से उन्हें मान लीजिए रांझी जाना था, और साहब ये आगे पीछे आगे पीछे। फिर हमने पूछा कि ये हुआ क्या आगे पीछे आगे पीछे, कह लगे नहीं जाना तो रांझी था, लेकिन गुरु कभी वो आगे कभी हम पीछे, मेडिकल में जाके हराया उसको। ऐसा आजकल देखा जा रहा है कि आजकल मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले तो बहुत कम थे, और इस समय मीडिया क्रांति है। कोई अगर न्यूज दिन भर की दिखा रहा है तो कोई दिन में 6 बार दिखा रहा है, कोई दिन में 15 बार दिखा रहा है, कोई 24 घंटे न्यूज दिखा रहा है, पता नहीं कहीं 48 घंटे ना दिखाने लगे, कोई तुरंत की, कोई अब्बी की न्यूज दिखा रहा है। ऐसी न्यूज में एक न्यूज एक ने सुनी

और क्या कहा दूसरे दोस्त से, दूसरे दोस्त ने क्या कहा, आए बोले वो देखी, बोले कौन सी, बोले न्यूज वो अभी अभी वाली, बोले नहीं यार नहीं देखी, अरे उसमें दिखाया गुरु बहुत डेंजर वाला दिखाया, क्या दिखाया गया, उसमें दिखाया कि एक आदमी अपने शहर का वो गुरु 72 घंटे माने अफ्रीका के और इंडिया के और बने विदेश के और एक से एक खतरनाक सांपों के बीच में, अच्छा कहने कितने घंटे, 72 घंटे उस्ताद, मतलब अपन एक घंटे के सामने नहीं रह सकते सांप के सामने, सांप कितना डर लगता है, लेकिन वो 72 घंटे सांपों के बीच में, अरे कहने कोई बड़ा काम नहीं, अरे अरे तुम 72 घंटे तुम बोल रहे बड़ा काम नहीं, बोले भैया ऐसा है 72 घंटे वो सांपों के बीच रहा ना, 2 घंटे हमारी पत्नी के बीच रह के दिखाए। स्टेज पर चैनल्स में मीडिया में सभी तरफ हम लोगों को प्रोग्राम करने होते हैं, खासकर लाइव प्रोग्राम में जब हम लोग शहर से बाहर जाते हैं, तो एक दूर दराज के गांव में भी मैं गया और वहां पर चूंकि हम लोग प्रोग्राम ऑर्केस्ट्रा का था, हम लोग गए हुए थे, पूरी टीम हमारे साथ थी, लेकिन वहां के जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा था कि भाई हमारे जो आर्टिस्ट हैं लोकल आर्टिस्ट उनको भी आपको मौका देना पड़ेगा, हमने कहा अवश्य देंगे, तो ब्रेक के दौरान उनको भी मौका मिला और उन्होंने भी कुछ अपने गीत प्रेजेंट किए, कुछ अपने आइटम्स प्रेजेंट किए और उसका एक अलग मजा है। देखे साहब वो एक ऑब्जर्वेशन, हम लोगों की ऑर्केस्ट्रा चल रही थी और वहां से अनाउंस हुआ कि और इसी के साथ ऑर्केस्ट्रा धमाल झमाल कमाल आपसे थोड़ी देर के लिए विराम लेती है, तब तक आपके लोकल आर्टिस्ट होंगे, आपके अपने आर्टिस्ट होंगे, आप खुद होंगे, आइए सुनते हैं आपके आर्टिस्टों को और आपके अपनों को। बहुत बढ़िया बात है, धन्यवाद, बहुत अच्छा जबलपुर से आए आप लोगों ने सुनाया, बड़ा हम लोग का दिल जो है गदगद हो गया, और अब इसके बाद अनाउंसमेंट हम ही करेंगे और हम ही सुनाएंगे और हमारे बीच के लोग भी सुनाएंगे। हाँ सुनाइए साहब। उनने अनाउंसमेंट किया और म्यूजिशियन को रोक लिया कि भाई आप बजाएंगे, यहाँ म्यूजिशियन तो नहीं लेकिन मैं आइटम वो बता रहा हूँ कि कैसे उस आइटम को किया, और सबसे पहले बड्डू भैया और बड्डू भैया की श्रीमती जी आ रही हैं और वो एक गाना पेश करेंगे, आ जाने कर, अब मधुर चाल में दोनों चले आ रहे हैं बड़े प्यार के साथ, मंच पे आए बकायदा मंच के उन्होंने पैर पड़े घुटना पड़े और फिर उसके बाद मंच पे चढ़े, मंच पे जैसे चढ़े तो अच्छा कौन सा गाना गाएंगे भाभी जी आप बताइए, नहीं अल्लाह जी जी बोल आप तुम ही बता दो ना, वो क्या बताएं आपको, चांदनी पिक्चर का गाएंगे, अच्छा गाइए भाई चांदनी का पिक्चर का गाना गाएंगी और बहुत बढ़िया गाती हैं, और उसके पहले बलुआ में भी गा चुकी हैं, 3 इनके प्राइवेट एल्बम लॉन्च हो चुके हैं, कौन सा हुआ, एक सोहरों का एल्बम लॉन्च हुआ और एक दो जो है बधाई गीत का लॉन्च हो गया, और हमने 3-4 जो है दादरे कहरवा और पता नहीं कई कई चीजें हमने गाई, बहुत बढ़िया मतलब बन्ना बन्नी गाए हैं और मतलब बहुत अच्छा अच्छा हमने गाया है, तो चांदनी पिक्चर का गाएंगे, अच्छा ठीक है तो शुरू करिए, नहीं पहले म्यूजिक तो लगाओ, अब साहब म्यूजिक वाले ने म्यूजिक व्यूजिक बजाया और उन्होंने गीत गाया, कैसे दोनों ने ड्यूट गाना सॉन्ग है, हाँ तुम तो शुरू करो पहले, तब तो हमारा नंबर है, अच्छा हम शुरू कर रहे हैं, हम सोचे कि तुम शुरू, नहीं आप शुरू करो, अब उन्होंने शुरू किया,

0: घंटा हो गए चांदनी चांदनी आगे कहानी आओ
1: गातो राय सुनने गए रंग भरे बदरा से तुरने नन की कजरा से मैंने जा दिल पे लिख दो तुरना
0: चांदनी ते मोरी चांदनी ते मोरी चांदनी कोई फूल कोई तोहफा तुम कछु भी साथ नहीं लाए कितनी महबूबा से मिलने खाली हाथ नहीं जाते तुम्हें नहीं बता सत ले आते यहाँ तो छूछे हाँ चले आए तुम
1: साहब ये आइटम का खैर कोई बात नहीं बहुत अच्छा प्रयास रहा आप चलिए दूसरे और हमारे जो गाने के लिए आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया गाते हैं आ जाओ भैया तुम्हारा क्या नाम
2: हमारा नाम है वोई
1: वोई नहीं हम भूल गए नाम नाम बताओ
2: हमारा नाम है कुरकुर कुरकुर कुरकुर
1: क्या नाम है
2: कुरकुर कुरकुर कुरकुर
1: कैसा नाम है
2: शॉर्टकट में है ना लंबा बहुत बड़ा है वो हम नहीं बता पाएंगे हमारे भैया बता पाते
1: अच्छा अच्छा ठीक है आप कौन सा गाना गाएंगे
2: आज की पिक्चर का गाएंगे
1: अच्छा गाइए आज की पिक्चर का गाना देखिए बहुत बढ़िया है खुरखुर खुरखुर जी और ये आज की पिक्चर का गाना गाएंगे
2: कौन सा वाला टाइटल वाला गाना गाएंगे
1: टाइटल वाला गाना गाइए कैसे उन्होंने गाना का सत्यानाश किया
2: मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में अगर साथ छोड़ा ये बादों न तोड़ा मैं तुमको भुला दे आऊंगा
1: ऐसा गा रहा है बेसुरा चलो इसके बाद एक बहुत बढ़िया बात है कि हमारे यहाँ जो गांव के मुखिया हैं उनकी बिटिया है और वो भी गाना गाएगी अच्छा अच्छा बिटिया नहीं आ रही है उन्होंने अपने भैया को भेज दिया है और उनके भैया रामलीला में काफी फीमेल रोल करते हैं कौशल्या सुमित्रा और न जाने कितने रोल किए हैं उन्होंने फीमेल रोल किए हैं और इसके अलावा वो सहेली सखी भी बन चुके हैं आइए बहुत बढ़िया कौन सा गाना गाओगे
0: हम पिक्चर वाले गाने गाएंगे
1: हाँ मैं रामलीला का नहीं गा पा रहा हूँ आप गाइए पिक्चर के गाने कौन सा गाएंगे
0: हम वाली पिक्चर का गाएंगे जो ऋतिक रोशन की पिक्चर का है
1: हाँ गाइए तो उन्होंने गाना गाया

0: प्यारी है, कहो ना प्यारी है।
1: और अब एक बार फिर मैं आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी एक फिल्म की कहानी सुना रहा हूं। ऐसी फिल्म की कहानी जिसको मैं देखने गया था और मेरा साथी था मेरे साथ लल्लू। लल्लू जो था उसको पान खाने का बड़ा शौक था, तो मैं और लल्लू दोनों फिल्म देखने के लिए गए। बड़े प्यारे प्यारे गाने थे उस फिल्म में, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे। तो साहब ऐसा है कि फिल्मों का शौक तो सभी को है, रेडियो के माध्यम से बहुत बढ़िया बढ़िया गाने हम सुनते हैं। कभी कभी हमारे दूरदर्शन वाले भी बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चरें दिखाते हैं, गाने भी दिखाते हैं। खैर, तो उसी शौक को पूरा करने के लिए हम फिल्म देखने के लिए गए। साहब टिकट ली, टिकट लेने के बाद जब उस थिएटर में यानी टॉकीज के जो द्वार था, दरवाजा था, वहां जब हम पहुंचे तो हमने अपनी टिकट किसको दी? गेटकीपर को। उसने टिकट ली और हमसे कहा कि हाँ आप बैठिए, आपकी चेयर का नंबर है K4142, यानी के सीरीज में 4142। तो हमने लल्लू से बोला चल भाई अपन बैठे। तो लल्लू मुझसे बोलता है, इसके मुंह में पहले से पान था, उसके बाद मुझसे लल्लू बोलता है,
2: एक काम करो भाई साहब, आप जाकर बैठो, मैं एक आध पान खा के आता हूँ।
1: हमने कहा भाई साहब आपके मुंह में पान तो पहले से है। तो वो मुझसे बोलता है,
2: अरे नहीं ऐसा है कि अब एक आध पान और खा लेंगे, एक आध हम आपके लिए ले आएंगे।
1: हमने बिल्कुल ठीक है। मैं अकेला उस हॉल में जाकर बैठ गया, लल्लू भैया गए थे पान खाने। तो मैं जहां बैठा था क्या देखता हूँ क्या सुनता हूँ, एक भाई साहब बिल्कुल मेरे बाजू वाली कुर्सी में बैठ के सो रहे थे। बड़े खर्राटे ले रहे थे, बड़ी जोर जोर से। हमने कहा भाई साहब, ओ भाई साहब ये सोने की जगह नहीं है भाई साहब, यहाँ लोग सिनेमा देखने आते हैं, हैं? आप सिनेमा देखने की जगह सो रहे हो, अब घर में जाके सो। तो ये मुझसे बोलते हैं साहब ऐसा है हम घर में जाके सो नहीं सकते। मैंने कहा आप क्यों घर में जाके सो नहीं सकते? इसलिए नहीं सो सकते भाई साहब कि मेरी धर्मपत्नी मेरे को सोने नहीं देती है। कभी बोलती है बर्तन मांजो, कभी बोलती है कपड़े धो, कभी बोलती है घर में झाड़ू लगाओ, कभी बोलती है पैर में मालिश करो, ये करो वो करो, फलाना करो ठिकाना करो। हमने अरे अरे अरे अरे बड़ी दयनीय स्थिति है तुम्हारी, तुमने क्या दहेज वगैरह ज्यादा लिया था क्या शादी में? तो वो मुझसे बोलते नहीं साहब दहेज मैंने नहीं लिया, मैं तो बिल्कुल दहेज का विरोधी हूँ, लेकिन जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने दहेज जरूर लिया था, वो काम उन्होंने गलत किया था, लेकिन दहेज लेने के थोड़े दिन के बाद वो चल दिए ऊपर चले गए। वो तो खैर ऊपर चले गए लेकिन ये सब काम काज करने को मुझको छोड़ गए। हमने कहा चलिए ठीक है, आप सो जाइए या देखिए पिक्चर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है साहब, ये तो सो गए। अब इनके खर्राटे की आवाज मेरे दाहिने कान में आ रही थी और जो बायां कान मेरा खाली था वो क्या सुन रहा था? जो पर्दे के अंदर से गाना आ रहा था। कलाकार पर्दे पे आ गए, उन्होंने फटे कपड़े पहने हैं और पागल जैसा उनका सीन मतलब दृश्य है, ड्रेसेस है पूरा बढ़िया, बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। वो गाना आया बाएं कान से सुना, दाहिने कान से जो भैया बाजू में बैठे थे, भगवान इनका भला करे, इनके खर्राटे। तो खर्राटे और गाना, गाना और खर्राटे कैसे सुनाई दे रहा सुनिए।

हमने कहा उठो यहाँ से, उठो यहाँ से और तुम सीधे घर जाओ। अरे हम फिल्म देखने के लिए आए हैं, गाना सुनने आए हैं, तुम तो खर्राटे लिए जा रहे हो, जमाई लिए जा रहे हो। इनको तो साहब मैंने भगा दिया, ये तो चल दिए। एक भाई साहब मेरे इस तरफ यानी बाएं की तरफ बैठे हुए थे, बाएं हाथ की तरफ, वो तालियां बजा रहे थे, बड़ी जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। मैंने उनसे बोला क्यों भाई ताली क्यों बजा रहे हैं? कोई अच्छा सीन पर्दे पे आए, जब कोई बहुत बढ़िया सा डायलॉग आए, उस समय आपको ताली बजाना चाहिए। तो ये मुझसे क्या बोलते हैं कि साहब हम ताली इसलिए बजा रहे हैं कि कहीं हमको नींद ना आ जाए। तो साहब उनको शांत किया, पिक्चर आगे बढ़ी, बड़ा मजा आया। फिर वो मेन पिक्चर चालू हो गई, उसमें आगे कौन वो मुख्य कलाकार हीरो थे उस फिल्म के, चले जा रहे थे, उसका एक मेन गाना आया, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा में सीधा साधा। ये गीत भी मैं अच्छे से नहीं सुन पाया साहब। क्यों नहीं सुन पाया? इसलिए नहीं सुन पाया कि एक भाई साहब मेरे पीछे बैठे हुए थे, उनको खांसने की बीमारी थी। अब आप सोचेंगे उनके खांसने में क्या तकलीफ, हम जो भारत के वासी हैं उनकी और हमारी, हमारी और आपकी खांसी कैसी होती, बड़ी साधारण, किस तरह से कुछ इस तरह की खांसी। लेकिन उनकी खांसी ऐसी थी, ऐसा लग रहा था कि विदेश से बुलवाई हो, भगवान जाने कहां से बुलवाई थी, उत्तर से बुलवाई थी कि दक्षिण से बुलवाई थी कि पश्चिम से, मालूम नहीं कहां से बुलवाई थी। क्योंकि उनकी खांसी, खांसने का बड़ा अजीब और गरीब स्टाइल था, जब वो खांसते थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रॉकेट, हवाई जहाज आसमान की तरफ हाई स्पीड में चला जा रहा हो। किस तरह से खांसते थे जरा देखेंगे, ये उनके खांसी की आवाज। अब बताइए ये खांस रहे हैं पीछे से, हीरो पर्दे पे है, वो गा रहा है आगे से, मैं बीचों बीच, गाना खांसना, खांसना गाना, एक साथ कैसे सुनाई दिया? पहले तो वो गाना सुन लें आप, दो तीन लाइन ओरिजिनल जो बिना खांसी का है, और उसके बाद खांसी के साथ किस तरह से सुनाई दे रहा है मुझको, मैंने कैसा सुना वो मैं सुनाता हूं आपको ओरिजिनल गीत।

ओरिजिनल गीत है, ये सुनने मैं गया था जिसका मैंने शुल्क दिया था, लेकिन एक सेवा जो निशुल्क पीछे से उपलब्ध हो रही थी वो भी मेरे अपने मेरे भाग में आ गई, तो कभी गाना कभी खांसना, कभी गाना कभी खांसना, कैसा सुनाई दे रहा है सुनिए।

0: पे तेरे गया बंदा में सीधा दाते रावा दाते रावा दे पे तेरे गया बंदा में सीधा दाते रावा अरे दाते रावा अरे दाते रावा अरे दाते रावा हमने उठो उठो यहां से अलग हो हट जाओ यहां से। तो इनको तो खैर भगा दिया लेकिन ये दो मिनट के बाद फिर वापस आ गए। हमने क्यों आ गए तुम घर क्यों नहीं गए? तो ये मुझसे बोलते हैं घर कैसे जाएंगे साहब घर वालों ने यहाँ पे भेजा है। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा घर वालों ने यहाँ पे भेजा है हाँ। तो भैया दवाई क्यों नहीं करा लेते भाई साहब? दवाई कराइए, होम्योपैथिक कराइए, एलियोपैथिक कराइए, आयुर्वेदिक कराइए, यूनानी कराइए, नेचुरोपैथी कराइए भाई साहब, कुछ ना कुछ तो इलाज होगा इसका खांसी का। आप कब से खांस रहे हैं? तो ये मुझसे बोलते हैं भाई साहब मैं 18 साल से अखंड खांस रहा हूँ। 18 साल से आप अखंड खांस रहे हैं? बहुत अच्छे साहब, वाह भगवान आपका भला करे हैं। और ये खांसी लेके आप मेरे सामने आए, मेरी पूरी पिक्चर आपने गड़बड़ कर दी भाई साहब। ओहो, तो पिक्चर में यानी हॉल में अंधेरा था, ना हाथ को हाथ दिख रहा था, ना पैर को पैर दिख रहा था। मैंने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, अंधेरे में एक गोली उनको दे दी। किनको दे दी? वो खांसने वाले को। खांसने वाले को मैंने कहा लो भाई साहब इसको आप चूसते रहना, जैसे बच्चे मुंह में आपके चॉकलेट वगैरह लेके गोली बिस्कुट वगैरह लेके चूसते रहते हैं ना, वैसा आप चूसते रहिएगा हैं। इसको गले से नीचे नहीं उतारना नहीं तो आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो ये मुझसे बोलता है
1: ये साहब काहे की दवाई है?
0: ये आपके खांसी की दवाई है, इससे आपको बहुत आराम मिल जाएगा। चलिए ठीक है साहब। उनको मैंने अंधेरे में एक गोली दे दी, उनको तो खैर आराम 2-4 मिनट के बाद मिला। तो मुझसे क्या बोलते हैं भाई साहब भाई साहब? मैंने कहा बोलिए साहब क्या बात? अरे साहब ऐसी कौन सी जादू वाली गोली दे दी साहब आपने, भगवान आपका भला करे साहब, बिल्कुल मेरी खांसी तो बिल्कुल रुक गई साहब। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आप तो मेरे को एक काम करिए, वो जो दवाई आपने मेरे को दी है ना उसका आप मेरे को नाम लिख के दे दीजिए ताकि मैं बाजार से खरीद लेता हूँ। भाई साहब मैं 18 साल से अखंड खांस रहा था, विदाउट ब्रेक खांस रहा था, मैं अखंड खांस रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, वो क्या है कि वो जो हमने तुमको दवाई दी है वो बाजार की दवाई नहीं है, हमारा अपने घर का ओन प्रोडक्ट है, हम स्वयं उस दवाई को बनाते हैं, बाजारू दवाई हमने तुमको नहीं दी। भगवान भला करे उस खांसी वाले का, और भगवान मेरा भी भला करे, उसकी खांसी बंद हो गई। लेकिन उसने जो मुझसे पूछा था कि दवाई का नाम लिख के दीजिए, तो मैं क्या दवाई का नाम लिख के देता? अरे मैंने उसको दवाई दी ही नहीं थी, मैंने तो अपने कोट का बटन तोड़ा और उसको दे दिया था। चलिए साहब पिक्चर आगे बढ़ती है, बड़ा मजा आया, बहुत आनंद आ रहा था। अचानक एक आवाज मेरे कान में आई, वो कौन सी आवाज थी?
2: भाई साहब, ए भाई साहब, भाई साहब।
0: हमने कौन है भाई?
2: मैं लल्लू आपका दोस्त।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ये भाई साहब जो पान खाने गए थे मेरे मित्र, ये आ गए हैं हमने। अच्छा अच्छा, आ जाइए अंदर आ जाइए, हॉल के अंदर आ जाइए। तो ये मुझसे बोलते हैं
2: कहाँ से आ जाइए, हमको तो अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है।
0: हमने किसी को नहीं दिखता भाई साहब अंधेरे में, आपको कैसे दिखाई देगा अंधेरे में है? चले आइए, एक काम करिए, वो जो कुर्सियों के बीच में रास्ता है जहां और लोग बैठे हुए हैं, जो कुर्सियों की लाइन है उसके जो बीच में रास्ता है, धीरे धीरे चले आइए, धीरे धीरे चले आइए है, वहां मैं आपका आगे आके हाथ पकड़ लूंगा।
2: जी भाई साहब।
0: तो ये साहब अंधेरे में धीरे धीरे धीरे धीरे चले आ रहे हैं, मेरी तरफ बढ़े जा रहे हैं, लेकिन इनके कारण अंधेरे में किसको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, जरा मैं उनकी कहानी आपको सुनाता हूं, बड़े संक्षिप्त में, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। तो ये धीरे धीरे चले आ रहे, ये अंधेरे में चले, ये चले, एक ने कहा अरे अरे ये क्या करते हो? क्यों भाई साहब क्या हो गया?
2: अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों क्या हो गया?
0: अरे मेरी मूंगफली पूरी आपने गिरा दी, मेरी पूरी मूंगफली गिरा दी। अरे अरे अरे ये मेरे जूते जूते कहाँ लेके जा रहे हो भाई, मेरे जूते कहाँ?
2: अरे साहब गलती हो गई साहब, कुछ नहीं दिखाई दे रहा साहब। अरे बाप रे,
0: ये चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। अचानक किसी ने मजाक कर दिया बीच में, कहा बैठ जाओ बैठ जाओ। तो ये सोचे कि मेरे पास आ गए, मैंने बोला बैठ जाओ, मैं तो बहुत दूर बैठा था, किसी ने मजाक कर दिया, कहा बैठ जाओ, तो ये बैठ गए। एक छोटा बच्चा बैठा था उसकी गोदी में वो बैठ गए उनकी गोदी में बैठ गए। तो उनके पिताजी ने एक तमाचा उसको मारा, वो गिरते पड़ते वो लल्लू लाल हमारे पास आए। हमने उनसे बोला क्यों लल्लू लाल कहाँ बैठ गए थे?
2: अरे कहले बहुत अच्छी जगह थी लेकिन एक हमको भगा दिया मार पीट के।
0: हमने वो तो बच्चा बैठा था भाई साहब, है वहां नहीं बैठना चाहिए आपको। खैर
3: मैंने उनको बैठाया अपने पास, फिल्म आगे बढ़ी, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। इंटरवल हो गया मध्यांतर, जब मध्यांतर होता है हम और आप सभी जब टॉकीज से बाहर चाय कॉफी वगैरह पान वगैरह लेने जाते हैं तो सब अपने कपड़े अपड़े सब सही करते हैं, कोई सामान छूट ना जाए उसकी खास ध्यान देते हैं उस बात पे, तो वो सब कुछ मैंने किया जो आप करते हैं, हम सभी करते हैं। तो मैंने अपने लल्लू भैया से बोला, चलो इंटरवल होने के 5 मिनट पहले तो आप आए हो यार, है चलो फिर से एक पान खा लेना, मैं चाय पी लूंगा। तो हम लोग कुर्सी से जब खड़े होने लगे तो मैंने अपना जो कोट पहना था, नया कोट पहना था, उसका मैंने दाहिना हाथ देखा, बहुत बुरी तरह गीला था। हमने ओहो ये गीला कैसे हो गया भाई, किसी ने पानी फेंका क्या? पानी कौन फेंकता भाई, किसी के हाथ में थाली नहीं, लोटा नहीं, गिलास नहीं, शीशी नहीं, बॉटल नहीं, हमने फिर पानी किसने फेंका? चारों तरफ देखा, किसी के हाथ में कुछ नहीं। अचानक मैंने बालकनी की तरफ ध्यान दिया, बालकनी की तरफ मतलब ये हुआ कि मैं नीचे बैठा था, वो कम पैसे वाली जो क्लास होती है, 5 रुपए की टिकट थी या 10 रुपए की, कुछ याद सा नहीं है, ऊपर बालकनी थी, नीचे मैं बैठा था। अचानक मैंने ऊपर की तरफ देखा तो एक बहन जी बालकनी से नीचे झांक रही थी और रो रही थी बड़ी जोर जोर से। हमने कहा, बहुत अच्छे बहन जी, आपने तो क्या रोया भाई, वाह वाह, मेरे पूरे कोट में आपके आंसू गिर गए हैं। फिर मैंने चिल्लाया, मैंने कहा, बहन जी, ए बहन जी, इधर देखिए बहन जी। तो बहन जी ऊपर से देख के मुझको बोलती है, क्या है? अरे बहन जी, ऐसा कैसा रोया बहन जी आपने, हैं? आपके आंसुओं से तो हमारा पूरा कोट खराब हो गया है, पीछे होके रोइए। तो वो पीछे हो गई और अपने पति देव

0: प्रतिदिन उनके साथ आए थे, उनसे फौरन उन्होंने बोला
1: कि आपको कितनी बार बोला था यहाँ बालकनी की दीवार के वहां पर आप मुन्ने को मत खड़ा करो।
0: आप समझ रहे होंगे कि उनके बच्चे ने ऊपर से क्या किया, जो भी कुछ किया वो पूरा दाहिने हाथ के मेरे कोट के दाहिने हाथ पे चला आया। वो तो अच्छा हुआ मैं जमाई नहीं ले रहा था, नहीं तो पानी भी पीने नहीं उठना पड़ता मेरे को। फिल्म में हम लोग बाहर निकले, एक कैंटीन होती जहाँ चाय समोसे कॉफी कोल्ड ड्रिंक लस्सी वगैरह सब कुछ मिलता है, वहाँ हम पहुंचे तो हमने क्या देखा, हमने तो खैर होटल के नौकर को बुला लिया, हमने भाई साहब यहाँ आइए मेरे लिए दो चाय ले आइएगा, एक इनके लिए हमारे लल्लू भैया के लिए और एक मेरे लिए। तो साहब दो चाय आ गई, हम पीने लगे, हम क्या देखते हैं कि हमारी कुर्सी के सामने दो सज्जन आकर बैठ गए। वो दो सज्जन कौन थे, वो थे तो बड़े अच्छे लेकिन उन्होंने होटल के नौकर को थोड़ा सा सताने के लिए न जाने कुछ क्या किया, कुछ कॉमेडी के मूड में थे, हंसी मजाक के मूड में थे। तो एक जो सज्जन थे उन्होंने कुछ खाने का ऑर्डर दिया लेकिन सही तरीके से नहीं दिया, वो थे बहुत सही लेकिन वो अटक अटक के बोल रहे थे। हाँ उन्होंने कुछ मजाक सा किया, अटक अटक के बोलने लगे। उनके साथ जो दूसरे सज्जन थे उन्होंने भी मजाक का मूड बनाया, उन्होंने क्या किया वो नाक से बोलने लगे। अब बताइए एक सच्चा बढ़िया बोलने वाला आदमी अगर नाक से बोले तो कैसा बोलेगा, और सही बोलने वाला बिल्कुल लगातार शब्दों का इस्तेमाल करने वाला अगर अटक अटक बोले, अटक अटक के बोले तो कैसा बोलेगा। तो उन्होंने होटल के नौकर को बुलाया, सबसे पहले बुलाया अटक अटक के बोलने वाले भाई ने मजाक के बतौर, इधर आ भाई। नौकर आ गया, उसने कर्मचारी ने होटल के कर्मचारी ने उनसे पूछा हाँ साहब क्या चाहिए, तो वो अटक अटक के बोलने वाला बोलता है आपकी दुकान में के के के के के के के के के के के क्या क्या है। तो नौकर बोलता है आलू बंडा है, समोसा है, दालमोठ है, भाजी बड़ा है, रोटी है, पराठा है, चावल सादा है, चावल फ्राई है, नॉन वेज है, नॉन वेजिटेरियन है, सब कुछ होगा साहब, अंडा भी मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक लस्सी मिलेगा, चाय मिलेगा, कॉफी चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो वो जो अटक अटक के बोल रहे थे उनने फिर मजाक किया, उन्होंने कहा ये वो सब नहीं, वो सुबह सुबह तुम लोग कढ़ाई में तेल डालकर चने के आटे में प्याज लहसुन पालक की भाजी सोडा नमक डालकर वो दे दे दे दे ला दो प्लेट। तो नौकर बोलता है साहब हम तो हमको समझ में नहीं आया साहब आपको चाहिए क्या है, ये धे धे धे धे हमारे समझ में नहीं आ रहा है, जरा अच्छे से बोलिए साहब, ये मिस्टर भाई साहब ये जी क्या आप इनके साथ आए हैं क्या। तो वो जो दूसरा था जो नाक से बोलने का मूड बना रहा था वो बोलता है तो उन्होंने नौकर ने बोला भाई साहब फिर आप ही बताइए ना आपको क्या चाहिए और इनको क्या चाहिए। तो नौकर जो खड़ा हुआ था उसके साथ साथ कौन खड़ा हो गया, वो नाक से बोलने वाला, नाक से बोलने वाला खड़े होके क्या बोलता है आप बताइए। इंटरवल 5-10 मिनट का वक्त का होता है, उसके बाद फिर पिक्चर चालू हो जाती है, लेकिन ये दोनों मित्र बड़े मजाक के मूड में, नौकर के समझ में नहीं आया, उन्होंने फिर से उसको बोला अटक अटक के बोलने वाले को, किसने बोला ये नौकर ने फिर से बोला कि भाई साहब एक काम करिए वो जो भाई साहब सामने हैं उनकी तो बात समझ में नहीं आ रही, वैसे तो आपकी भी समझ में नहीं आई लेकिन अगर एक बार और बता देंगे तो मेरे समझ में आ जाएगा कि आपको आलू बंडा चाहिए कि समोसा चाहिए कि क्या चाहिए। तो अटक अटक के बोलने वाला फिर मजाक के मूड में आ गया, उसने फौरन बोला समझने की कोशिश करो भाई साहब, जो सुबह सुबह आप लोग कढ़ाई में तेल गरम करते हो है ना, उसके बाद चने का आटा लेते हो, उसमें पालक की भाजी डालते हो, हरी मिर्ची डालते हो, नमक डालते हो, सोडा डालते हो और वगैरह वगैरह बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें डाल के वो गोल गोल घुमा के वो ऐसा करके जब तेल में दें दें दें दें ला दो प्लेट। नौकर बोलता भाई साहब मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप जितना सब वो सब ठीक है लेकिन आप बाकी तो सब सही बोलते हो लेकिन जिस शब्द को आपको बोलना चाहिए वहीं पे आप जाके सॉलिड हो जाते हो, ये बात गलत है, हैं? जरा फिर से आप बताइए किसको बोला इसने, वो नाक से बोलने वाले को। वो फिर खड़ा हुआ, फिर उसने वही बात सब रिपीट की, कहता है वो हमने कहा, नौकर बोलता रे बाप रे इंटरवल तो गया भाई साहब, मेरे को बहुत नुकसान हो गया भाई साहब, आप मेरी दुकान में काहे को आए भाई साहब, काहे को आए भाई साहब।
2: संग्रहालय से कार्यक्रम

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया जाना भारत के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी व्यापारिक नेताओं की सभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी लियुगोंग इंडिया के 272 करोड़ रुपए लागत के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण में यहां प्रतिवर्ष 6,500 निर्माण उपकरणों मुख्य रूप से एक्सकेवेटर का उत्पादन होगा। प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के पदों पर भर्ती के लिए कुल 500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें 436 उम्मीदवारों को चुन लिया गया है। डीजीपी कैलाश मकवाना के अनुसार पूरे 8 वर्ष बाद मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टरों की यह बड़ी भर्ती हुई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच के तीसरे मुकाबले में कल भारत को इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा। सीरीज के आखिरी दो मैच ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। इसके बाद भारत इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला भी खेलेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम।
2: महिला सभा सुनने वाली मेरी प्यारी सखियों को आपकी सखी नीलम का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हम सभी घर के काम करने के साथ साथ बाहर के भी सारे काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन सखियों अभी भी आर्थिक निर्णय लेने, निवेश करने, टैक्स से जुड़े निर्णय लेने में कई बार हम अपने हस्बैंड, अपने पापा या घर के सदस्यों पर निर्भर हो जाती हैं। सखियों, यदि हम कमा रहे हैं या हाउसवाइफ घर में पैसा बचा रही हैं, तो उससे जुड़ी हर जानकारी, हर निर्णय में हमारी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना या पैसा बचाना ही जरूरी नहीं है। इसके साथ ही अपने पैसों को समझना, संभालना व सही उपयोग करना भी हमें आना चाहिए। सखियों, हमें फाइनेंशियल मुद्दों पर भी अपनी राय बनानी होगी। इसके लिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे बैंकिंग की मूलभूत जानकारी होनी चाहिए, बैंक खाता कैसे खोलते हैं, चेक कैसे भरा जाता है या डिजिटल भुगतान कैसे किया जाता है। आज के डिजिटल युग में नेट बैंकिंग, कार्ड से पेमेंट करना, ये सब काम हमें आना चाहिए। हम हमेशा आय और व्यय का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखें, इससे हमें आर्थिक स्थिति समझने एवं बेहतर निर्णय लेने में आसानी होगी। और हाँ सखियों, वित्त से संबंधित सारे दस्तावेज को भी समझना और संभाल कर रखना आना चाहिए, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, भुगतान रिकॉर्ड इत्यादि। टैक्स से संबंधित जानकारी भी हमें रखनी होगी, आयकर रिटर्न कैसे भरते हैं, किन खर्चों पर टैक्स से छूट मिलती है और अपनी आय को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगी ना, तब हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। सखियों, समय पर हमें बिलों का भुगतान करना चाहिए, ताकि हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा रहे, जिससे भविष्य में लोन लेने में हमें आसानी होगी। खुद के लिए और पूरे फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेना भी आज की ज़रूरत बन गया है। और कोशिश करें कि हम अपने या अपने घर की कुल इनकम का 50% घर के जरूरी खर्चे, 30% अपनी इच्छाओं और 20% भविष्य की बचत में निवेश करें।

छोटी छोटी सेविंग भी लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड बनाकर देती हैं। सखियों, कमाने के साथ साथ हमें निवेश के फैसले भी लेने होंगे, ना कि घर के अन्य सदस्यों पर हम निर्भर हो जाएं। वर्तमान में निवेश के कई सुरक्षित व लाभदायक विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बीमा, पेंशन स्कीम, SIP। इससे हम भविष्य की अपनी आर्थिक सुरक्षा को बेहतर बना सकती हैं। तो आइए सखियों, हम भी अपने वित्तीय व्यवहार को निखारें और अपने परिवार की मेहनत की कमाई को समझदारी से मैनेज करें।

सखियो, समय समय पर हम आपके लिए कहानी, काव्य पाठ, वार्ता लेकर आते हैं। तो आज की इस कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं काव्य पाठ। कवित्री हैं

0: सुश्री भारती जैन। तो आइए सखियो, सुनते हैं ये काव्य पाठ।
1: नमस्कार, आज मैं आपके लिए कुछ गीत लेकर उपस्थित हुई हूँ, सुनिएगा। हे आदि देव अच्युत अनंत।

चंदन कर दो, घट घट में खुशियों के घट भर, ये मान सरोवर मन कर दो। हो धन्य धरा का ज्योतिर्मय, हो धन्य धरा का ज्योतिर्मय, हर दृश्य अलौकिक।

संगत से अज्ञान तिमिर हट जाता है, वैसे ही परम ईश मन की विगलित कर दो सब कुंठाएं। आमूल चूल परिवर्तित

घट जाता है। जैसे ज्ञानी की संगत से अज्ञान तिमिर हट जाता है, वैसे ही परम ईश मन की विगलित कर दो सब कुंठाएं। आमूल चूल परिवर्तित हों, निर्मूल सभी शक शंकाएं। रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम बरसाते खुशियों की, चहुर दिखे भाईचारा जीवन की बगिया में प्रतिपल। बस बजे प्रेम का एक तारा, बस बजे प्रेम का एक तारा। और अंतिम पद देखें कि हो प्रेम प्रतिष्ठित हर घर में, नफरत डर से कांपे थर थर। हो प्रेम प्रतिष्ठित हर घर में, नफरत डर से कांपे थर थर। हो प्रेम सुधा से ही सिंचित चिंतन के चौराहे प्रभुवर। महिमा मंडित सम्मान रहे, माटी का अक्षत मान रहे। और जब तक जीवन है धरती पर, हर दिल में हिंदुस्तान रहे। हो राष्ट्रभक्ति ही परम धर्म, हो राष्ट्रभक्ति ही परम धर्म। जय हिंद हमारा।

हर दृश्य अलौकिक अनियारा हो, दृश्य अलौकिक अनियारा, जीवन की बगिया में प्रतिपल बस बजे प्रेम का एक तारा, बस बजे प्रेम

सुश्री भारती जैन। सखियों, हर मौसम खास होता है। उसमें बारिश का मौसम राहत और खुशी की लहर लेकर आता है। बारिश हमेशा पुरानी यादें और सुकून का एहसास लेकर आती हैं। सखियों, अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम के अनुसार घर के साज सज्जा बदलने से न केवल घर का माहौल तरोताजा रहता है, बल्कि बदलते मौसम में आराम भी मिलता है। अभी चारों ओर हरियाली है, ऐसे में घर के बगीचे से फूलों को तोड़कर लिविंग रूम की सेंटर टेबल पर फूलदान में सजाएं। जब आप फूलों से भरे गुलदस्ते देखेंगी ना, तो इससे आपका मूड तुरंत अच्छा हो जाएगा। लिली, चमेली और गुलाब जैसे मधुर सुगंध वाले फूल किसी भी स्थान की सुंदरता बढ़ाने या उसे मनमोहक खुशबू से महकाने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। सखियों, विंड चाइम्स घरों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती हैं। उन्हें अपने बेडरूम स्पेस या लिविंग एरिया की खिड़कियों से लटका दें। इनकी आवाज़ से वातावरण में शांति और सुकून का संचार होता है। सखियों, बारिश में भारी पर्दे के कपड़े नमी को अवशोषित करते हैं और फिर एक अजीब सी स्मेल बनी रहती है। इसलिए इन दिनों हल्के रंग के लाइट पर्दे, जिससे हवा एवं रोशनी आसानी से प्रवेश कर सके। शिफॉन, नायलॉन, लिनन जैसे हवादार कपड़े घर में प्राकृतिक रोशनी आने देने के लिए एकदम सही रहेंगे, क्योंकि ये ताजी हवा को अंदर आने देंगे और हवादार माहौल बना रहेगा। साथ ही अपने घर की एंट्री पर एक ऑल वेदर प्रूफ डोरमेट बिछाएं, ताकि बाहर से कोई भी आए अपने जूते चप्पल पोंछ कर ही अंदर आए। बारिश का मौसम बहुत सुहाना होता है, ये अपने साथ लीकेज, सीलन भरी बदबू भी लाता है। इसलिए समय समय पर खिड़की दीवारों की जांच करें, यदि कुछ लीकेज हो तो वाटर प्रूफ टेप से तुरंत ठीक करवा लें। सखियों, हमें यकीन है आप अपने घर को ताज़ा रंगों और शांति से भरपूर चीज़ों से भरकर एक आरामदायक जगह बना ही लेंगे। साथ ही अपने घर को मानसून के लिए तैयार करना ना भूलें और बारिश के मौसम से अपने घर के उत्साह को किसी भी प्रकार से कम होने ना दें।

सखियों, आज के समय में स्वस्थ रहने के लिए मजबूत इम्यून सिस्टम होना बेहद ज़रूरी है। हमारा इम्यून सिस्टम ही शरीर को वायरस, बैक्टीरिया और अन्य संक्रमण से बचाने का काम करता है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कमज़ोर होती है, तभी हम जल्दी बीमार पड़ते हैं और शरीर को संक्रमण से लड़ने में कठिनाई होती है। सखियों, आप जो खाते हैं वह आपके स्वास्थ्य और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा खान पान आपको स्वस्थ रखने, बार बार बीमार पड़ने से बचने और हर दिन अच्छा महसूस करने में मदद करता है। कुछ आसान आदतें आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती हैं। विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर भोजन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करता है। सखियों, पानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है। इसलिए दिन में 6 से 8 ग्लास पानी आप ज़रूर पिए। पैकेट बंद जूस या शीतल पेय से बचें, क्योंकि इनमें आमतौर पर शरीर की आवश्यकता से अधिक चीनी होती है। समय पर खाना खाना सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि नियमित अंतराल पर भोजन करने से शरीर बेहतर तरीके से काम करता है। नाश्ता छोड़ना या रात को बहुत देर से खाना खाना गलत है। ऐसा करने से पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। विटामिन्स और खनिजों से भरपूर विभिन्न प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसे खट्टे फल, पालक, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन का नियमित सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है। अपने दैनिक आहार में प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही, पनीर, दाल, अंडे, चिकन, मछली और मेवे को शामिल करें। सखियों, विटामिन ए, सी, डी और ई हमारे आहार में सुपर शक्तिशाली प्रतिरक्षा बूस्टर है। इसके लिए आप आम, पपीता, खरबूजे जैसे मौसमी फलों को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। सखियों, आपको अपनी पूरी जीवन शैली को रातों रात बदलने की आवश्यकता नहीं है। एक आदत से शुरुआत करें, उसे अपने डेली रूटीन में शामिल करें और फिर आप अगली आदत की ओर बढ़ें। सखियों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अपनी सखी नीलम को अनुमति। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा।
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?

0: ऐसा क्या? तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
1: ये हुई ना बात।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
0: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
6: आकाशवाणी इंदौर।
0: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
7: इस समय आप हैं हमारे साथ।
8: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे घनश्याम कुशवाहा के गाए लोकगीत।

घनश्याम कुशवाहा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से सुगम संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं स्वाति पाराशर के गाए गीत और भजन। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं ये भजन।

0: स्वाति पाराशर के गाए गीत और भजन अभी आप सुन रहे थे। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
4: इस समय आप है हमारे साथ।
5: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत। संगीत आनंद मिलिंद का है और फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और अब सुनवाते हैं परदेश फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: कुमार सानू की आवाज़ में परदेस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी ये जो गीत परदेस फिल्म का अभी आपने सुना, इस गीत की धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से जुड़ने का उन्हें बार बार सौभाग्य मिला है। इंडोनेशिया के प्रांबानन मंदिर में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को अपने लिए विशेष महत्व का बताया। उन्होंने कहा कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। केदारनाथ और महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण में योगदान को भी उन्होंने अपना सौभाग्य बताया।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स का जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी गुमांगशी लियुगोंग मशीनरी की भारतीय इकाई 272 करोड़ रुपए के निवेश से यह संयंत्र स्थापित कर रही है। नया संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में यहां हर साल 6,500 निर्माण उपकरणों के उत्पादन की क्षमता होगी, जिसमें मुख्य रूप से एक्सकवेटर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरदार सरोवर योजना का 30 से 40 साल पुराना विवाद सुलझा लिया गया है। अब गुजरात 75% लागत वहन करेगा। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम योजना में प्रदेश पांडुलिपि संकलन में देश में पहले नंबर पर है। टीकमगढ़ से जम्बूद्वीप का नक्शा और बुरहानपुर से 220 वर्ष पुरानी श्री भागवत गीता पांडुलिपि मिली है। वहीं जलगंगा संवर्धन अभियान में साल करीब 7 करोड़ परिवारों की भागीदारी रही और 10,600 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय हुआ। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कल नई दिल्ली में नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान पर ऐतिहासिक समझौता हुआ। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये सरदार सरोवर परियोजना की लागत साझाकरण के दीर्घकालिक विवाद को समाप्त करने की दिशा में मील का पत्थर है। श्री शाह ने इसे सहकारी संघवाद का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकारों से राज्यों के बीच विवाद तेजी से सुलझ रहे हैं। भोपाल में 13 जुलाई को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जीसीसी, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। पिछली 2 कॉन्क्लेव में कुल 32,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। कार्यक्रम में देश विदेश की कई अग्रणी कंपनियां शामिल होंगी। लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद भोपाल नगर निगम ने फायर सेफ्टी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए निगम ने अब तक फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया है। अन्य संस्थानों को 15 से 30 दिन में कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी भवनों में फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम और 2 सुरक्षित इमरजेंसी एग्जिट अनिवार्य होंगे।

0: कड़ी सुरक्षा के बीच आज अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का सातवां जत्था जम्मू बेस कैंप से रवाना हुआ। यात्रियों में बाबा बर्फानी के दर्शनों को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी रफ्तार से सक्रिय है। पन्ना, छतरपुर, खंडवा समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग ने आज श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर और टीकमगढ़ में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले चार दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में दान चढ़ावे की गड़बड़ियों की शिकायत पर जांच समिति बनाई गई है। कलेक्टर प्रीति यादव ने 3 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसके अध्यक्ष सीईओ बीएस सोलंकी हैं। आगरमालवा जिला पुलिस ने कल जिले भर के स्कूलों, ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक स्थलों पर सेफ क्लिक 2.0 जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी प्रकार से रायसेन में भी सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान का समापन कल किया गया। नर्मदापुरम के पिपरिया रेलवे चिकित्सालय और रेलवे स्टेशन पर जबलपुर रेल मंडल द्वारा टीबी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवपुरी कलेक्टर अर्पित वर्मा ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जर्जर और जीर्णशीर्ण भवनों में स्कूल संचालित नहीं करने के निर्देश दिए हैं और भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCEOE भोपाल के 2 कैनो खिलाड़ी एल नेहा देवी और हर्षवर्धन सिंह सक्तावत का चयन 2026 ICF कैनो स्प्रिंट व पैरा कैनो वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए हुआ है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रामबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रामबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रामबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामबानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक

0: सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजीशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता है और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर

0: फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं दिलवाले फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और अंतरा मिश्रा की आवाजों में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत प्रीतम का है। इस गीत को पसंद किया है कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली। साथ ही साथ ये फरमाइश हमें मिली है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश ठाकुर और छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की।

दिल तो पागल है इस फिल्म का गीत सुनना चाहा है। ये हमारे श्रोता है अनिल फड़वाड़े, सीमा, स्मिता, श्वेता, सारथी, पूजा, आरती, अमृत, तृप्ति, रूपाली और अमृता, ये है हमारे गुमाश्ता नगर इंदौर से हमें फरमाइश मिली है। साथ ही साथ दिल तो पागल है फिल्म के इसी गीत को पसंद किया है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जतिन बीरक और मीका बीरक के साथ ही साथ। ये पत्र है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से और पसंद करने वाले हमारे ये श्रोता है कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, पोत्रा, मुस्तवा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई और गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं। इसे आवाज से सजाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत उत्तम सिंह का है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और आज इस कार्यक्रम के साथ हूं मैं आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका। श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का गीत। असद भोपाली ने इसे लिखा है, राम लक्ष्मण ने इसकी धुन बनाई है और आवाज़ SP बालासुब्रमण्यम की है। इस गीत को पसंद किया है सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया और बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से, रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता, बेबी रचाती माखीजा और पूरा माखीजा परिवार, इन सभी की पसंद पर सुनते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत।

एसपी बाला सुब्रमण्यम की ही आवाज में आप सुनेंगे अगला गीत, जिसे पसंद किया है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, ऋचा, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार। और इस गीत को सुनने के लिए हमें खत लिख भेजा है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। और साथ ही साथ ये इन श्रोता का खत भी हम शामिल करते हैं, जो है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, ये सभी सुनना चाहते हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का गीत। राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में इसके बोल लिखे हैं देव कोहली ने, आवाज एस पी बालासुब्रमण्यम की।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में कुछ कुछ होता है फिल्म का गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत जतिन ललित का है। इस गीत को पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने। ये फरमाइश है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश राशि और श्रीमती शीतल राजेश, और गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधड़े और आरती जोंधड़े की।

0: अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे कुछ कुछ होता है फिल्म का ये गीत, जिसकी धुन बनाई थी जतिन ललित ने और गीत लिखा था समीर ने। इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। और अब इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से जुड़ने का उन्हें बार बार सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को अपने लिए विशेष महत्व का बताया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन करेंगे। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी गुआंगशी लियुगोंग मशीन

0: प्रकरण के दीर्घकालिक विवाद को समाप्त करने की दिशा में मील का पत्थर है। भोपाल में 13 जुलाई को एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जीसीसी, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। पिछली दो कॉन्क्लेव में कुल 32,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। और लखनऊ कोचिंग हादसे के बाद भोपाल नगर निगम ने फायर सेफ्टी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। निगम अब तक फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर 8 कोचिंग संस्थानों को सील कर चुका है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। मीडिया में पर सभा समाप्त करने से पूर्व लीजिए सुनिए हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडिया में पर सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5 बजे से। 5:02 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम युववाणी। सांध्यकालीन सभा के अंतर्गत फिल्म संगीत होगा 5:33 पर, 6:30 पर और रात 8:15 पर।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6 बजे। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र के योगदान से आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा शाम 7:21 पर। रात 8 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से पुनः जुड़कर सुनिए सुर्खियों में। 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे चर्चा का विषय है। रात 10 बजे सुनिए नाटक बंटवारा, जिसके लेखक है मुरलीधर बलवानी, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी होगा, जिसमें आप सुनेंगे पंडित कुमार गंधर्व का राग हमीर में ख्याल गायन। ये थी जानकारी हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:02 और 25 सेकेंड्स हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। डीटीएच के श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं लोक संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे घनश्याम कुशवाहा के गाए लोकगीत।

इस समय स्टूडियो की घड़ी में 4:58 मिनट 50 51 52 53 सेकंड।

नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 465.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

0: और मैं हूँ चित्रा, और हम सभी आपका दिल से स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में।
1: जुलाई का महीना हो और मौसम में हल्की हल्की बारिश की खुशबू ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं रिमझिम फुहारे, कहीं बादलों की आवाजाही, और कहीं लोग बस खिड़की के पास बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ इस मौसम का मजा ले रहे होंगे।
0: और अगर आप ऑफिस से लौट रहे हैं, कॉलेज से निकल रहे हैं, पढ़ाई के बीच छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, या फिर इस मौसम का आनंद लेते हुए हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, तो बस मुस्कुराते रहिए, क्योंकि अगले एक घंटे तक आपकी शाम की जिम्मेदारी हमारी है।
1: बिल्कुल, आज की शाम में होंगी दिलचस्प बातें, आपके पसंद के शानदार गीत, और कुछ ऐसे सवाल भी जो आपकी जानकारी में थोड़ा सा इजाफा करेंगे।
0: बिल्कुल दोस्तों, आज तो हमारे पास हमारा स्पेशल सेगमेंट भी है एक ही फिल्म से, जिसमें आज हमने एक ऐसी फिल्म चुनी है जिसके गाने आज भी बारिश, प्यार और यादों की बात आते ही लोगों की प्लेलिस्ट में अपनी जगह बना लेते हैं।
1: लेकिन अभी हम उस फिल्म का नाम आपको नहीं बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आगे के कार्यक्रम में उसी फिल्म के खूबसूरत गीत आपका इंतजार कर रहे हैं।
0: उससे पहले हमेशा की तरह दो सवाल, जिनके जवाब आपको सोचना है और उनके उत्तर आपको हम बताएंगे कार्यक्रम के अंत में।
1: तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न ये है कि भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है,
0: और आज का दूसरा प्रश्न है कि UPI का पूरा फुल फॉर्म क्या है।
1: तो दोस्तों, इन सवालों के उत्तर सोचिए जो कि हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे।
0: और अब वक्त है आज के पहले गीत का, तो चलिए सुनते हैं गीत। सुनिए, मुस्कुराइए और बने रहिए युववाणी के साथ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसका नाम है एक ही फिल्म से।
2: और इस सेगमेंट में हम एक ही फिल्म के अलग अलग पहलुओं पर बात करते हैं और सुनते हैं उसी फिल्म के गीत। तो दोस्तों, आज की फिल्म है 2005 में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा

0: बरसात। नाम सुनते ही जैसे बारिश, प्यार और संगीत एक साथ याद आ जाते हैं। हिंदी सिनेमा में बारिश का रिश्ता हमेशा से प्रेम कहानियों के साथ रहा है और इस फिल्म ने भी उसी एहसास को बड़े पर्दे पर पेश करने की कोशिश की।
1: बिल्कुल, इस फिल्म का निर्देशन किया था सुनील दर्शन ने, जो उस दौर में पारिवारिक और रोमांटिक फिल्मों के लिए जाने जाते थे। उनकी फिल्मों में रिश्तों की भावनाएं, संगीत और बड़े कैनवस पर दिखाई गई प्रेम कहानियां अक्सर देखने को मिलती थी।
0: फिल्म की स्टारकास्ट भी काफी दिलचस्प थी। मुख्य भूमिकाओं में थे बॉबी देओल, प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बसु। तीनों कलाकार उस समय अपने करियर के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे थे। बॉबी देओल रोमांटिक हीरो की छवि के साथ दर्शकों के बीच लोकप्रिय थे, जबकि प्रियंका चोपड़ा लगातार नई और अलग भूमिकाओं के जरिए अपनी पहचान को मजबूत कर रही थी।
1: और बिपाशा बसु की बात करें तो उन्होंने अपने व्यक्तित्व और स्क्रीन प्रेजेंस के दम पर उस दौर में एक अलग ही जगह बनाई हुई थी। और यही वजह थी कि जब ये तीनों कलाकार एक साथ पर्दे पर आए तो दर्शकों की उत्सुकता बढ़ना भी स्वाभाविक था।
0: एक रोचक बात ये भी है कि बरसात शीर्षक हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहले से ही बहुत प्रसिद्ध रहा है। 1949 में राज कपूर और नरगिस अभिनीत एक क्लासिक फिल्म भी इसी नाम से आई थी। हालांकि 2005 की बरसात उसकी कहानी से बिल्कुल अलग थी और नई पीढ़ी के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी।
1: सही कहा, दरअसल ये फिल्म उस दौर की उन प्रेम कहानियों में शामिल थी जब बॉलीवुड में विदेशों की लोकेशंस, बड़े संगीत एल्बम्स और भावनात्मक रिश्तों को केंद्र में रखकर फिल्में बनाई जा रही थी। बरसात भी उसी दौर का प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आती है।
0: और जब हम इस फिल्म की बात करते हैं तो तनिष्का, उसके संगीत का जिक्र किए बिना बात अधूरी रह जाती है। रिलीज से पहले ही इसके गीत लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए थे। रेडियो, संगीत चैनलों, कैसेट सीडी की दुकानों में इसके गानों की काफी चर्चा थी।
1: और यही तो उस समय की खास बात थी। कई बार फिल्म रिलीज होने से पहले ही उसका जो संगीत था वो लोगों के दिलों तक पहुंच जाता था और दर्शकों के मन में फिल्म के लिए एक अलग ही उत्सुकता पैदा कर देता था। बरसात के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
0: तो साथियों, आज के इस सफर में हम फिल्म की कहानी, उसके किरदार, संगीत और उससे जुड़ी कई दिलचस्प बातों पर चर्चा करेंगे। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो यकीनन आपकी यादें ताज़ा होंगी, और अगर नहीं देखी है तो उम्मीद है कि ये बातचीत आपको उस फिल्म देखने के करीब ले जाएगी।
1: तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है इस फिल्म के पहले गीत का। गीत सुनिए और उसके बाद हम लौटेंगे बरसात की कहानी और उसके किरदारों के साथ।

0: तो साथियों, अभी आपने सुना बरसात फिल्म से गीत। अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की, जिसके इर्द गिर्द पूरी फिल्म बुनी हुई है।
1: फिल्म की कहानी का केंद्र है आरव, जिसका किरदार निभाया है बॉबी देओल ने। आरव एक ऐसा युवा है जो प्यार को सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि विश्वास और समर्पण का रिश्ता मानता है। किस्मत उसे विदेश ले जाती है, जहां उसकी मुलाकात होती है एक ऐसी लड़की से जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देती है।
0: और इस लड़की के किरदार में है बिपाशा बसु। दोनों के बीच प्यार पनपता है और सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा लगता है, लेकिन अक्सर फिल्मों की तरह जिंदगी भी सीधे रास्ते पर नहीं चलती। एक गलतफहमी, कुछ हालात और कुछ अनकहे सच दोनों को अलग कर देते हैं।
1: और फिर यहीं से ये कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। आरव की जिंदगी में आती है काजल, जिसका किरदार निभाया है प्रियंका चोपड़ा ने। काजल का स्वभाव बिल्कुल अलग है, टिपिकल इंडियन गर्ल, संवेदनशील, समझदार और रिश्तों को निभाने वाली। वो आरव की जिंदगी का हिस्सा तो बनती है, लेकिन उसके दिल में अब भी कुछ अधूरी यादें बाकी है।
0: यही बात इस फिल्म को एक सामान्य प्रेम कहानी से थोड़ा अलग बनाती है। यहाँ सिर्फ ये सवाल नहीं है कि नायक किसे चुनता है, बल्कि यह भी है कि क्या प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम है या कभी कभी त्याग भी प्रेम का ही एक रूप होता है।
1: और कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, दर्शक भी हर किरदार के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने लगता है। किसी की मजबूरी गलत नहीं लगती, किसी का इंतजार बेकार नहीं लगता और किसी का प्यार अधूरा होकर भी सच्चा महसूस होता है।
0: उस दौर की रोमांटिक फिल्मों की यही खासियत थी, कहानी में भावनाओं को समय दिया जाता था, किरदारों को समझने का मौका मिलता था और रिश्तों को धीरे धीरे परत दर परत खोला जाता था। शायद इसी वजह से उस समय की कई प्रेम कहानियां आज भी याद की जाती है।
1: और फिल्म में विदेशों की खूबसूरत लोकेशंस भी कहानी का एक खूबसूरत हिस्सा बनती है। बर्फ से ढके पहाड़, हरियाली, झीलें और बारिश के सीन्स रोमांस को और ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि प्रकृति भी इन किरदारों की भावनाओं के साथ चल रही है।
0: और अगर आपने गौर किया हो दोस्तों, तो इस फिल्म में बारिश सिर्फ एक मौसम नहीं है, कभी वह नए रिश्ते की शुरुआत बनती है, कभी बिछड़ने की गवाह और कभी फिर से मिल जाने की उम्मीद। शायद इसी वजह से फिल्म का नाम बरसात रखा गया है तनिष्का।
1: बिल्कुल चित्रा। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है, कौन सा रिश्ता अपनी मंजिल तक पहुंचता है और कौन सी भावनाएं अधूरी रह जाती है, ये जानने के लिए तो आपको फिल्म देखनी होगी। लेकिन उससे पहले सुनते हैं बरसात का एक और खूबसूरत गीत, जो इस कहानी की भावनाओं को और गहराई से महसूस कराएगा।
2: He loves me. He loves me not. He loves me.

0: तो साथियों, आप सुन रहे हैं आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट एक ही फिल्म से, और आज हमारे साथ है फिल्म बरसात का सुरीला सफर। कहानी की बात तो हमने अब तक कर ली, लेकिन किसी भी रोमांटिक फिल्म की पहचान उसके संगीत के बिना पूरी नहीं होती।
1: बिल्कुल, अगर 2000 के दशक की शुरुआत की रोमांटिक फिल्मों की बात करें तो संगीत उसका सबसे मजबूत पक्ष हुआ करता था। बरसात भी उन फिल्मों में शामिल है जिसकी गीत रिलीज से पहले ही लोगों की जुबान पर चढ़ने लगे थे।
0: इस फिल्म का संगीत दिया था मशहूर संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण ने। लगभग 1.5 दशक तक उन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को ऐसी धुनें दी जिन्हें आज भी बड़े प्रेम से सुना जाता है। उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता थी सरल लेकिन दिल को छू लेने वाली धुनें।
1: गीतों के बोल लिखे थे समीर ने। उन्होंने प्रेम, इंतजार और भावनाओं को ऐसे शब्द दिए जो सुनने में सहज लगते हैं लेकिन दिल पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। यही वजह है कि उस दौर के कई गीत आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं।
0: इस फिल्म की एक और खास बात थी इसकी आवाजें। उस समय के कई लोकप्रिय गायकों ने इन गीतों को अपनी आवाज दी और हर गीत का अपना अलग रंग नजर आया। कहीं प्रेम का उत्साह था, कहीं बिछड़ने की कसक, और कहीं दो दिलों के मिलने की खुशी।
1: और अगर फिल्म के दृश्यांकन की बात करें तो निर्देशक ने संगीत को सिर्फ गीतों तक सीमित नहीं रखा। हर गाना कहानी को आगे बढ़ाता है। खूबसूरत प्राकृतिक लोकेशंस, बारिश के दृश्य, रंगों का इस्तेमाल और कलाकारों की सहज अभिव्यक्ति इन गीतों को और भी यादगार बना देती है।
0: दरअसल 2000 के दशक की रोमांटिक फिल्मों की एक पहचान ये भी थी कि लोग फिल्म देखने से पहले उसका संगीत सुन लेते थे। कैसेट, सीडी और एफएम रेडियो के जरिए गीत घर घर पहुंच जाते थे और कई बार ये गीत दर्शकों को सिनेमा घरों तक ले जाते थे।
1: बिल्कुल, और आज भले ही संगीत सुनने के तरीके बदल गए हों लेकिन अच्छी धुनों की उम्र कभी कम नहीं होती। यही कारण है कि बरसात के गीत आज भी रेडियो पर सुनाई देते हैं और पुराने संगीत के शौकीन लोगों को काफी पसंद आते हैं।
0: इसीलिए शायद तनिष्क का ये कहा जाता है कि कुछ फिल्में अपनी कहानी से याद रहती है, कुछ अपने संगीत से, लेकिन बरसात उन फिल्मों से है जहां कहानी और संगीत दोनों एक दूसरे का हाथ थामे साथ चलते हैं।
1: बिल्कुल चित्रा, और अब समय है फिल्म के एक और खूबसूरत गीत का। तो दोस्तों सुनिए ये गीत और उसके बाद कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम जानेंगे बरसात से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य

0: तो साथियों, आप सुन रहे हैं आज का हमारा स्पेशल सेगमेंट एक ही फिल्म से। हमने फिल्म की कहानी की बात की, उसके संगीत पर बात की, तो अब चलते चलते इस फिल्म के कुछ और रोचक पहलुओं पर भी जरा एक नजर डालते हैं।
1: साल 2005 बॉलीवुड के लिए रोमांटिक फिल्मों का एक दिलचस्प दौर था। एक ओर नए कलाकार अपनी पहचान बना रहे थे, तो दूसरी ओर पारंपरिक प्रेम कहानियां भी दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाए हुए थी। बरसात फिल्म भी इसी दौर की एक ऐसी फिल्म थी जिसने रिश्तों, भावनाओं और संगीत को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया।
0: इस फिल्म की एक खास बात ये थी कि इसमें किसी एक किरदार को पूरी तरह सही या गलत नहीं दिखाया गया। हर पात्र अपनी परिस्थितियों और भावनाओं के साथ आगे बढ़ता है। शायद यही वजह है कि दर्शक कहानी को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं।
1: अगर कलाकारों की बात करें तो बॉबी देओल ने अपने सहज और संजीदा अभिनय से आरव के किरदार को जीवंत बनाया। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने भावनात्मक दृश्यों में अपनी अभिनय क्षमता दिखाई। वहीं बिपाशा बासु ने अपने किरदार को आत्मविश्वास और गरिमा के साथ निभाया। यानी तीनों कलाकारों की अलग अलग अभिनय शैली ने इस फिल्म को एक संतुलन दिया।
0: क्या सटीक बात कही है तनिष्का। साथ ही फिल्म के निर्देशक सुनील दर्शन का मानना रहा है कि एक अच्छी प्रेम कहानी सिर्फ संवादों से नहीं बल्कि संगीत, लोकेशंस और भावनात्मक माहौल से बनती है। शायद यही कारण है कि बरसात के कई दृश्य आज भी उसके गीतों के साथ याद किए जाते हैं।
1: समय के साथ फिल्मों को देखने का अंदाज तो बदलता ही रहता है, लेकिन कुछ फिल्में अपने संगीत की वजह से बार बार लौटकर श्रोताओं और दर्शकों के बीच आ जाती है। बरसात भी उन्हीं फिल्मों में से एक है जिसके गीत आज भी पुराने संगीत प्रेमियों की पसंद है।
0: और यही तो हिंदी सिनेमा की खूबसूरती है। एक फिल्म सिर्फ 2.5 घंटे की कहानी नहीं होती बल्कि उसमें संगीत, अभिनय, लेखन, छायांकन और न जाने कितने लोगों की मेहनत शामिल होती है। जब ये सभी पहलू एक साथ आते हैं तब बनती है एक यादगार सिनेमाई यात्रा।
1: उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये सफर आपको पसंद आया होगा। अगर आपने बरसात फिल्म पहले देखी है तो शायद कुछ यादें फिर से ताजा हुई होंगी, और अगर नहीं देखी है तो अगली बार इसके गीत सुनते हुए इसकी कहानी भी जरूर याद आएगी।
0: आइए जाते जाते सुनते हैं फिल्म बरसात का एक और सुरीला और यादगार गीत। फिर मुलाकात होगी एक ही फिल्म से अगले अंक में, एक नई फिल्म और उससे जुड़ी नई कहानियों के साथ।

0: चलिए दोस्तों, अब वक्त हो गया है उन दो सवालों के जवाब जानने का जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे पूछे थे।
1: तो दोस्तों, आज का पहला सवाल था कि भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका जवाब है नाविक, यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नेविगेशन सिस्टम GPS है, जिसे अमेरिका ने विकसित किया है। वहीं नाविक भारत की अपनी स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है, जिसे इसरो के द्वारा तैयार किया गया है। इसे खास तौर पर भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत सटीक जानकारी देने के लिए बनाया गया है।
0: और साथियों, आज का दूसरा सवाल था कि UPI का पूरा नाम क्या है। इसका सही जवाब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आज हम सब अपने मोबाइल से कुछ ही सेकंड में पैसे भेज सकते हैं या मंगवा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक सुरक्षित डिजिटल भुगतान प्रणाली काम करती है, जिसे NPCI ने विकसित किया है। ये भारत के डिजिटल परिवर्तन की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानी जाती है। कई देश भारत के इस सिस्टम में रुचि दिखा रहे हैं और इसे अपनाने की दिशा में काम भी कर रहे हैं।
1: तो दोस्तों, अगर आपने दोनों जवाब सही दिए थे तो आपको बहुत बहुत बधाई, और अगर आपके जवाब सही नहीं भी थे तो कोई बात नहीं, युवाणी के साथ हर दिन आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा।
0: और अब एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात, बरसात का मौसम है, फुहारे जितनी सुहानी लगती है सड़कें उतनी ही फिसलन भरी हो सकती है।
1: तो इसीलिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ज़रा संभल कर चलिए। वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें, और अगर दो पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिए।
0: साथियों, अब घड़ी ने इशारा कर दिया है, तो फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए अब हमें इजाज़त। मैं चित्रा
1: और मैं तनिष्का,
0: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं समीर की शब्द रचना से। नदीम श्रवण का संगीत है, उदित नारायण अलकायाग

0: तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाए। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: आइए श्रोताओं, आपको एक सूचना दे दी। इस गुरुवार दिनांक 9 जुलाई को सवेरे 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है तंत्रिका तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग, कारण, लक्षण और उनका उपचार। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर KS रावत न्यूरोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। आप हमारा यह कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं और इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें, गुरुवार दिनांक 9 जुलाई समय सवेरे 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर से 2710223 और 2710224। एक बार फिर से सुन लीजिए, 2710223 और 2710224। इंदौर का स्टडी कोड है 0731। तो फोन करना ना भूलिए गुरुवार दिनांक 9 जुलाई को समय सवेरे 10:32 से 11:02 तक विविध भारती के FM 101.6 MHz से और मोबाइल ऐप न्यूज जोन AIR से। सूचना समाप्त हुई। फिल्म संगीत में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना आनंद मिलिन का संगीत, अनुराधा पौडवाल पंकज उदास का स्वर, फिल्म का नाम लाल दुपट्टा मलमल का।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अलका याग्निक, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में रंग फिल्म का ये गीत, नदीम श्रवण का संगीत, समीर की शब्द रचना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने लिखते हैं,
1: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
0: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
1: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
0: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई, योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
1: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलौदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
1: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
1: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
0: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
1: जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
1: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
0: श्रोताओ इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
1: जी।
0: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं, आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
1: जी।
0: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
1: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
0: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
1: जी।
0: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
1: जी।
0: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
1: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
0: श्रोताओ इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
1: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
0: अरे वाह ये तो बड़ी रोचक बात है, यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
1: अजीत जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
0: क्यों?
1: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता
0: जी। विमलेश जी श्रोताओ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है
1: जी।
0: जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
1: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
0: जी।
1: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं। लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए
0: जी। तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
0: श्रोताओ आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
0: खेल

0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
1: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
1: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं।

0: बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
1: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
0: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोंस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
0: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
1: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
0: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
1: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
0: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
1: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
0: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
1: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटो नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर नीजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन

0: देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
1: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
0: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
2: कैसे चित्र?
0: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
1: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
0: क्यों नहीं, अभी चलिए।
1: चलिए।
0: आई
1: देखो वेरिंडा, ये अजगर का चित्र।
2: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
1: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
2: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
1: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
0: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
1: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
0: हाँ।
1: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
0: गुड मॉर्निंग, आइए आइए आइए।
1: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
0: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
1: अच्छा अच्छा।
0: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
2: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
0: जी।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
2: वाकई कमाल है।
0: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
1: सचमुच?
2: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
1: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
0: लीजिए, ये आपका हुआ।
1: इसकी कीमत?
0: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
2: सच?
1: धन्यवाद।
3: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
4: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं, एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अंजलि मराठी की गाई चंद गजलें। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं निदा फाजली की लिखी इस गजल से।

श्रोताओं, इस समय आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आइए कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं दुष्यंत कुमार की लिखी ये गजल, आवाज है अंजलि मराठी की।

दुष्यंत कुमार की लिखी और अंजलि मराठे की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आइए श्रोताओं, आपको सूचना दे दें, इस गुरुवार यानी कि कल 9 जुलाई को सवेरे 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है तंत्रिका तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग, कारण, लक्षण और उनका उपचार। इस विषय से संबंधित आप अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के एस रावत से पूछ सकते हैं। आप हमारा यह कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं और इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें, गुरुवार दिनांक 9 जुलाई यानी कि कल, समय सवेरे 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फोन नंबर से 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731, तो फोन करना ना भूले। 10:32 से 11:02 तक विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत में बलराम मालवीय और साथियों के गाए लोकगीत।

0: लोक संगीत का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7 बजने को है हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्वार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम

0: सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफ खातों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि नियामक प्रोत्साहनों के माध्यम से गिफ्ट सिटी एक वैश्विक विमान लीजिंग और वित्तीय पोषण केंद्र के रूप में उभर रही है। श्री नायडू ने कहा कि 2026 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाइयों के लिए कर छूट की अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। यह मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन के हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए निजी कंपनी और उसके संबंध इकाइयों में स्थानांतरित किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 27 मार्च की मूल्यांकन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। यह योजना खाड़ी देशों के उन नियमित विद्यार्थियों के लिए थी जिनकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण रद्द हो गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार और CBSE से जवाब मांगा है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आज शाम एक इमारत ढह गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर यही आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आइए श्रोताओं, आपको बता दें हमारी आज की सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 7:20 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में आप जानेंगे कृषक जीवन कल्याण योजना के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे अर्चना मुकाती का कविता पाठ और कुछ घरेलू नुस्खे और घरेलू व्यंजन। सुर्खियों में ये न्यूज रील रात्रि 8 बजे भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 8:15 पर होगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। चित्रगीत का समय रहेगा रात्रि 9:15 पर और 9:30 पर हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम चर्चा का विषय है परिधि का एकांत। प्रभु जोशी की प्रस्तुति वाला ये रूपक सुनना ना भूलें रात्रि 10 बजे और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे अभिषेक व्यास का गिटार पर बजाया राग यमन। श्रोताओं, ये आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा थी और आइए अब जानिए कल के मुख्य कार्यक्रम। कल सवेरे 6:35 पर खेती की बातें में तुलसी दरगैया हमें वर्षा जल संचयन के बारे में जानकारी देंगी। 7:20 पर आप सुनेंगे ज्ञान दर्शन और 7:35 पर सुनिएगा सुनहरे पल। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हम रिले करेंगे भोपाल केंद्र से। कल सवेरे 8:30 पर तारा सिंह डोंडरे के गाए लोकगीतों का आनंद लीजिएगा और कल सवेरे ही 9 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत।

गीत कलाकार होंगे पंकज उदास। कल सवेरे 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित पनीलाल का गाया ख्याल गायन, राग होगा साबेरी तोड़ी। 10 बजे अनुप्रसारित होगा जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मन भावन। और आइए अब आपको हमारे भोपाल केंद्र के कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको देंगे। 12 बजे फिल्म संगीत, 12:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम संग्रहालय से। कल दिन में 1:30 पर सुनिएगा लोक संगीत और सुगम संगीत का समय रहेगा कल दोपहर 1:45 पर। हमारी शाम की सभा में 5 बजे होगा युववाणी कार्यक्रम और 5:45 पर फिल्म संगीत। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का समय रहेगा शाम 6 बजे। सुगम संगीत में कल आप सुनेंगे 6:30 पर आनंदीलाल भावेल के गाए मिताली सिंह की गाई चंद गजलें और आनंदीलाल भावेल की गाई लोक गीत आप सुनेंगे 6:45 पर। कल शाम 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम प्रसारित होगा और रात्रि 8 बजे भोपाल से आप सुनेंगे सुर्खियों में। दिल ने फिर याद किया ये कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 पर। चित्रगीत का समय रहेगा रोजाना की तरह रात्रि 9:15 पर। 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मन भावन। कल रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित वसंतराव देशपांडे का गाया ख्याल गायन, राग होगा जय जयवंती। तो श्रोताओं, ये थे हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, प्रतीक्षा करें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा पूरी कर ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्थान किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने धार जिले के पीथमपुर में लियुगोंग इंडिया के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया और दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो को लेकर की समीक्षा, कहा अच्छी बारिश से वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या घटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे के पहले चरण के तहत इंडोनेशिया की सफल यात्रा पूरी कर दूसरे चरण के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो ने खुद एयरपोर्ट पर उन्हें विदाई दी। इस दौरे में ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल प्रणालियों से जुड़े रक्षा समझौते हुए, जिससे दोनों देशों के बीच सामरिक और रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है। ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने योग्याकार्ता स्थित करीब 1000 साल पुराने परमानंद मंदिर में पूजा अर्चना की और राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मिलकर मंदिर के पुनर्स्थापन प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव से अपने आध्यात्मिक जुड़ाव का जिक्र करते हुए वड़नगर, सोमनाथ और काशी विश्वनाथ का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि केदारनाथ धाम, उज्जैन महाकाल लोक के बाद अब परमानंद मंदिर के पुनर्निर्माण से जुड़ना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। वे भुवनेश्वर में समुद्री मत्स्य संसाधनों से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ओयूटी में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से जुड़े दस्तावेज का लोकार्पण भी होगा। इसके बाद वे नाइसर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह खोरधा में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरदार सरोवर बांध परियोजना की लागत को लेकर 3 दशक से लंबित विवाद सुलझ गया है, जिसके तहत अब मध्य प्रदेश गुजरात को 217 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश के सभी जिलों में छोटे आईटी पार्क विकसित करने के साथ ही डेटा सेंटर उन्नयन के लिए 800 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। वहीं उज्जैन के निकट डोंगला वेदशाला के विकास कार्यों के लिए 39 करोड़ रुपए और नमो हरित नगर योजना के तहत 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपए से नगर वन विकसित करने का निर्णय भी लिया गया है।
1: पर्यावरण से संबंधित नई योजना बनाई जा रही है, वह योजना है नमो हरित नगर योजना, जो हर नगर के अंदर नगर वन बनाने हैं पर्यावरण संतुलन के लिए। उसके लिए नमो हरित योजना में अगले 5 सालों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वन बने, नगर वन जो बने, उन वनों में स्थापना के समय भी CSR स्थानीय जन भागीदारी की राशि जो मिलेगी उसका बराबरी का राशि राज्य सरकार वहन करेगी। प्रति वर्ष 5 सालों तक उनको मेंटेनेंस की राशि भी राज्य सरकार देगी।
0: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए विनिर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण कंपनी गुआंगशी लियुगोंग मशीनरी की भारतीय इकाई 272 करोड़ रुपए के निवेश से यह संयंत्र स्थापित कर रही है।
2: इंडस्ट्रियों का एक तरह से ग्रोथ इंजन पूरे प्रदेश में माने तो वो धार जिला है। आज हेलियन ग्रुप की नई यूनिट 272 करोड़ की लागत से नई यूनिट का लोकार्पण, दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है, और भारत के अंदर ये सभी संभावना है जिसके आधार पर उसकी विकास दर बता रही, और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके वो सभी संभावनाओं पे काम कर रहा है जिसकी आज दरकार है।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि नया संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में यहां हर साल 6500 निर्माण उपकरणों के उत्पादन की क्षमता होगी, जिसमें मुख्य रूप से एक्सकेवेटर बनाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हवाई अड्डों की सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ यह बैठक की। श्री शाह ने सभी हवाई अड्डों पर स्वचालित एक्सरे ट्रे सिस्टम लगाने के निर्देश दिए। एयरो ब्रिज और बैगेज ड्रॉप सुविधा बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 2027 तक सभी राज्यों में विदेशी पंजीकरण कार्यालय शुरू होंगे। अगरतला और जेवर हवाई अड्डों पर जल्द आवर्जन जांच चौकी शुरू करने को भी कहा गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में वर्षा की स्थिति पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के प्रभाव पर हुई समीक्षा बैठक में श्री चौहान ने बताया कि जून में 33% बारिश की कमी थी, जो जुलाई में घटकर 24% रह गई है। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 350 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल से कम है। मंत्री ने किसानों को मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम पानी वाली फसलें बोने की सलाह दी है।
4: अल नीनो के कारण जो कृषि की परिस्थितियां पैदा हो रही है, उस पर लगातार हमारी नजर है। अभी हाल में 3-4 दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, कई राज्यों में बारिश हुई है।

0: और पहले जो 262 जिले कम बारिश वाले थे उनकी संख्या घटकर 178 रह गई है। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह, क्योंकि अब देर हो जाएगी, तो मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम अवधि की फसल जो कम समय में आ जाती है उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
1: धार वन मंडल ने जनवरी से मई 2026 के बीच वन भूमि संरक्षण अभियान चलाकर करीब 590 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। सबसे ज्यादा जमीन बाघ परिक्षेत्र में छुड़ाई गई है, जिसके बाद धार, टांडा, मांडव, सरदारपुर, कुक्षी और धामनोद का नंबर आता है। इस मुक्त कराई गई जमीन पर अब सागौन के पौधे लगाकर पुनर्वनीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग भी दी गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कामकाज की समीक्षा की। सीईओ आयुष्मान अरविंद कुमार शाह ने बताया कि प्रदेश में अब तक करीब 5,86,00,000 आभा आईडी बनाई जा चुकी हैं, जबकि लगभग 20,000 अस्पताल और 18,000 डॉक्टर नर्स डिजिटल रजिस्ट्री से जुड़ चुके हैं। प्रदेश के 533 अस्पतालों में स्कैन एंड शेयर सुविधा से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा ओपीडी टोकन जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय और निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग 8 से 15 जुलाई तक प्रवेश मेला आयोजित कर रहा है। यह हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, जिसमें विद्यार्थियों को एक ही जगह पर पंजीयन, च्वाइस फिलिंग, दस्तावेज सत्यापन और शुल्क भुगतान जैसी सुविधाएं मिलेंगी। राजधानी भोपाल में दवा दुकानों पर सख्ती की गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने शहर के कई मेडिकल स्टोर्स की अचानक जांच की। जांच में गड़बड़ी मिलने पर 32 मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की गई है। बिना फार्मासिस्ट दवा बेचने वाले 2 स्टोर्स का लाइसेंस रद्द किया गया। डॉक्टर के पर्चे के बिना दवा बेचने पर 1 स्टोर का लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। इसके अलावा 8 स्टोर्स के लाइसेंस सस्पेंड कर 21 दुकानदारों को नोटिस दिया गया है। भोपाल में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र से 2 कैनो खिलाड़ियों का चयन हुआ है। एल नेहा देवी और हर्षवर्धन सिंह शक्तावत अब भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। दोनों खिलाड़ी 2026 आईसीएफ कैनो स्प्रिंट और पैरा कैनो वर्ल्ड कप में खेलेंगे। ये प्रतियोगिता 9 से 12 जुलाई तक कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में होगी। कैनो स्प्रिंट एक रोमांचक और प्रतिस्पर्धी जल क्रीड़ा है, जिसमें एथलीट शांत या समतल पानी पर विशेष रूप से डिजाइन की गई नावों में एक सीधी रेखा में कम दूरी की रेस लगाते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्योपुर कलेक्टर शीला दाहिमा ने जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर सभी बेड पर बच्चों को भर्ती करने और फायर सेफ्टी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। खंडवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय शिक्षा दिवस पर भारतीय ज्ञान परंपरा एवं चरित्र निर्माण विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर में राष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन नागानंद नाटक की पृष्ठभूमि और रस सिद्धांत पर व्याख्यान हुआ। देवास जिला चिकित्सालय में विश्व क्लब फुट माह के तहत जनजात पैर के तिरछेपन से पीड़ित बच्चों की पहचान कर उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। आगरमालवा कलेक्टर ने 14 जुलाई से शुरू होने वाले दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान को गंभीरता और आपसी समन्वय से संचालित करने के निर्देश दिए। सीहोर में सेफ क्लिक अभियान 2.0 के तहत आज भैरुंदा में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अशोकनगर में स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी में विद्यार्थियों को रोजगार परक और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिए कई नवाचारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और झाबुआ में शासकीय विद्यालय पिपलिया पारा रोड और आंगनवाड़ी केंद्र का कलेक्टर ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम व्यू 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनवा वाली अपनी सगली बेण हो न साथेज अपना सगला भाई उनके भारती की राम राम। बेण हो बात करा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना की, तो यह मध्य प्रदेश सरकार की किसान भाइयों सारू बनाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इन योजना से किसान भाई न साथेज खेती किसानी करने वाला मनक सारू चली गई एक क्या असी कल्याणकारी योजना है, जिनमें इनके अनुदान राशि दी जावे है। इन्हीं योजना को मुख्य उपदेश किसान भाई हों जो खेत में अपनों खेती किसानी को काम करे, उन्हीं बखत उनकी मृत्यु या किसी कारण से वे अपंग हुई जावे, उन्हीं दशा में उनके आर्थिक सहायता देनो इन्हीं योजना को काम होवे है। इन्हीं योजना को लाभ उनाज मनखे मिले है जो मध्य प्रदेश को किसान होवे, साथे जो कृषि आधारित रोजगार पाने वालों मनक होवे। इन्हीं योजना में किसान भाई के सरकार द्वारा सहायता दी जावे है, जैसे कई दुर्घटना में अगर उनकी मृत्यु हुई जावे तो उनके आर्थिक सहायता में सहायता राशि दी जावे है। दुर्घटना में अपंग होने पे, दुर्घटना में अंग भंग होने के बाद घनों अपंग होने पे या सहायता राशि दी जावे है। मृत्यु होने पे अंत्येष्टि अनुदान राशि भी इमें दी जावे है। इसमें जो आर्थिक सहायता दी जावे है वह कद दी जावे है, जैसे कि अपना किसान भाइयों कृषि यंत्र को उपयोग कृषि कार्य सारू करी रहा है, उन्हीं दफे अगर उनकी कोई दुर्घटना हो जावे तो यह योजना को उनके लाभ मिल सके है। सिंचाई सारू कुओं या हैडपम्प खोदती वक्त, ट्यूबवेल को काम करती बखत करंट लगने से, खेत में काम करती बखत खेत में डली बिजली की लाइन से करंट लगने पे, खेत में जब दवाई को छिड़काव अपना भाइयों करे उन्हीं बखत अगर कई दुर्घटना हो जावे तो आर्थिक सहायता उनके मिले है। साथ ही साथ मंडी में कृषि यंत्र या बोरी के उठाती बखत अगर कोई दुर्घटना हुई गई, मंडी परिसर में ट्रैक्टर टाली या बैलगाड़ी अगर पलटी खाई जावे ने उका से कोई दुर्घटना या क्षति हुई जावे तो यह सहायता राशि उनके दी जावे है। ने साथेज खेत से घर ने घर से खेत आती जाती दफे कोई दुर्घटना होने पे, पेड़ की छटाई करती बखत, पशु की रखवाली करती बखत, इन सब में से कभी कोई भी दुर्घटना अपना किसान भाई उनका साथ होवे तो वह इन्हीं योजना को लाभ ली सके हैं। देखो भाइयों, इको लो इन्हीं योजना को लाभ लेने सारू इको फार्म भरने ने साथ साथ वे जो दस्तावेज लागे नहीं वे है पासपोर्ट साइज को फोटो, आधार कार्ड, चिकित्सक प्रमाण पत्र, अपंगता होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु होने पे और पासबुक की प्रति, आवेदन दुर्घटना होने का बरस का भीतर मतलब एक बरस का भीतर करना चाहिए, मतलब अगर एक बरस बीती गया हो तो इसको लाभ अपना किसान भाइयों नहीं ले सकेगा। एका सारू एक साल का वेला पहला अपना के एको आवेदन कर देना चाहिए और साथेज इको सारू जो आवेदन पत्र आए नहीं ओके भर दो और साथ ही साथ ये जो दस्तावेज है वे भी ओमें लगाई दो और कलेक्टर ऑफिस में आ जाइए के एक जमा कर दो, तो 7 दिन बाद वे सारी जांच पड़ताल करेगा, पूछताछ करेगा और उनके सही लगेगो तो वे इके मतलब कह देगा कि हाँ ये सही है, तो फिर आपके सहायता राशि अनुदान में मिल सकती है। ने देखो आज बुधवार को दिन है तो गजानन गणपति के मनावा आने सुना मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री को गायो यो लोकगीत।

0: बेनुन अभी अपन ने मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री को गायो यो लोकगीत सुनियो ने गजानन के तो मन ही लियो ने अब सुनी लेवा पर्यावरण किसान और बेटी पे आधारित कविता पाठ। कविता कीरी है अर्चना मुकाती, तो सुना कविता पाठ।
1: नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच आपकी चहेती कलाकार अनीता आनंद मुकाती फिर हाजिर है अपनी नई रचनाओं के साथ में। तो सुनिएगा। निगाहों दिल के ख्यालात जान लेता है, मेरी खामोशी के जज्बात जान लेता है।

कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो कलियों को मसल देंगे, कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो कलियों को मसल

दोस्तों, इसके बाद मैं हमारी जीवनदायिनी माँ नर्मदा पर आधारित कुछ पंक्तियाँ हैं हाजिर करती हूँ, सुनिएगा।

बेनुन, अभी अपन ने अर्चना मुकाती की या कविताएं सुनी ने, आप सुनी लेवा यो लोकगीत जिसे गायो है बेन उषा रायकवार ने, तो सुना यो लोकगीत।

0: बेणुन अभी अपन ने उषा रायकर को गायो यो लोकगीत सुनियो ने अब सुनी लेवा कविता पाठ जिखे कीरी है अनीता मुकाती। तो सुना यो कविता पाठ।
1: मैं श्रीमती अर्चना हृदय मुकाती धार मध्य प्रदेश से और मेरी जन्म स्थिति माखन नगर बाबई से है और मैं आपके सामने सरस्वती वंदना से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करूंगी।

चूंकि मैं माँ अहिल्या की नगरी इंदौर में हूँ और मैं कुछ अपनी पंक्तियाँ माँ अहिल्या को समर्पित करना चाहती हूँ, आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। मालवा प्रांत साम्राज्य की देवी, मालवा प्रांत साम्राज्य की देवी, मात अहिल्या नमन तुम्हें।

समक्ष पर्यावरण पर कुछ अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करूंगी। आपका सहयोग चाहिए मुझे। पेड़ों की छाव में ठहरा हुआ सवेरा है। पेड़ों की छाव में ठहरा हुआ सवेरा है। पत्तों पर ओस का चमकता बसेरा है। पत्तों पर ओस का चमकता बसेरा है। नदियों की लहरों में गीतों की रवानी है। नदियों की लहरों में गीतों की रवानी है। धरती की सांसों में बस्ती कहानी है। धरती की सांसों में बस्ती कहानी है। हवा जब फूलों की खुशबू पहनती है हर सूनी राह भी मुस्कान गढ़ती है। धूप पत्तों पर सुनहरे गीत लिखती है। ओस की हर बूंद मोती सी चमकती है। जब वृक्ष अपनी बाहें आकाश तक फैलाते हैं थके हुए परिंदे भी आसियाना पाते हैं। मिट्टी की सौंधी महक जब मन को छू जाती है हर विखरी हुई उम्मीद फिर से खिल जाती है। प्रकृति की गोद में ऐसा सुकून मिलता है जैसे हर धड़कन को अपना जुनून मिलता है। धरती का श्रृंगार यूं ही बना रहे सदा। हरियाली का उत्सव हम सभी मनाते रहें सदा। अब मेरी कुछ पंक्तियां जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, हमारी प्रकृति में जिन्होंने संपूर्ण अपना पसीना समर्पित किया है, अपना अस्तित्व समर्पित किया है, ऐसे में जय जवान जय किसान को अपनी कुछ पंक्तियां अर्पित करती हूँ। माटी उसके चरण चूमकर अन्न दीप बन जाती है। सूखी डाली भी उसके श्रम से हरियाली अपनाती है। वह सोना धरती से गढ़ता फिर भी निर्धन कहलाता है। अपने हिस्से की खुशियों को जग के द्वार चढ़ाता है। जब भी थाली में रोटी हो तुम उसका नाम पुकारो। उसके श्रम के हर कण को तुम श्रद्धा से अपनाओ। ना राजा ना सेनापति ना महलों का अधिकारी है फिर भी उसके कंधों पर ही टिकी है दुनिया सारी। धरती माँ का वह मौन ऋषि तप जिसका निरंतर चलता मौसम की अग्नि परीक्षा में आपने देखा है आपने देखा है कि कभी बारिश हो रही है, कभी ओले गिर रहे हैं, कभी पानी बरस ही नहीं रहा है, लेकिन किसान ऐसा एक मानव है जो कि कभी भी अपने विश्वास पर अडिग रहता है, हमेशा अपने कंधों पर पूरे देश का भार लिए रहता है। मौसम की अग्नि परीक्षा में विश्वास अडिग ही रखता। हल से रेखाएं खींच के जो भाग्य नया है लिखता बंजर सीने में भी जीवन का मधुर संगीत जगाता।

जगाता। नव से ऊंचा उसका साहस, नव से ऊंचा उसका साहस, सागर सा उसका मन होता, सागर सा उसका मन होता, एक दाने के मुस्कान हेतु, एक दाने के मुस्कान हेतु जीवन भर अर्पण होता, जीवन भर अर्पण होता। पूरा अपना जीवन किसान समर्पित करता है खेतों में अन्न को उगाने में, ऐसे किसान को कुछ मेरी पंक्तियां समर्पित हैं। अब मैं आपके समक्ष भारत के लिए पंक्तियां अर्पित करती हूं।

0: अब मेरी पंक्तियां कुछ नारियों के लिए समर्पित हैं। हर राह नई है नारी, हर राह नई है नारी, चलना तो पड़ेगा। हर राह नई है नारी, चलना तो पड़ेगा। मिलेगी हर मंजिल तुझे, मिलेगी हर मंजिल तुझे, श्रम करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। हर राह नई है नारी, चलना पड़ेगा। फूलों से भरी राह न मिलेगी तुझे कभी, फूलों से भरी राह न मिलेगी तुझे कभी। हर राह मिलेगी तुझे कांटों ही से भरी, हर राह मिलेगी तुझे कांटों ही से भरी। घर पाना है, घर पाना है मंजिल, घर पाना है मंजिल, तुझे कांटों से भरी राहों पे चलना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा। मिलेगी हर मंजिल तुझे, श्रम करना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा।
1: अभी अपन ने अर्चना मुकाती से या कविता पाठ सुनियो। ने देखो भाई बहनों, मंडी का भाव आया है तो अपना भाई बहनों के मंडी का भाव बता देवा। गऊ जी की आवक री 1799 क्विंटल, भाव रहो 2301 से 3101 और मॉडल भाव रहो 2540। तिल्ली जी की आवक री 1 क्विंटल, भाव रहो 9800, एको अधिकतम भाव और मॉडल भाव भी यो ही रहो। सरसों जी की आवक री 3 क्विंटल, भाव रहो 7600 से, अधिकतम भाव और मॉडल भाव भी एको यो ही रहो। सोयाबीन जी की आवक री 998 क्विंटल, भाव रहो 605 से 7050 और मॉडल भाव रहो 6940। चना जी की आवक री 85 क्विंटल, भाव रहो 3005 से 7005 और मॉडल भाव रहो 3005। मटर जी की आवक री 27 क्विंटल, भाव रहो 2200 से 3750 और मॉडल भाव रहो 3505। मूंग जी की आवक री 69 क्विंटल, भाव रहो 4700 से 7295 ने मॉडल भाव रहो 6275 रुपया। मक्का जी की आवक री 17 क्विंटल, भाव रहो 2018 से 2291 और मॉडल भाव रहो 2201 रुपया। उड़द जी की आवक री 1 क्विंटल, भाव रहो 6900 से, एको अधिकतम भाव और मॉडल भाव भी यो ही रहो। बरबटी जी की आवक री 3 क्विंटल, भाव रहो 2400, एको अधिकतम और मॉडल भाव यो ही रहो। मेथीदाना जी की आवक री 1 क्विंटल, भाव रहो 4000, अधिकतम और मॉडल भाव भी 4000 रहो। तुअर जी की आवक री 1 क्विंटल, भाव रहो 1200 से 6600 और मॉडल भाव रहो 1200। डॉलर जी की आवक री 1883 क्विंटल, भाव रहो 2700 से 9005 और मॉडल भाव रहो 7700 रुपया। और आखिरी में राजमा जी की आवक री 11 क्विंटल, भाव रहो 1100 से 10800 और मॉडल भाव रहो 4005 रुपया। ये तो हीगा मंडी का भाव। ने देखो आज अपन घरेलू व्यंजन में बनाएगा आम की रबड़ी कैसे बने। आम की जो रबड़ी रहनी वह घनी स्वादिष्ट ने मलाईदार बने हैं। इखे बनाने सारू दूध के कम आँच पे उबालनो है ने जब दूध गाढ़ो ही जावे उमें आम को गुदो नाकी ने बस अपना खे इखे अपन बने ही सका। हाँ तो एका सारू जो चीज़ें लागे वा है देखो नी, 1 लीटर दूध ले लो, उमें 3 से 4 बड़ा वाला चम्मच शक्कर नाकी दो और साथ साथ आम, 2 आम लेना है, केसर लेनी है और सूखा मेवा जो तुम्हारे डालना हो, बादाम, काजू, पिस्ता। सबसे पहला तपेली में अपन दूध के निकालांगा, ओके उबलने सारू राखी दांगा और चलाता रहवागा जब तक कि दूध उबली के गाढ़ो नहीं हो जावे। अब गाढ़ो ही गो इनमें शक्कर नाकी देवांगा और जब शक्कर नाकी के थोड़ी देर चलावांगा और फिर गैस बंद करी ने इलायची ने केसर नाकी दांगा और 1-2 घंटे सारू फ्रिज में राखी देवांगा। अब अपना जो आम है नहीं ओका फोतरा छोली ने ओके मिक्सर में पीसी लेवांगा काटी के और जब उको गुदो होएगो नहीं ओके उना जो दूध जो ठंडो होएगो नहीं ओमें मिले दांगा और थोड़ो बहुत कतरी ने टुकड़ा होन उमें मिले दांगा। ऊपर से सूखा मेवा नहा के देंगा और देखो नहीं खाने सारू आम की रबड़ी बनी ने तैयार हो गई, बस एक है खानो है। ने देखो घड़ी की सुई कह रही है कि कार्यक्रम को भी बखत हुई चलियो है, तो अपना भाई बहन उनसे ला विदा ने केवा राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी, मीडियम वेव 462.96 मीटर पर। यह है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। 8:15 होने को है। सुर्खियों में कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और इंडोनेशिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा का पहला चरण इंडोनेशिया की यात्रा के साथ आज समाप्त हुआ है और भारत और इंडोनेशिया के बीच जो कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते हुए हैं, जो कई क्षेत्रों में हुए हैं, चाहे वो रक्षा हो, उद्योग हो, तकनीक हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर संस्कृति, इससे ये स्पष्ट होता है कि जिस तरह से महत्वपूर्ण समझौते दोनों देशों के बीच हुए हैं वो भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को और प्रगाढ़ करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो आज हम प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी कार्यक्रम में जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: कमल जी, आपका इस महत्वपूर्ण चर्चा हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार और सभी श्रोताओं को नमस्कार।
2: सबसे पहला मेरा मूल जो सवाल है वो यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच जो द्विपक्षीय वार्ताएं हुई वो कैसे भारत के और इंडोनेशिया के संबंधों को आगे आने वाले समय में और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और कैसे दोनों देशों के बीच बढ़ता सहयोग, जो खासतौर पर जो इंडो पैसिफिक

0: क्षेत्र है। इसमें न सिर्फ दोनों देशों के अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए, बल्कि यदि हम हिंद प्रशांत के क्षेत्र को देख लें तो उसको भी ध्यान में रखते हुए कैसे रक्षा सहयोग के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में, विज्ञान और तकनीक सहयोग के क्षेत्र में दोनों देश लगातार आगे बढ़े हैं। और इसमें अब ये देखना सुखद है कि इस बार की यात्रा के दौरान जो महत्वपूर्ण MOU साइन हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी डील तो ब्रह्मोस मिसाइल प्लस डील को माना जा रहा है, जिसमें इंडोनेशिया हमारी होम ग्रोन ब्रह्मोस मिसाइल्स को न सिर्फ लेगा बल्कि फिर आगे को प्रोडक्शन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हमारा भागीदार होगा। हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI को लेकर के, सामुदायिक सुरक्षा को लेकर के, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, और हमारे इलेक्टोरल मैनेजमेंट की जो सराहना की है इंडोनेशिया ने, तो EVM मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भी एक बड़ा MOU दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है। और ये न सिर्फ दोनों देशों के बीच के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए और विकास को विस्तार देने के लिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्टेबल बनाए रखने के लिए, प्रॉस्परस और इन्फ्लुएंस फ्री बनाए रखने के लिए ये समझौते आगे चल करके बहुत कारगर साबित हो।
1: प्रोफेसर अंशु जोशी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि भारत और इंडोनेशिया का जो एक, अगर रक्षा सहयोग की हम बात करें तो दशकों पुराना एक साझेदारी जरूर रही है, लेकिन पहले ये खाली एक संयुक्त, एक तरह से ज्वाइंट वेंचर जो होते थे, एक संयुक्त जिसमें कि हम कह सकते हैं एक मैरिटाइम पेट्रोलिंग तक ही सीमित था, लेकिन अब इसे उद्योग तक बढ़ाने की एक पूरी पहल हुई है। तो कैसे जो समझौते हुए हैं ये भारत और इंडोनेशिया के जो रक्षा सहयोग है, खासतौर पर जो उद्योग है और आदान प्रदान है, उसमें और ज्यादा इससे बढ़ोतरी होगी।
0: कमल जी, पहले तो हम ये समझे कि भारत की जो छवि थी वो आज से 11 वर्षों पहले तक रक्षा के क्षेत्र में एक इम्पोर्टर देश की छवि थी। हम जो अपने रक्षा के इक्विपमेंट थे वो दूसरे देशों से इम्पोर्ट करते थे, लेकिन अब 11 वर्षों में ये देखना बहुत सुखद है कि रक्षा के क्षेत्र में हमारी छवि एक एक्सपोर्टर देश की छवि बनी है और हमने अपने यहाँ पर इतने बढ़िया रक्षा प्रणालियों को, अलग अलग अस्त्रों शस्त्रों को विकसित किया है। ऑपरेशन सिंदूर में उसकी चमक और धमक पूरी दुनिया ने देखी। तो अब इंडोनेशिया के साथ भी जब हम रक्षा योग की बात करते हैं तो बात द्विपक्षीय या आसियान जैसे बहुपक्षीय मंचों पर एक ज्वाइंट मिलिट्रल एक्सरसाइजेस की और सामुद्रिक सुरक्षा तक सीमित नहीं रह जाती। एक तो जो ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर के बड़ी डील हुई है, उसको लेकर के भी आगे ये बिंदु देखने को मिलते हैं कि इंडोनेशिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का जो ये पूरा हमारा आह्वान है, मिशन है, इसके तहत जो हम अपने रक्षा क्षेत्र में इक्विपमेंट डेवलप कर रहे हैं उसमें इंडोनेशिया हमारा बड़ा साझेदार बनेगा। इसके साथ आपसी निवेश की भी बात है और जो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इसको सरल बनाते हुए इसमें जो दूसरे औद्योगिक जगत से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको शामिल करने की बात है। तो हम दोनों देशों की ओर देखें तो बड़ी आबादी वाले देश हैं भारत और इंडोनेशिया, तो इससे फिर जो है प्रोफेशनल मोबिलिटी को और एम्प्लॉयमेंट को भी हम मजबूत होते हुए देख सकते हैं। तो ये रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से अलग अलग प्रकार के तकनीकी साझा करने को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, इक्विपमेंट के आदान प्रदान को लेकर के, और इसके अलावा अलग अलग जो हमारे मिनिस्ट्रियल लेवल के डायलॉग शुरू हुए हैं दोनों देशों के बीच में और जो कार्यक्रम होंगे, ये भी हम जोड़ करके देख सकते हैं। जी का
1: तो आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाले पक्ष हैं, वो कितना महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे आने वाले समय में दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में?
0: कमल जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के लिए आज किस तारीख में यदि उसकी शक्ति के संचालक तत्वों को हम देखें तो उसमें उसकी आर्थिक शक्ति का एक बड़ा महत्व होता है। तो जब हम भारत और इंडोनेशिया के द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को, व्यापार की ओर दृष्टि डालें तो विगत कुछ वर्षों में बहुत मजबूत हुए हैं ये संबंध। आज 38 बिलियन USD का लगभग व्यापार है दोनों देशों के बीच में। भारत बड़ी मात्रा में क्रूड पाम ऑयल को इंडोनेशिया से मंगाता है। वहीं हम इंडोनेशिया की ओर देखें तो फार्मास्यूटिकल से लेकर के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तक जो है हम यहाँ से, अपने यहाँ से इंडोनेशिया को भेज रहे हैं। लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में तो विशेषकर जैसे स्टील के क्षेत्र में ये देखना सुखद रहा कि हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल और इंडोनेशिया के जो क्रकाताऊ स्टील है, उन्होंने स्टेनलेस स्टील के स्लैब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए और किस प्रकार से रेयर अर्थ मैग्नेट्स को साथ में को डेवलप कर सकते हैं, इसको लेकर के एक बड़ा समझौता किया है। इसके अलावा आप देखें कि इसमें अलग अलग प्रकार के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल डायलॉग्स को भी शुरू किया गया है। और इसके साथ साथ हम यदि देखें तो व्यापार के क्षेत्र में कैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर बढ़ावा देते हुए फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में हम कैसे उत्पादों के आदान प्रदान को बढ़ा सकते हैं, इसको लेकर के भी समझौते देखने को मिले हैं। तो व्यापार की दृष्टि से निश्चित तौर पर रिश्ते नई उड़ान ले रहे हैं। और द्विपक्षीय के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आसियान का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडोनेशिया हमारे साथ। तो फिर जब ऐसे देश हमारे साथ द्विपक्षीय स्तर पर मजबूती से खड़े रहते हैं तो फिर आर्थिक दृष्टि से, चाहे हम ऐसे व्यापार समझौतों की बात करें या कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने की बात करें, कैपेसिटी बिल्डिंग

0: की बात करें तो वहां फिर आसियान जैसे मंचों पर भी भारत की स्थिति मजबूत होती है।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक परमानंद मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की, तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के बीच हुए सहयोग के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: मुझे पूरा विश्वास है मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
1: तो जो मजबूत ऐतिहासिक संबंध है उनको नई दिशा देने में किस तरह से ये सहयोग भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा, और आज जो प्रधानमंत्री की यात्रा रही परमानंद मंदिर की उस पर भी आप क्या कहेंगी?
0: कमल जी, ये आपने चर्चा में बहुत ही सुंदर आयाम जोड़ा है। और यदि हम भारत के इंडोनेशिया के साथ सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो मैंने आपसे चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि हमारे सभ्यतागत रिश्ते रहे हैं, हिंदू और बौद्ध धर्म की संस्कृति को देखें तो वो हमें इंडोनेशिया में भरपूर दिखाई पड़ती है। उसका ध्वजावाहक के अलग अलग प्रकार के मंदिर हैं, जिस प्रकार से संस्कृत का यहाँ सम्मान है, भारत की अलग अलग भाषाओं का सम्मान है, और इसके साथ हम रामायण और महाभारत की धरोहर को जिस तरह से इंडोनेशिया द्वारा संभाले जाते देखते हैं वो अपने आप में अनोखी है। मुद्रा पर यहाँ की गरुड़ अंकित है, गणेश की पूजा होती है। तो ऐसे में जो ये बहुत महत्वपूर्ण शिव मंदिर है, पुराना शिव मंदिर है, यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री का जाना और भारत द्वारा इस बात का बीड़ा उठाया गया है कि इस पूरा प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार, इसकी तकनीकी सहायता, आर्थिक सहायता भारत करेगा, तो किस प्रकार से नवाचार के माध्यम से नई तकनीकों को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखते हुए भारत आगे बढ़ रहा है, ये एक इसी बात का द्योतक है। तो आज जो प्रधानमंत्री इस प्रसिद्ध शिव मंदिर गए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ वहां पर जीर्णोद्धार के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया, तो ये उसी बात को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, उसका ये एक प्रतीक है। कमल,
1: दोनों देशों ने आतंकवाद को लेकर साझा रुख स्पष्ट किया है, तो क्या कहेंगे इस पर?
0: बिल्कुल कमल जी, भारत का अलग अलग मंचों से ये वर्षों से प्रयास है कि आतंकवाद को पूरा विश्व मिलकर एक मुंह तोड़ जवाब दे। और न सिर्फ भारत, आज विश्व के कई देश, सशक्त देश जैसे कि अमेरिका, आतंकवाद का शिकार बने हुए हैं। और ऐसे में जब भारत, हमारे प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं तो उसमें इंडोनेशिया जैसे देश बहुत सशक्त साझेदार के रूप में खड़े दिखाई पड़ते हैं। द्विपक्षीय स्तर पर भी और बहुपक्षीय स्तर पर हम देखें तो ब्रिक्स के मंच पर, G20 के मंच पर, आसियान के मंच पर, और ये भारत की महासागर डॉक्ट्रिन में जो ये म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांस ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स की बात हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से की थी, इसके पहले सागर की बात की थी, तो इसमें ये सिर्फ हिंद प्रशांत क्षेत्र या हिंद महासागर को सुरक्षित रखने की बात नहीं है, प्रॉस्परस बनाए रखने की ही बात नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं आतंकवाद निरोधी हम कैसे अलग अलग तकनीकें हैं या फ्रेमवर्क्स हैं उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, इसकी भी बात है। और कल हमारे प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में घिरे संकट का समाधान भी सुझाया। उन्होंने बताया कि जैसे भारत टू स्टेट सोल्यूशन की बात करता है, इसको पूरे विश्व को ध्यान से समझना चाहिए और पश्चिम एशिया के देशों को इसे अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ जब आतंकवाद निरोधी जो उपाय हैं उनको जब उन्होंने अपनाने की बात की तो यहाँ पर तकनीकी कहीं ना कहीं सहयोग के स्तर पर, नियमन के सहयोग के स्तर पर, और फिर एक जनता की दृष्टि से भी देखें जिस प्रकार का लोगों का यहाँ से साथ हमको मिलता है, इस बात को मिलता है, इस लड़ाई को मिलता है, तो भरपूर सहयोग इंडोनेशिया का जो है भारत को मिलते हुए दिखाई पड़ता है। भारत के साथ साथ इंडोनेशिया भी इस बात का पक्षधर है कि विश्व में शांति होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, और इसी की बात हमारे प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया की संसद में।
1: इंडोनेशिया में बसे भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3: Our language, I would say, Falizon, Minister of Culture, our language was 50% from Sanskrit. Many of our names are Sanskrit names, and therefore there is this closeness, and we welcome more close cooperation.
1: आखिर में प्रश्न मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे दोनों देशों के बीच 1200 किलोमीटर की एक लंबी समुद्री जो सीमा है वो साझा होती है, तो किस तरह से महासागर विजन और इस तरह के जो समुद्री सहयोग हैं उसमें दोनों देशों की एक मजबूत साझेदारी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है आने वाले समय में?
0: इंडोनेशिया की और दृष्टि करें तो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी एक महत्वपूर्ण या सहयोगी देश है, और महासागर विजन की दृष्टि से भी देखें तो इंडोनेशिया की जब हम लोकेशन को देखते हैं, उसके महत्व को देखते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री सेशल्स की यात्रा पर थे और ये तमाम हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र के जितने ये देश हैं इनकी ओर भारत का ध्यान है, ताकि चीन ने जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी अपनाई, एक नेगेटिव कूटनीति भारत को घेरने के लिए, या इन सामुद्रिक

0: क्षेत्रों में अपना असर्शन दिखाने के लिए उसका कहीं ना कहीं मुकाबला किया जा सके और इन सामुद्रिक क्षेत्रों को किसी भी देश के प्रभुत्व से मुक्त रखा जा सके। इंडोनेशिया इसमें भारत का बिल्कुल साझेदार सहयोगी है इसके रूप में नजर आता है और इस नीति के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के, डिजिटल इंटीग्रेशन को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर के और रक्षा सहयोग को लेकर के बातें भारत करता है और इंडोनेशिया, सेशल्स, मॉरिशस ऐसे देशों को बड़ा अपना लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी प्रदान करता है। तो ये देखना सुखद रहा कि इंडोनेशिया का जो महत्वपूर्ण सबांग बंदरगाह है जो अंडमान निकोबार से बहुत करीब है और यहाँ भारत जो है इस पोर्ट के विकास के लिए अपना आर्थिक और तकनीकी सहयोग देगा, इससे लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज में भी सहायता मिलेगी और भारत को जो जियो स्ट्रेटेजिकली ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो इंडोनेशिया से लगी है इसका अर्ली और टाइमली एक्सेस जो है वो भारत को मिलेगा। वहीं इंडोनेशिया को भारत के सबांग एयरपोर्ट को विकसित करने से व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बड़ा लाभ मिलेगा। तो भारत की जो महासागर नीति है वो ये तमाम लाइक माइंडेड देशों को साथ में लेकर इन समुद्री क्षेत्रों को सुरक्षित रखते हुए, यहाँ की संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए, व्यापार बढ़ाते हुए आगे बढ़ने की है। तो इसमें इंडोनेशिया के साथ एक भविष्य की जो रूपरेखा है वो भारत ने तय कर ली है और अब दोनों देश आगे बढ़ने को तैयार हैं।
1: जी निश्चित तौर पर, और जो भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र है और इसके अलावा जो एक वैश्विक साझा विकास है, इस दिशा में दोनों देशों की साझेदारी निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है और इन समझौतों से इस साझेदारी में और मजबूती मिलेगी। आगे आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा है उस पर भी हमारी नजर रहेगी और उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। प्रोफेसर अंशु जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में जुड़ी और भारत इंडोनेशिया के द्विपक्षीय संबंधों पर आपने विस्तार से अपना विश्लेषण हमारे श्रोताओं के समक्ष रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत आभार कमल जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत और इंडोनेशिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
5: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। सभी रसिक श्रोताओं को मोना ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार।

जीवन में सुख और दुख, मिलन और बिछड़ना, ये सभी भाव मनुष्य के जीवन का हिस्सा हैं। जब अपनों से दूरी बढ़ जाती है, जब कोई सपना अधूरा रह जाता है, या जब यादें दिल को बार बार दस्तक देती हैं, तब संगीत ही वो साथी है जो हमारे मन की अनकही बातों को शब्द देता है। हिंदी फिल्म संगीत में गम और विरह के ऐसे अनगिनत गीत हैं जिन्होंने न जाने कितने दिलों के दर्द को आवाज़ दी है। तो आइए आज इन्हीं भावों से सजे कुछ सदाबहार गीत सुनते हैं। कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

कभी कभी बिछड़ना केवल दो लोगों के बीच की दूरी नहीं होता, बल्कि वो पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। कुछ रिश्ते साथ छूट जाने के बाद भी यादों में हमेशा जीवित रहते हैं। विश्वास टूटने का दर्द शायद सबसे गहरा होता है। जब अपने ही बदल जाएं, तब शब्द कम पड़ जाते हैं और संगीत बोलने लगता है। इसी एहसास को बताता ये नगमा।

दर्द जब शब्दों में उतरता है तो शायरी बन जाता है, और जब सुरों में ढलता है तो हर सुनने वाले का अपना किस्सा बन जाता है। विरह की रातें लंबी ज़रूर होती हैं, मगर इन्हीं रातों में यादों के सबसे उजले चांद निकलते हैं। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई अनकहा दर्द होता है। कुछ आंसू आंखों से नहीं, दिल की खामोशियों से बहते हैं। विरह का सबसे कठिन पल वो होता है जब सामने मुस्कुराना पड़ता है और भीतर दिल चुपचाप टूट रहा होता है।

समय आगे बढ़ता है लेकिन कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती। यह हर मौसम में नए जख्मों की तरह महसूस होती है। विरह केवल आंसू नहीं बल्कि इंतज़ार का दूसरा नाम है। किसी की एक झलक, एक आवाज़ या एक ख़त की उम्मीद में बीतते दिन और रातें, यही विरह की सबसे सच्ची तस्वीर है।

प्रेम का रंग सबसे गहरा और विरह का रंग उससे भी गहरा। जब अपना कोई दूर हो जाता है तो हर धड़कन उसकी याद बन जाती है और सिर्फ पूछने लगती है कि वो कहाँ है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द नहीं मिलते, केवल आंसू उनका परिचय देते हैं। जब कोई अपना बिछड़ जाता है तो हर खुशी भी अधूरी लगने लगती है। यादें कभी दरवाज़ा खटखटाकर नहीं आती, वे तो अचानक किसी खामोश पल में हमारे दिल को भिगो जाती है और फिर एक झरोका बनता है और हम उसमें से झांककर पूछने लगते हैं, क्या ये दर्द हमारे ही हिस्से आना था।

जीवन में सुख और दुख, मिलन और विरह, ये सभी भाव समय के साथ हमारे साथी बन जाते हैं। लेकिन जब इन्हीं भावों को शब्द मिलते हैं तो कविता बन जाती है, और जब सुर मिलते हैं तो अमर गीत इसका रूप ले लेते हैं। कहते हैं अपनों से बिछड़ने के बाद इंसान कभी वैसा नहीं रहता। वो मुस्कुराता तो है, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अधूरापन छिपा रहता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी पूरा नहीं कर पाता। आइए कार्यक्रम के अंत में लिए चलते हैं उस विरह गीत की तरफ, और इस कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए मोना ठाकुर को। ये गीत सुनते सुनते

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 8:45 होने को है। समाचार संध्या आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी और ठीक 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ @9। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य संचिता ओब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
3: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी

0: फसल जो कम समय में आ जाती है उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो से तीन दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
2: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
3: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
4: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95.56 रुपए पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है।

0: पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्स्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युको ने जैस्मीन पाओलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वर्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semi-finals. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit has filed this report.
2: The air in Melbourne buzzed with immense enthusiasm today as the Indian diaspora turned out in full force to welcome Prime Minister Narendra Modi. The high-profile reception was punctuated by a magnificent cultural showcase that beautifully illustrated the deepening cross-continental friendship through the universal language of music and dance. Before the stage came alive with the performances, the Prime Minister briefly interacted with the community members, sharing warm greetings with the gathered diaspora. Following this heartfelt interaction,

आइए अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में समीर की शब्द रचना, नदीम श्रवण का संगीत, फिल्म का नाम है सिर्फ तुम।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चमत्कार फिल्म का गीत, कुमार सानू अलका याग्निक का स्वर, आनंद बख्शी की शब्द रचना, अनु मलिक का संगीत।

चमत्कार फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। प्रतीक्षा करें।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए
1: आत्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जब आसमान से आग बरसती है और नदियाँ रास्ता भूल जाती है, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तिहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार,
4: धन्यवाद।
2: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एल नीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है।
3: एल नीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का, जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, ला नीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स है ये स्लैकन कर जाती है, वीक पड़ जाती है। जब ये वीक हो जाती है तो क्या होता है, जो पानी था वहां जो उसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहां समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग।

0: ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफी सारे बदलाव लेके आता है कि जहां कहीं बारिश होती है पहले वहां सूखा पड़ने लगता है, और जहां सूखा पड़ता है वहां बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है, ये एक तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर, 1000 किलोमीटर दूर के मौसम को और वहां की प्रेशर को, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है, और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मानसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एलिनो था मानसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एलिनो था और मानसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एलिनो होने वाला है। हालांकि अभी जो है इतने ज्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही है, तो ये ठीक है। मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए, तो ऐसा होता तो ये सुपर एलिनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रेडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मानसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कोई कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को, जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके हैं वहां इस मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई, और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
1: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एलनीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एलनीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
2: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है, जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ देन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहां होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र है वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहां बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50 फीसदी के आसपास ही हमारा, जो हम कहते हैं कि अश्योर्ड इरिगेशन कवरेज जो है, जहां पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहां पर हैं अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा, ऐसे में करीब करीब 50 फीसदी जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां, मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में NDMA की मीटिंग हो रही है और मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए, जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं, उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21 फीसदी से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा, जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी है कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है। तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है। तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इन्फॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। मतलब बारिश नहीं होगी, कम होगी, तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो है जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती है, वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होते हैं।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
0: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, और एक चीज हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडेड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको। सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमोसफेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पर भी वार्मिंग होगी, तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है कंटीजेंसी प्लान की, आप महावीर जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
1: प्रभावित होंगे,
0: वो पहले से चिन्हित है। आईसीएआर के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयारी है। 2500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी, और एल नीनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार है। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहां तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने का मतलब पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो समय कर जाती है। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, आईएमडी को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहां हम लोग ये डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध है कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वेराइटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहां का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है, पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहां पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है, मगर ऐसी जगहों पर लगाने हैं मिलेट्स एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पर बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस, यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको, तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब मतलब कि भाई एलिनो है इस बार, मॉनसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय मौसम विभाग एनडीए में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूंगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है, देखिए जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरिगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है वहां कभी फसल नहीं खराब होती। आप देख लीजिए वहां पे यदि बारिश कम हो जाए ना बल्कि फसल और अच्छी होती है क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहां पर, फंगस नहीं आती है और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोइंग कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
1: जी।
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया वर्षा तो सामान्य है सामान्य से ज्यादा है और वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई एंड में मिल गई और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली
0: नहीं मिली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, पर मेरा ही मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगर केन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए। और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरिगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है। एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरिगेशन तो रखे, जैसे ही 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरिगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं। इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स है ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने डेवलप की हैं, बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वेराइटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वेराइटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव के संस्थान है वो हो या फिर प्राइवेट जो कंपनीज है उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या। और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली वट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करें कि इस बार इसको लगाइए पानी भी बचेगा आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहां पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है। इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, AI की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो, और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा।

0: दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए, तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं। जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी, तो वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं या पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स है वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पर कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरीके जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है, तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ, ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है, वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी, लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो एआई के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
2: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है, क्योंकि देखिए दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है, पर हम जो देते हैं एडवाइजरी वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूंगा नहीं अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा, तो वो एक बड़ी अच्छी बात होगी। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है, और आपने कहा फोन, फोन उससे भी मिलता है और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं उसको, वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इम्पोर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता दीजिए फटा देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है ये मुझे लगता है जिसे कहते हैं ना, जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले एक। और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजे, जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता वो अपने बंदों को देगा, दूसरे को ना दे तो उसको भी दे दीजिए, तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच लिया आपके गांव के सब लोगों को तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है, और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है, और ये कियोस्क भी है, और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था, और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इम्पोर्टेंस कम हो गई, मगर मैं अब ये कह रहा हूँ ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है।

0: कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है। तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए, और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए, एक घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है। यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल, मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है, वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी। यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहां हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम स्विंग पे मत जाइए। या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है, तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया और इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में, आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी, तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइजर देते हैं, वेन टू सो, वेन टू हार्वेस्ट, वेन टू इरीगेट, हाउ मच टू इरीगेट, वेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर, वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है, और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है। एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहां से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहां से केमिकल मिलेगी, कहां से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा, और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरीगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरीगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
2: देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरीगेशन है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरीगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पर बोरवेल्स जो है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है वो दुरुस्त हो, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेंट भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है, पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है, और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मॉनसून का क्या होता है कि मॉनसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है कि उसका जो हमारा मॉनसून का पीरियड है जून टू सितंबर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहां उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं, बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। ये जो प्रस्तुत है रूपक परिधि का एकांत प्रस्तुति है प्रभु जोशी की।

वे शताब्दियों से फूलों, तितलियों और खिलौनों के ख्वाबों को पीछे छोड़ती हुई बुनती हैं। अपनी आंखों के डोरों से एक स्वप्न पुरुष का चित्र, और धीमे धीमे खो जाती हैं उसी में।

0: लेकिन यथार्थ की तीखी रोशनी में चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। चारों ओर बिखरी विसंगतियां उलझा देती हैं कल्पना के धागों को। शहनाइयों के स्वर की तरफ से कान फेरते हुए अपनी तमाम हंसियों को एल्बमों की तस्वीरों में छोड़कर वे हो जाती हैं धीरे धीरे चुप और संजीदा। संजीदगी ही बनने लगती है जिंदगी के रास्ते का ये पर्याय।
1: आप विवाहितों से यह प्रश्न क्यों नहीं करते कि उन्होंने विवाह क्यों किया? अविवाहितों से आप ये प्रश्न करते हैं सामान्य तरह कि हम विवाह क्यों नहीं किया?
2: इसके पीछे कारण है कि हिंदू माइथोलॉजी की दृष्टिकोण से ही देखें तो एक यूनिट जो है वो पति और पत्नी को मिलकर बनती है। पुरुष और स्त्री मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। इसलिए हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक यूनिट कंप्लीट होना चाहिए, बनना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा ये अस्वाभाविक लगता है सामाजिक दृष्टिकोण से जब लोग सिंगल यूनिट नहीं बनाते, अकेले रहते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो।

0: कि विवाह के लिए जो प्रयास किया जाता है अर्थात सर्च की जाती है जीवन साथी की, उससे मैं कभी सहमत नहीं रही। वो मुझे कभी अपील नहीं की, मेरी अंतरात्मा को, मेरे दिमाग को, दिल को कभी वो चीज अपील नहीं की।
1: एक वक्त था कि अविवाहित महिलाओं का वर्ग केवल धार्मिक साध्वियों तक ही सीमित था, परंतु समाज में कई स्त्रियां हैं जिन्होंने उम्र भर विवाह न करने का दृढ़ निश्चय किया और उस पर अडिग रहीं। समय कोई भी रहा हो, ऐसी स्त्रियों की संख्या भी कम नहीं रही जिन्होंने विवाह नहीं किया और न ही वे साध्वी बनी। हाल ही में दिल्ली में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 66% शिक्षित कामकाजी महिलाएं विवाह नहीं करने के पक्ष में हैं। ऐसा सर्वेक्षण चौंकाने वाला ही नहीं बल्कि एक नए ट्रेंड का भी सूचक है जो भारत में तेजी से फैल रहा है। हमने इसी विषय को लेकर विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित स्त्रियों से बातचीत की। उनके इस निर्णय के पीछे हमें अनेक कारणों का पता चला। संभवतः पहला कारण जो हमारे सामने आया वो था कच्ची उम्र में किसी पारिवारिक विपत्ति की शिकार हो जाने से समय पर विवाह नहीं हो पाना। परिवार की सारी जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी क्योंकि वे घर की बड़ी सदस्य थीं। उन्होंने छोटे भाई बहनों और मां का संपूर्ण भार खुद वहन किया। इधर 15-16 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला।
2: आपने शादी करना, विवाह करना उचित नहीं समझा शिक्षा पा जाने के बाद?
3: नहीं, क्योंकि उसका कारण यह है कि मेरी वकालत करने की इच्छा थी। मैंने एलएलबी पास किया बीए के बाद, और वकालत करने की इच्छा थी, परंतु हमारे भाई की डेथ होने के कारण भाई का संसार, बच्चे छोटे छोटे थे, 5 साल के 4 साल का 1.5 साल का, तो इससे मेरा निर्णय बदला मैंने वकालत का, और फिर मैं इसमें एजुकेशन के इसमें गई शिक्षिका विभाग में। मैं मिडिल स्कूल में हेडमास्टर की जगह पे थी और 35 साल में नौकरी की, और हर जगह मेरे को स्कूल का कोऑपरेशन वगैरह अच्छा मिला, मैं सक्सेसफुल हो गई।
2: तो आपने भाई के संसार को संभालने के लिए शादी नहीं की?
4: हाँ, मतलब मैं भाई बहन साथ रहे, यानी मैं सर्विस में आई तो जिनकी एजुकेशन नहीं हुई थी उनकी एजुकेशन मेरे साथ में रह के पूरी की, और जो सर्विस में लग गए शादियां हो गई वो अलग चले गए। तो जब तक मेरे भाई बहन की एजुकेशन नहीं हुई, शादियां नहीं हुई, तब तक मेरे साथ में थे। शादियां होने के बाद में अलग चले गए, माता पिता मेरे साथ ही रहे।
1: जिंदगी में इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालते हुए आप अकेली रही हैं, आपने शादी नहीं की, इसके पीछे कोई कारण था या किसी मजबूरी वश?
4: देखिए, जहां तक शादी का सवाल है तो मैं कहना चाहूंगी कि पहले से ही मेरा इससे रुझान नहीं था, और दूसरी बात यह है कि मुझे अपने माता पिता से बहुत लगाव रहा और मैं उनकी देखभाल करना चाहती थी और उनकी जिम्मेदारियां खुद उठाना चाहती थी, और वो शुरू से लेके मैं अकेली, आपने कहा क्योंकि मैंने शादी नहीं की, वैसे मैं कभी अकेली नहीं रही, मेरे माता पिता हमेशा मेरे साथ रहे, जब तक जिंदा थे तब तक मेरे साथ थे, मेरे भाई बहन वगैरह सब मेरे साथ नहीं थे, इसलिए मुझे अकेलेपन का तो एहसास था नहीं। और मेरा कुछ दृष्टिकोण इस प्रकार से रहा है, भूल जाओ तुम अकेले एक जग में, भूल जाओ तुम अकेले एक जग में, क्या कर सकोगे कंटका कीन मग में, प्रेम के एक बोल से संसार झुकता, दीप की एक लौ से देखो तिमिर ढलता।
5: मेरा नाम कार्मेलिन फ्रांसिस है और मेरी उम्र 42 इयर्स है।
6: कार्मेलिन, 42 इयर्स में आपने शादी नहीं करी अभी तक, इसके पीछे क्या कारण रहा है?
5: कारण तो ये है कि बहुत कम उम्र में ही मेरे पिताजी चल बसे थे 11वीं कक्षा के बाद, तो उस समय से ही मैंने स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दिया, हेल्पर की नौकरी मिली मुझे, और उसके बाद मेरे 11 भाई बहन थे तो उन सबका भार मेरे ऊपर था, तो उन सबको संभालने के लिए नौकरी करना था, अपने विषय में सोचने के लिए तो कोई समय नहीं मिला, और आज तक उनका भार काफी कुछ हल्का हो गया वैसे, और सब भाई बहन अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए।
6: तो अब आपको नहीं लगता एक खास उम्र बीत जाने के बाद आपकी शादी नहीं हुई है एक रीतापन महसूस नहीं होता?
5: नहीं, ऐसा तो कुछ महसूस नहीं होता है,

0: क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में बिजी रहने पर तो कुछ ऐसी बातें सोचने का मौका भी नहीं मिलता है और कुछ ऐसा लगता भी नहीं है कि मैं अकेली हूँ।
1: आपको महसूस नहीं होता और आम औरतों की तरह आपका भी घर होता, परिवार होता, बच्चे होते और एक सामान्य औरत का जीवन आप भी बिताती?
0: नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बच्चे तो स्कूल में इतने सारे मिलते हैं और भाई बहनों के भी बच्चे इतने रहते हैं, सभी दूर से प्यार मिल जाता है और उनको प्यार दे देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो कभी कुछ महसूस भी नहीं होता है और ऐसा कुछ लगता भी नहीं है।
1: अभी तो आप काम कर रही हैं तो आपका खाली वक्त बिल्कुल भर जाता हैगा, लेकिन कभी आपने सोचा है जब आपके पास ये काम नहीं होगा और जब आपके भाइयों के छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाएंगे और उनको भी आपकी जरूरत नहीं होगी तब आप क्या करेंगी?
0: हाँ, शायद तब के लिए कुछ सोच सकते हैं, परंतु अभी तो ऐसा महसूस नहीं होता। कभी कभी सोचती हूँ कि अपने भाई बहन के कुछ बच्चों को ही अपने साथ रख लूंगी तो वो बड़े होकर सहारा तो, कम से कम रहने का सहारा तो बन सकते हैं।

0: दहेज समस्या हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। 1990 से 93 तक भारत में 20,537 दहेज संबंधित मौतें दर्ज हुई हैं। जिन माता पिता के पास अपनी बेटी को उचित दहेज देने की क्षमता नहीं रही, ऐसी लड़कियां प्रायः अविवाहित रहीं। न इनकी कोई खास पसंद थी और न ही वर को लेकर विशेष मांग। केवल दहेज न देने के कारण इनका विवाह नहीं हुआ।
1: डाउरी सिस्टम, इसके कारण भी शादी करने में असमर्थ हुए पेरेंट्स लोग, इसलिए शादी नहीं हो पाई। लगता नहीं था, कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे हुए थे जिससे कि शादी नहीं हो पाई, और अगर अच्छा मैच मिलेगा तो शादी तो करेंगे, इसलिए कि अगर पैसा होता तो शादी होती। तो हम ऐसा वातावरण नहीं था ना कि अपन किसी का सिलेक्शन कर सके। फाइव सिस्टर्स हैं, टू ब्रदर्स हैं।
2: उन लोगों की सबकी शादियां हो चुकी?
1: नहीं, अभी सब अनमैरिड है। एक ब्रदर की मैरिज हुई थी।
2: आपसे कितने बड़े भाई बहन
1: हैं? मैं से एक बड़ी सिस्टर है जो कि अग्रवाल हायर सेकेंडरी स्कूल वाइस प्रिंसिपल है, उनसे छोटी मैं हूँ, और मेरे से छोटे तीन सिस्टर्स हैं, एक छोटा ब्रदर है।
0: मेरे सपनों का राजकुमार। हर लड़की अपने भावी साथी को लेकर सपने बुनती है। स्मार्ट और खूबसूरत, दिल से प्यार करने वाला, मेरी कला को प्रोत्साहन देने वाला, सर्वगुण संपन्न हो, कोई उच्च अधिकारी, उचित मानसिक स्तर वाला, और ये न मिल पाने से भविष्य के प्रति डर और उचित तालमेल न होने के कारण शादी न करने का कुछ महिलाओं ने फैसला ले लिया।

0: अपने से जो मेरा स्टैंडर्ड है उससे नीचे वाले स्टैंडर्ड में मैं एडजस्ट नहीं हो पाती।
1: शादी होती तो अच्छी ही बात है, परंतु उसके लिए वैसा योग्य वर होना चाहिए जो हम उसके साथ जीवन बिता सकें। परंतु अगर नहीं मिलता है तो मैं अपने आप को तैयार कर चुकी हूँ और जैसा मैं जीवन बिता रही हूँ मैं समझती हूँ उसके लिए जरूरी नहीं है कि शादी हो, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि ये बातें भी मेरे दिमाग में नहीं आती कि मेरी शादी नहीं हुई है। इतना गहरा अनुभव तो नहीं हुआ कि जहां मुझे ऐसा लगे कि मैंने गलत निर्णय लिया है, लेकिन जब दूसरों को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो ये निर्णय है सही है, क्योंकि जहां मैं देखती हूँ कि शादियां बनकर टूट जाती हैं या जो लव मैरिज भी करते हैं और फिर कुछ समय के बाद डाइवोर्स ले लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उनसे बेहतर मेरी जिंदगी। अगर मान लीजिए मैं शादी करती हूँ और वो उचित वर नहीं है और कुछ समय के बाद मेरा उससे डाइवोर्स हो जाता है तो क्या बुराई है इस जीवन में? मैं समझती हूँ तो ये जीवन ज्यादा अच्छा, कम से कम मैं अपना निर्णय स्वयं तो ले सकती हूँ, अपने सारे फैसले मैं खुद कर सकती हूँ, और अगर गलत भी करूंगी या सही भी करूंगी तो मुझे ही पश्चाताप करना है। मैं किसी को दोषी तो नहीं ठहरा सकती हूँ कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। हाँ, अगर जो मेरा मानसिक स्तर है, जो मेरे विचार हैं, जो मेरी थिंकिंग है उस लेवल का या उससे हाई लेवल का मिलता है तो निश्चित करूंगी, लेकिन अगर मेरे मानसिक स्तर या मेरा जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे कम स्तर का मिलेगा तो निश्चित है कि हम दोनों की नहीं बनेगी, और जब नहीं बनेगी तो ऑल्टरनेटिव वही होगा कि तलाक। तो क्यों ना जो जीवन हम जी रहे हैं उसे उसी तरह से जिए।

0: जीवन का लक्ष्य साधने के लिए विवाह नहीं किया। जी हाँ, विवाह लक्ष्य के अतिरिक्त भी जीवन है। एक इकाई के रूप में स्त्री अपने आप में संपूर्ण है। विवाह आवश्यक है, ये विचार उचित नहीं। जैसे कि परिवार वाले या समाज कहता है कि लड़की को तो आखिर में शादी करनी ही है, लेकिन कई स्त्रियों के लिए अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति विवाह से अधिक महत्वपूर्ण बनी, इसीलिए उन्होंने विवाह करना उचित नहीं समझा।
1: मैं ये समझती हूँ कि विवाह को एक संयोग, ईश्वर इच्छा मानना चाहिए। और आपके जीवन में खासकर एजुकेटेड लोग, जो हाईली एजुकेटेड लोग, बौद्धिक जीवन जिनका रहा है, उनको तो विवाह को तभी करना चाहिए जब उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति ईश्वर के द्वारा भेजा जाए जो कि उन्हें अपने लिए एक उपयुक्त जीवन संगी लगे, या जिससे उन्हें प्रेम हो जाए और जिनके साहचर्य और प्रेम के बिना उनका जीवन संभव न हो सके, जिसे आप चालू भाषा में प्रेम विवाह कह सकते। मैं तो हमेशा उसी के फेवर में रही और अरेंज्ड मैरिज के मैं कभी फेवर में नहीं रही। और विवाह करना है इसलिए ढूंढ की जाएगी चीज मुझे पता नहीं क्यों बहुत डिग्रेडिंग लगती है। तो मेरे अपने केस में, आप भाग्य से कहें या दुर्भाग्य से कहें, मेरा जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आया ही नहीं जिसे के लिए मुझे प्रेम हुआ हो या जिसके से विवाह के बारे में कभी मैंने सोचा, इसलिए मैं अविवाहित रही। सिंपल रीजन, जय ही विधि राखे राम, ते ही विधि रहिए।
2: आपके इस उत्तर से थोड़ा सा एक अजीब सा प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है। क्या इस उम्र में आके अगर आपको लगता है कि ईश्वर ने कोई ऐसा व्यक्ति मेरे लिए भेजा है इस दुनिया में जो इस उम्र में आके आपको मिलता है, तो इस समय क्या आप अपनी निर्णय को बदल लेंगी?
1: हाँ, अगर ईश्वर ने भेजा किसी रोज, उससे उस दिन आप मुझसे ही प्रश्न कीजिए। अभी तक तो भेजा नहीं कोई, तो मैं कल्पना कैसे कर सकती हूँ? मैंने कोई आदर्श पुरुष की कल्पना तो की नहीं, और आदर्श पुरुष तो राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मैं कैसे सोच सकती हूँ कि मुझे सीता का सौभाग्य प्राप्त होगा?
2: क्या ऐसे क्षण कभी आपकी जिंदगी में नहीं आए जब आपको लगा हो, बहुत तीव्रता से ये एहसास हुआ हो कि कोई होना चाहिए मेरे साथ?
1: देखिए, आप ये मान के चल रहे हैं कि जो अविवाहित व्यक्ति है वो कुछ असामान्य व्यक्ति होता है, या उसमें कुछ मानवीय संवेदनाएं या मानवीय भावनाएं नहीं होती। ये जो आपने कहा कि कभी आपको ऐसा नहीं लगता, तो मैं समझती हूँ कि हर मनुष्य को लगता है, और मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि लगना चाहिए, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। और ये जो एक अकेलापन है, मैं समझती हूँ कि इसका विवाह से ज्यादा संबंध नहीं है, क्योंकि मैं तो ये कहूंगी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा, अकेला चलो अकेला चलो अकेला चलो रे, भीड़ में भी आदमी अकेला है। हर व्यक्ति, चाहे वो विवाहित हो, उसका बड़ा भारी परिवार हो, बड़ा सुखी हो सांसारिक दृष्टि से, पोते पोती हो, बेटे बेटी हो, पति हो, फिर भी वो अगर एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है और उसके जीवन में कुछ मिशन रहा है, कुछ कल्पनाएं रही हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं रही हैं अच्छा कर गुजरने की, और उसने अगर एस्पायर किया है किसी हायर लाइफ के लिए, तो उसे कभी न कभी तो जीवन में, या यह कही है कि अक्सर उसे जीवन में अकेलापन तो लगेगा ही।
0: कई समाज में योग्य लड़कों की कमी रहती है। समाज में

0: ढंग का लड़का नहीं मिला और अंतरजातीय विवाह अभी भी हमारे देश में अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता। यद्यपि वे विवाह करना चाहती थीं, लेकिन इस मजबूरी के कारण विवाह नहीं हो सका। सुश्री सिंह,
1: देखिए जहां तक सम्मान का सवाल है तो शादी तो एक जुआ है। अगर आपको अपने मनपसंद विचारों का, अपने समान विचारों वाला व्यक्ति मिला तो आप सम्मान के साथ जीवन जी सकते हैं, अन्यथा आप जीवन जिएंगे नहीं, केवल जीवन काटेंगे।
2: तो आप क्या सोचते हैं शादी न करने का निर्णय आपका जो रहा है उसके पीछे यही कारण रहा है कि आपको समान विचारों वाला व्यक्ति नहीं मिला?
1: नहीं, ये एक हो सकता है, लेकिन और भी कई कारण हो सकते हैं उसके साथ साथ। अपना दृष्टिकोण, अपना विचार हो सकता है, या कई बार ऐसा हुआ कि लोग आए लेकिन अपने पसंद का नहीं था, या कई बार ऐसा भी हुआ कि कई लोग जैसे सिर्फ लालच की दृष्टि से कि हम अच्छे पढ़े लिखे अच्छी नौकरी पर हैं इसलिए, या कभी ऐसा भी हुआ कि जैसे लोग थे जैसा उन्होंने बताया वो वैसे थे नहीं इसलिए, और फिर जैसे समय निकलता गया तो मैंने अंत में सोचा कि मुझे करना ही नहीं।
2: आपने उन्हें कैसे समझाया कि आप शादी नहीं करना चाहते?
1: बस कह दिया शादी नहीं करना चाहते तो नहीं करना चाहते। ऐसा तो है नहीं कि हमारे परिवार में मैं अकेली अविवाहित हूँ। हमारी एक मौसी अविवाहित हैं, बुआ हैं, मेरी मम्मी की जहाँ तक एक मौसी है वो भी अविवाहित रहीं, इसलिए जहाँ तक घर का आया समाज का तो उसमें ऐसा कोई वो नहीं आया। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे अपने जो परिचित हैं, रिश्तेदार हैं या संबंधी हैं, कई लड़कियों ने शादी की, सुखी भी हैं, कईयों के साथ ऐसे बुरे हादसे हुए ना, इन सबको देख करके भी ऐसा लगा कि अपना भी कोई ऐसा तो है नहीं कि शादी के बाद जीवन सुखी होने की कोई वो है कि निश्चित रूप से अपन सुखी होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी को क्यों दांव पे लगाया जाए, जब नहीं करके भी अपन सुखी रहते हैं तो ऐसे जोखिम क्यों उठाया जाए।
0: संभवतः व्यक्तिवाद का दर्शन हाल ही में हमारे देश में अपने अस्तित्व में आया। एक वो काल था जब ना तो लड़कियों को पढ़ने लिखने का कोई अवसर था, महिलाओं के लिए स्कूल टीचर और नर्सिंग के क्षेत्र में अवश्य कुछ अवसर थे, लेकिन आज हमारी सरकार ने अब महिलाओं के लिए रोजगार के बहुत से अवसर प्रदान किए हैं और पुरुष पर स्त्री की आर्थिक परितंत्रता को कम किया है। आर्थिक स्वतंत्रता ने भी कई महिलाओं को अविवाहित रहने के फैसले में मदद की, उन्हें पुरुष की गुलामी मंजूर नहीं। मिस कॉल, कारण कुछ भी हो, प्रायः देखा यह गया है कि अविवाहित महिलाओं को समाज में अत्यंत उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है। अविवाहित रहने के कारण जहां उन्हें स्वयं की इज्जत का भय सदैव बना रहता है, वहीं दूसरी ओर लोगों के तरह तरह के व्यंग बाण भी सहने पड़ते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या इनका भविष्य सुरक्षित है? क्या इन्हें एकाकीपन कचोटता नहीं? विवाह न कर पाने के कारण एक मानसिक ग्रंथि बन जाती है।
2: सर, प्रायः देखा गया है कि भले ही कितनी आत्मनिर्भर हो, एक उम्र के बाद इन लोगों को घोर निराशा और अकेलापन महसूस होना लग जाता है। प्रायः मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो आप इनसे इनको उभरने के लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसी महिलाओं में कुंठाएं तो निर्माण होंगी ही, ये तो निश्चित है, लेकिन ये कुंठाएं कितनी प्रखर होंगी और उनका प्रभाव क्या होगा? अक्सर ये देखने में जरूर आता है कि ऐसी महिलाएं जो है वो अपने आप को समाज से बंद या समाज से पृथक करने की चेष्टा करती है। इन महिलाओं में बहुत अकेलापन आ जाता है, इनके बीच में थोड़ा सा जिसको आपने कहा संकीपन, उस प्रकार से भी मतलब निर्मित हो सकता है, लेकिन ये फिर व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि आप जीवन को किस तरह से जीना चाहते हैं या जीवन को आप किस तरीके से ग्रहण कर रहे हैं। इसके लिए एक स्वस्थ व्यक्तित्व निर्माण, अच्छी रुचियां, स्वयं में आत्मविश्वास, ये सब बातें मेरे ख्याल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये कुंठाएं निर्मित होंगी ही नहीं।
2: पिनहरकर साहब, विवाह क्या है?
3: समाज में विवाह को एक सामाजिक संस्था कहा जाता है। समाज के लिए जो जो आवश्यक तत्व होते हैं, व्यक्ति की जो आंतरिक इच्छा होती है, उनकी पूर्ति के लिए सामाजिक संस्थाएं होती हैं। विवाह को समाजशास्त्र में सामाजिक संस्था के रूप में पहचाना जाता है।
2: विवाह करना अनिवार्यता है या नहीं?
3: विवाह अनिवार्य होता है या नहीं, यह तो समाज की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, किंतु जब उसे सामाजिक संस्था के रूप में हम स्वीकार करते हैं तो विवाह अनिवार्यता के रूप में देखा जाता है। और यदि विवाह नहीं होगा तो यौन संबंधों को वैधानिकरण प्रदान करना, जो संतानोत्पत्ति होती है उसको विशिष्ट सामाजिक स्थितियां प्रदान करना, ये कार्य जो है ये कार्य मुश्किल में पड़ सकते हैं। इन कार्यों को सुगम करने के लिए विवाह संस्था बनी है, तो विवाह को एक तरीके से तो समाज के लिए बहुत अनिवार्य माना जाना चाहिए।
2: अगर कोई अविवाहित रहना चाहे तो उसे समाज किस दृष्टि से देखता है?
3: अब व्यक्तिगत संदर्भ में यदि देखा जाए, वैसे जैवकीय संदर्भ में भी विवाह बहुत अनिवार्य तो नहीं है। विवाह के द्वारा व्यक्ति जो कार्य संपन्न करता है वे विवाह के बाहर भी संपन्न हो सकते हैं, मसलन यौन समागम या प्रजनन भी
2: जी।
3: किंतु जब इन कार्यों को विवाह के अंतर्गत संपन्न किया जाता है तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि समाज उसको मान्यता प्रदान करता है। समाज की मान्यता को व्यक्ति कितना महत्व देता है इस बात पर निर्भर करता है कि विवाह को अनिवार्य माने या नहीं।
2: एक वक्त था जब अविवाहित महिलाएं, इनका वर्ग जो था वो केवल साध्वियों के लिए ही जाती थी या साध्वी ही बन जाती थी, लेकिन आजकल देखा गया है कि अधिक से अधिक महिलाएं अविवाहित रहने का निश्चय कर रही हैं। क्यों?
3: इसके लिए तो समाज में जो परिवर्तन आए हैं वे जिम्मेदार हैं। पहले कभी भी महिलाओं के लिए घर के बाहर जाकर काम करना या यहां तक कि शिक्षा भी प्राप्त करना, आज जिस तरीके से एक औपचारिक तरीके से स्कूलों में कॉलेजों में जाकर शिक्षा प्राप्त की जाती है, उस तरीके से शिक्षा प्राप्त करना भी आवश्यक नहीं था, अनिवार्य नहीं था, और उसके लिए समाज में कोई व्यवस्था भी नहीं थी। जब हमारा समाज परिवर्तित हुआ है, जब हम ग्रामीण परंपरागत समाज से शहरी और जटिल समाज की तरफ आ रहे हैं, तब महिलाओं को जो जिनके लिए कार्य उपलब्ध नहीं है, जो शहरी समाजों में आकर अतिरिक्त हो जाती है, उनके लिए समय बिताने के लिए उस स्वयं के व्यक्तित्व विकास के लिए भी शिक्षा अनिवार्य हो जाती है, तो शिक्षा के लिए वो जाएंगी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उन्हें अपने शिक्षा का उपयोग करने की इच्छा होती है, वे व्यवसाय के संदर्भ में भी बाहर जाएंगी। तो आजकल महिलाओं के बीच में जो गतिशीलता आई है उसके कारण ये प्रश्न अब उपस्थित होने लगा है कि क्या विवाह अनिवार्य है या नहीं, और ऐसी महिलाएं मतलब हो सकती है क्या जो अविवाहित रहकर अपना पूरा जीवन बसर कर सके।
0: अविवाहित रहने के कारण स्त्री के सामने प्रमुख समस्याएं आती हैं, सामाजिक उपेक्षा और इस अधेड़ उम्र में उपयुक्त जीवन साथी की तलाश।

वास्तव में विवाह की उम्र और समय रहते न केवल अपने मन बल्कि अपनी इच्छाओं को भी समझना आवश्यक होता है। वैसे तो विवाह की कोई उम्र नहीं होती, अपवाद स्वरूप ही अविवाहित लड़कियां जीवन पर्यंत उन्नति करती हुई खुशहाल स्थिति में रह सकती हैं, लेकिन ये स्थिति महिला विशेष की आत्मशक्ति पर निर्भर करती है। अथवा वो अविवाहित महिला जिसने जीवन यापन की कोई ठोस व्यवस्था कर रखी हो, अपने माता पिता या भाइयों पर निर्भर रहने वाली अविवाहित महिलाओं का जीवन सुरक्षित और सम्मानित रहना मुश्किल ही होता है। इसलिए यदि विवाह योग्य उम्र बीत भी जाती है और बाद में परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो भी उचित जीवन साथी के चयन में झिझकना नहीं चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे रूपक परिधि का एकांत, प्रस्तुति थी प्रभु जोशी की। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, आपको एक सूचना दे दी। इस गुरुवार दिनांक 9 जुलाई यानी कल सवेरे 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाली सजी फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है तंत्रिका तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग, कारण, लक्षण और उनका उपचार। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर के एस रावत न्यूरोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। आप हमारा यह कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज़ोन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट करें। गुरुवार दिनांक 9 जुलाई समय सवेरे 10:32 से 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। एक बार फिर से सुन लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का स्टडी कोड है 0731। तो फ़ोन करना ना भूलें। गुरुवार दिनांक 9 जुलाई समय सवेरे 10:32 से 11:02 तक विविध भारती FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR से। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। FM 101.6 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी इंदौर। शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनाने जा रहे हैं अभिषेक व्यास का गिटार पर बजाया राग यमन।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे पर अभिषेक व्यास का गिटार पर बजाया राग यमन। आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्वार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87

सत्रहवें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।